अपने आप में एक काबिलियत है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण योग्यता है। सूर्य नमस्कार इसलिए मॉनसून में किया जाता है क्योंकि यह पूरे शरीर को गर्म रखता है, मॉनसून की सुस्ती और थकान को दूर रखता है। सुबह करने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। पूरे शरीर को गर्म कैसे रखता है आइए बताते हैं। मॉनसून में हम अमूमन क्या होता है कि मई जून में तो हम कूलर का यूज कर लेते हैं, एसी का यूज कर लेते हैं, लेकिन मॉनसून में ये दोनों चीजें बहुत ही कम यूज होती हैं क्योंकि हमारा शरीर थोड़ा सा

ओम भूर्भुवस्वः। जीवन की नई ऊर्जा के संग स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो पहली किरण में, जहां सूरज की रोशनी नहीं ईश्वर की ऊर्जा जगती है। मैं हूं आपकी आध्यात्मिक संगिनी आकांक्षा, जो लेकर आ गई है आज का भक्तिमय कार्यक्रम आपके लिए। आज हम सब चलेंगे प्रकृति, ईश्वर और इंसान की उस यात्रा पर जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं अदृश्य लेकिन अमर संबंधों में।

तकलीफ में तेरे सिवा कोई खड़ा नहीं, इसलिए माँ से कोई बड़ा नहीं। घर कैसा भी हो, माँ के बिना अधूरा ही लगता है। माँ वो हस्ती है जिसके बिना हमारी कोई हस्ती नहीं है। ये जिंदगी है जनाब, माँ नहीं जो हर वक्त प्यार दे। एकदम प्रकृति माँ की तरह। जी हाँ, प्रकृति केवल पेड़ पौधा या पहाड़ नहीं, ये माँ है जो हमारे हर श्वास में, हर कण में समाई है, जो सूरज की रोशनी से हमें शक्ति देती है, चांद की चांदनी से हमें शीतलता देती है। और कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बिल्कुल, माँ और प्रकृति से बढ़ के कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसी ने तो हमें जन्म दिया और ये दुनिया दिखाने का अधिकार दिया। प्रकृति से कट जाना ईश्वर से कट जाना है। जो पेड़ बचाता है वो ईश्वर की पूजा करता है बिना मंदिर जाए। तो चलिए बिना मंदिर जाए एक भजन का श्रवण करते हैं और साथ ही साथ प्रकृति माँ की अनुभूति में भी लीन हो जाते हैं।

कभी आपने सोचा है ईश्वर ने हमें क्या दिया बिना मांगे? सूरज की रोशनी दी, जल की धाराएं दी, वायु की सांसें, सब बिना कोई कीमत लिए मिलते हैं। यही ईश्वर का प्रकृति रूप है। यत्र नार्यत्र पूज्यते रमयते तत्र देवता। जहाँ प्रकृति, नारी और धरती का सम्मान है, वहाँ ईश्वर का निवास है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जैसे बीज में वटवृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में ब्रह्म छिपा है। जब हम ध्यान करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तब हम ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं। तो चलिए केवल 5 मिनट खुले आसमान में बैठिए, अपनी सांसों को देखिए और प्रकृति के स्पर्श को महसूस करिए। साथ ही साथ सुनिए ये प्यारा सा भजन।

हम सभी को पता है कि माँ से बढ़के कोई नहीं, और सभी धर्मों में भी माँ की ममता एक शाश्वत और सार्वभौमिक सत्य बताया गया है। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि माँ की ममता से बड़ा वाकई कुछ और नहीं। ये कहानी माँ के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना को दर्शाता है, जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में समान रूप से पूजनीय है। एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी, जिसके पास अपनी बेटी के अलावा और कोई नहीं था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खाने पीने की चीजें मिलना मुश्किल हो गई। माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला दिया, जिस तरह हर माँ करती है। खुद भूखी रही पर बेटी को भूखा नहीं सोने दिया। एक रात जब माँ अपनी बेटी के साथ सो रही थी, तो उसने देखा कि उसकी बेटी को तेज बुखार है। माँ घबरा गई, उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और रात भर उसे सहलाती रही। सुबह होने तक माँ की हालत भी खराब हो गई। गांव के लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि माँ और बेटी दोनों ही बेहोश पड़ी हैं। वे दोनों को उठाकर एक मंदिर में ले गए। गांव के पुजारी ने जब माँ और बेटी की हालत देखी, तो वो समझ गया कि माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। पुजारी ने कहा, ये माँ की ममता है, जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक समान है। ये निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना है, जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। गांव के लोगों ने माँ और बेटी की देखभाल की। धीरे धीरे माँ और बेटी स्वस्थ हो गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने माँ की ममता का सम्मान करना सीखा। उन्होंने समझा कि माँ की ममता ही सबसे बड़ी भक्ति है। ये कहानी दिखाती है कि माँ का प्यार बिना किसी शर्त के होता है। ये प्यार सभी धर्मों और संस्कृतियों में एक समान रूप से पाया जाता है। माँ की ममता ईश्वर के प्रेम का ही एक स्वरूप है।

हम प्रकृति के उपभोगकर्ता नहीं, हम इसके रक्षक हैं। और हर रक्षक को ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है। एक बालक जो रोज एक पौधा लगाता था और बड़ा होकर एक गांव को जंगल बना गया, यही है इंसान का धर्म, सृष्टि को लौटाना। तो चलिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दो प्रकृति को समझने और खुद को बदलने की।

चलिए अब मैं आप सभी को एक और कहानी के माध्यम से इंसानियत की ओर लेके चलूंगी। सभी धर्मों की आत्मा में बसी एक कहानी जिसको मैंने नाम दिया है ईश्वर का स्पर्श। एक छोटा बच्चा हर दिन अपनी माँ से पूछता, माँ ईश्वर क्या है और वो क्या करते हैं? माँ हंसकर कहती, ईश्वर सबकी सेवा करते हैं बेटा। एक दिन माँ बीमार पड़ गई, बच्चा खुद रसोई में गया, खुद सफाई की, दादी की मदद की। शाम को माँ ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा क्या किया आज? बच्चा बोला, आज मैंने वही किया जो ईश्वर करते हैं, सेवा। क्योंकि अगर तुम मेरी माँ हो तो तुम्हारे अंदर ही तो ईश्वर रहते हैं। माँ की आंखें आंसू से भर गई और वो जान गई कि ममता, सेवा और प्रेम ही ईश्वर है।

आइए अब आपको सभी धर्मों के अनुसार माँ और ईश्वर के संबंध की ओर ले चलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार माँ वही है जहाँ परमात्मा छुपा होता है। गीता कहती है, अनन्य भक्त के हृदय में ही मैं निवास करता हूँ, और माँ का हृदय सबसे बड़ा मंदिर होता है। इस्लाम धर्म के अनुसार जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, ये एक हदीस है, और प्रकृति अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। हवा, पानी, सूरज, ये सब अल्लाह का करम है। ईसाई धर्म के अनुसार जीसस ने कहा है, लव दाई नाइबर्स, और माँ का प्यार सबसे बड़ा उदाहरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार माता की करुणा बुद्धत्व का बीज है। जो प्रकृति को पीड़ा देता है वो अपने भीतर के बोधिसत्व को मारता है। यहूदी धर्म के अनुसार अ मदर्स प्रेयर रीच गॉड बिफोर द एंजल्स डू, और प्रकृति परमेश्वर की ब्रीथ यानी श्वास है जो सृष्टि में बहती है। ईसाई धर्म में माँ मैडोना मैरी, प्रभु यीशु की माँ को ईश्वर की माँ माना गया। ईसाई धर्म में माँ त्याग, बलिदान और पवित्रता का प्रतीक है। मदर मैरी के आंचल में पवित्रता की सबसे सुंदर छाया मिलती है। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध ने कहा था, माँ का प्रेम अनमोल है जो कभी किसी से बदला नहीं मांगता। बौद्ध दृष्टिकोण में माँ करुणा, दया और सह अस्तित्व का आधार है। यहूदी संस्कृति में माँ को परंपरा की रक्षक, संस्कारों की वाहक और आध्यात्मिक शिक्षक माना जाता है।

अब आपको ले चलते हैं आज की मंथन की ओर। माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं और आत्मा से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। जो अपने मन की ममता को बचा लेता है वो दुनिया में कहीं भी ईश्वर को पा सकता है। हर धर्म का मूल एक ही है, प्रेम दो, सेवा करो और प्रकृति की रक्षा करो। माँ, ममता और प्रकृति, ये तीनों ही ईश्वरीय सत्ता के अलग अलग रूप हैं और हर धर्म, हर संस्कृति ने माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। आइए माँ की इस अद्भुत महिमा को हम हर धर्म की रोशनी में समझें। हिंदू धर्म में माँ मातृ देवो भव, माँ ही भगवान है। वेदों और उपनिषदों में माँ को सर्वप्रथम पूज्य कहा गया है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी स्त्री और माँ के ही स्वरूप है। माँ धरती है, माँ गंगा है, माँ शक्ति है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इस्लाम में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। उसकी सेवा, उसकी दुआ, उसके आंसू अल्लाह तक सीधे पहुंचते हैं। माँ की नाराजगी रब की नाराजगी मानी जाती है।

सिख धर्म में माँ, गुरु ग्रंथ साहिब में भी माँ को संस्कारों का बीज, कर्तव्य की प्रेरणा और पवित्र आत्मा का माध्यम कहा गया है। माता खेमा बख्शीश दीखान, जिथे बच्चे पलदे सच दे। माँ वो खेमा है जिसमें बच्चा सच में पलता है। तो चलिए, माँ की इतनी सारी महिमा अब हमने जान ही ली है, तो चलिए अब उस माँ के चरणों में एक भेंट अर्पण करते हैं।

माँ प्रकृति और इंसानियत। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो धरती की तरह सहती है, जल की तरह बहती है, आकाश की तरह सब कुछ समेट लेती है। माँ रोती नहीं पर अंदर से टूट जाती है, फिर भी मुस्कुराती है। वो इंसान नहीं, इंसानियत की जड़ है। जब कोई धर्म, कोई किताब, कोई महापुरुष माँ को ईश्वर से भी ऊंचा माने, तो समझ लीजिए माँ खुद ही एक धर्म है, एक अध्यात्म है, एक पूजा है। और माँ सृष्टि की सबसे पवित्र पहचान है, हर धर्म हर आत्मा की सबसे मूल शक्ति वो है माँ।

आध्यात्म में माँ का स्थान ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था बताया गया है। जब कोई साधक आंखें बंद करता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले माँ की मूरत को देखती है। माँ का नाम जपने मात्र से शांति मिलती है। माँ हर पंथ हर विचारधारा में एकमात्र अटूट प्रेम है। जैन धर्म में माँ को जन्मदाता नहीं धर्मदाता कहा गया है। पारसी धर्म में माँ प्रकृति की शुद्धता और नैतिकता का स्रोत मानी जाती है। आदिवासी परंपराओं में माँ को भूमि अग्नि और जल की देवी कहा गया है। माँ की गोद में ईश्वर की गोद जैसा सुकून होता है। तो चलिए इस सुकून की अनुभूति करते हैं इस माँ की भेंट के माध्यम से।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: What is this? अरे कितना क्रेडिट देगा उस लड़की को? अरे वो दूसरे शहर से, I'm telling, अगर पैसा नहीं आया ना, you will have to pay.
2: But papa, she's a nice girl.
3: भैया देखो, दिल्ली वाली दीदी आ गई।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

गुड मॉर्निंग गोंडा 89.6 FM आपने ट्यून कर लिया है आपका अपना FM रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM अगेन क्योंकि आप सुन रहे हैं मेरे साथ आपके मॉर्निंग का स्पेशल वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में और इस खूबसूरत सी सुबह में आपका स्वागत करते हैं। आप एंजॉय कर रहे थे सनम की आवाज में गुलाबी आंखें और आंखों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ समा गुलाबी बांधने हम आपके साथ जुड़ गए हैं। और आज का पहला फलसफा यही है, यानी कि हर सुबह का जो पहला फलसफा होता है वो हर वक्त यही होता है कि हर सुबह जिंदगी हमें एक नया पन्ना देती है ये कहकर कि पुरानी बातों को छोड़ दो तो आज फिर से मुस्कुरा लो। चलिए, कितनी प्यारी आपकी मुस्कुराहट है, बस आप मुस्कुराते क्यों नहीं, आप स्माइल क्यों नहीं करते हैं, इस बात का जवाब आज तक मुझे कभी मिला नहीं। फिलहाल कोई बात नहीं, आपके मॉर्निंग शो में आपका स्वागत करते हैं और आइए लेकर चलती हूँ मैं आपके लिए स्पेशल उस पोइट्री की तरफ जो मैं हर हफ्ते आपके लिए लिख कर लेकर आती हूँ। आज की पोइट्री आपको क्या कुछ बताती है, आइए बात करते हैं, जानते हैं। और आज की पोइट्री में लाइफ से जुड़ी क्या चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लिख कर लेकर आई हूँ। तो भाई आज की पोइट्री कुछ यूं है कि धूप अगर मध्यम है तो क्या हुआ, आसमान का मिजाज अभी बदलना बाकी है, रात के पन्ने पलट चुके हैं दोस्त, अभी कामयाबी का इतिहास लिखना बाकी है, हर सुबह एक नया पन्ना लेकर आती है, गलतियों को पीछे छोड़ने का हर वक्त एक नया बहाना लाती है, मत बैठ उदास उन बीते हुए कल के पछतावों में, ये जिंदगी है ठोकर के बाद भी एक नया रास्ता लाती है, तो थोड़ा मुस्कुराइए थोड़ा पंख फैलाइए, मुश्किलें तो आएंगी उनको भी रास्ता दिखाइए, क्योंकि जब तक आपको खुद पर भरोसा है, आप जब तक खुद पर भरोसा रखेंगे इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। और यही था मेरा आज की पोइट्री में आपके लिए बढ़िया सा लेसन कि हर सुबह एक नई सुबह होती है और हर सुबह आपको कुछ नई चीज़ें देकर जाती है, नई उम्मीद, नई जिंदगी। यूँ तो लोग कहते हैं ना जिंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिलती है, और मुझे लगता है ज़िंदगी हर सुबह मिलती है। वो अलग बात है कि आपको थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा बदलना पड़ता है अपने देखने के तरीके को, और आपको समझ में आता है कि ज़िंदगी हर सुबह मिलती है और हर सुबह आपसे कहती है कि बीत गई जो भी गलतियां हैं, जो भी आपने कुछ किया है, कहीं कामयाब नहीं हुए, कहीं हो चुके हो तो कामयाब हो गए हो तो उसका ईगो कल ही छोड़ दो, और अगर नहीं हुए हो तो उसका गिल्ट, उसका रिग्रेट भी कल ही छोड़ दो, पछतावे में मत बैठो, क्योंकि आज सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छू रही थी, ज़मीन को छू रही थी, पेड़ों पर पड़ रही थी, तब उसने फिर से उम्मीद की एक नई किरण आपकी ज़िंदगी में बिखेर दी है। ये तो था जिंदगी से जुड़ा हुआ आपके लिए कुछ मोटिवेटेड और कुछ लाइफ लेसन्स। फिलहाल के लिए आप बताइए आप हैं कैसे, और आपका स्वागत करते हैं वापस से गुड मॉर्निंग गोंडा में। फिलहाल लेते छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक जो मैंने बीच में ही रोक दिया था, और आप एंजॉय कर रहे थे गुलाबी आंखें, और हमने आकर आपकी गुलाबी आंखों को कहीं ना कहीं टोक दिया था। फिलहाल साइंस में इसको कुछ और कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं बताएंगे बाद में। फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आरजेनोदी के साथ आपके अपने FM रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। यही गोंडा शहर की झटकन पर मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी भाई और बहनों, एक सवाल था आपसे। मेरा सवाल ये था कि क्या आपने किसी से बात की है। मतलब किसी से क्या मतलब है, आपने कभी खुद से बात की है? अब ये मत कहना कि हाँ कभी कभी अकेले में बैठ के खुद से बात कर तो लेते हैं। ना ना ना, ना ऐसे वाली बात नहीं। कभी आपने अपने शरीर से बात करने की कोशिश की है? मीन्स आपके पेट से, आपके दिमाग से, आपके चेस्ट से, आपके थ्रोट से, यानी आपके गले से। ये बहुत साइंटिफिक बात है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। फिलहाल ये सुनने के बाद थोड़ा अजीब लगता है कि यार कोई खुद से कैसे बात कर सकता है, स्पेशली वो भी अपने गले से, अपने दिमाग से, अपने पेट से, अपने सीने से। हैं ये भी कोई बात होती है, लेकिन हाँ ये बात तो होती है। ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाती है, लेकिन सुनने में लगता है कि ये पक्का पागल खाने भेजने वाली ही कोई ट्रिक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं और आपका स्वागत कर लेते हैं आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग ओना में। मैं हूं आपकी आरज़ू, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने स्टूडियो में। आज की सुबह थोड़ी सी उमस भरी थी जो कि मुझे लगी। फिलहाल आज कल उठे थे तो कल बादल बादल, आज उठे थे तो आज धूप धूप प्लस बादल बादल, परसों उठे थे तो सिर्फ धूप धूप धूप धूप धूप। आज का मौसम ऐसा ही चल रहा है। वो जो गाना है ना, अभी अभी तो धूप थी अभी बरसात शुरू हो चुकी है, जी हाँ बिल्कुल वही हाल चल रहा है आजकल गोंडा का भी। कभी भी कहीं भी बरसात हो जाती है, कभी भी कहीं भी धूप निकल आती है और कहीं भी बादल छा जाते हैं। फिलहाल मेरा फेवरेट तो बादल वाला ही है। चलिए बात कर लेते हैं कि शरीर से बात करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कुछ लोग आपस में तो बात करते ही करते हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठते तब भी उनका मुंह चुप नहीं होता, वो खामोश नहीं बैठ सकते हैं। वो दिन में कुछ चबड़ चबड़ चबड़ चबड़ चबड़ चबड़ करते रहते हैं, और ये वही लोग हैं जो बड़े इंटेलिजेंट माने जाते हैं। जी हाँ, भले ही आपको देखने में लगता है कि इनके पास पक्का कोई भूत बैठा हुआ है या तो इनका दिमाग ख़राब हो चुका है, इनको पागल खाने भेज देना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली आपके कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो आपको सुनते हैं प्लस वो टेंशन होल्ड करते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले आपका पेट। जी हाँ, अब आप सोचिए आपका शरीर आपका दिमाग चला रहा है कि आपका पेट चला रहा है? अब आपको लगेगा नहीं, मेरा शरीर तो मेरा दिमाग ही चला रहा है ना, पेट कैसे चलाने लगेगा? पेट तो सिर्फ खाने पीने के लिए होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेट जो होता है वो आपका दूसरा दिमाग होता है, और हम आपको बता दें आपकी आंतों में करोड़ों तंत्रिकाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके दूसरे दिमाग की तरह काम करती हैं, टू वे कम्युनिकेशन करती हैं। आपका दिमाग और आपका पेट एक दूसरे से बातें करता है, और आपको ये बात कभी पता ही नहीं लगी है। प्लस मैं ये भी बता दूं भैया, वो बातें बोल के नहीं करता है लेकिन सिग्नल्स ज़रूर भेजता है। अगर अगर अगर आपका दिमाग ख़राब है तो आपके पेट से ही सारा हार्मोन तैयार होता है, सारा कॉर्टिसोल बनना तैयार होता है, और दिमाग जो होता है ना, वो बाबा कहते हैं बाबा रे बाबा इतना सारा टेंशन वो पेट से आ रहा है, क्योंकि वो सिग्नल उसने वहीं से भेजा है। इसीलिए मैं कह रही थी आपका पेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका चेस्ट का एरिया प्लस आपका गला। कभी देखा है बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा उदास होते हैं तो कोई शब्द हमारे गले से बाहर नहीं निकलता, ऐसा लगता है किसी ने गला चोक कर दिया है, आके पकड़ लिया है और अब बोलने की कोशिश बहुत है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। वो पेन आपको अपने गले के आसपास महसूस होता है ना। एक्चुअल में ये सिचुएशन हर किसी के पास कभी ना कभी ज़रूर आती है, और वो इस सिचुएशन से कभी ना कभी गुजर भी चुका होता है, तो वो डेफिनेटली जानते हैं कि जब आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ हो रहा, आप बोल ना पा रहे हो, तो गले में कैसा फील होता है। तो मैं आपको बता दें, आपके दिमाग से ज़्यादा जो टेंशन होल्ड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू जैपनीज, वो आपके पेट, आपके सीने, आपके थ्रोट में होते हैं। यानी ये साइंस भी मानता है कि आपका दिमाग, यानी जो दूसरा दिमाग है, वो आपके पेट से जुड़ा हुआ है। तो बात करने की कोशिश करें किस से, मुझसे नहीं, अपने पेट से, अपने दिमाग के साथ साथ दूसरों के साथ साथ अपने शरीर से भी बात करें, उसे भी रिलैक्स करें। आपको नहीं पता है कि कितना ज़्यादा वजन, कितना ज़्यादा स्ट्रेस और कितना ही ज़्यादा चीज़ें लेकर के, कितना ज़्यादा टेंशन लेकर के वो घूम रहा है, और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आप बस सोचते रहते हैं भैया आज काहे मेरा दिमाग ख़राब है, काहे मेरा पेट खराब, क्योंकि आपका टेंशन वो होल्ड करके बैठा है, और इसी वजह से आपका डाइजेशन भी स्मूथ नहीं चल रहा है। तो कोशिश करें जब भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस परेशानी को ख़त्म होते होते तो वक्त लगेगा, लेकिन हाँ आप अपनी हेल्थ में सबसे पहले अपने शरीर से ज़रूर बात करें, थोड़ा थोड़ा बात करें। हालांकि लगता है कि यार ये पक्का पागल बना रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब खुद से बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपको
सलूशन मिल जाता है। कई बार सवाल में ही जवाब छुपा होता है, वो अलग बात है कि सवाल हम हमेशा दूसरों से करते रहते, कभी खुद से हमने किया ही नहीं है। इसके अलावा बात आती है, जापानीज मानते हैं कि जब भी आप कहीं से निकलते हैं, किसी चीज़ को छोड़ कर जाते हैं, तो उस जगह को थैंक यू ज़रूर बोले, क्योंकि वो आपके साथ अभी तक था। एक ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। भले ही आप किसी घर में रह रहे हों, तो उस घर ने आपको कई सारी मेमोरीज दी हैं। अगर आपकी कोई पसंदीदा चीज़ है जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स उसे एक लास्ट गुड बाय ज़रूर करें, क्योंकि उसने अभी तक आपका साथ निभाया हुआ था और वो अभी तक आपके साथ जुड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दोस्त आपके साथ जुड़ा होता है। तो जब उसे जाएं छोड़कर, तो कभी भी एवे में ना चले जाए, हमेशा एक ग्रेटिट्यूड शो करें, थैंक यू कहें। ये तो भैया ब्रूस ली भी मानते हैं कि ज़िंदगी में चार चीज़ें कहने से पहले सोना नहीं चाहिए, और उनमें से पहला है थैंक यू। थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू गॉड, और थैंक्स टू वो चीज़ें जो आपकी मदद कर रही हैं, प्लस खुद की कुछ तारीफ जो हम बिल्कुल नहीं करते। अपनी तारीफ तो हम कर ही नहीं सकते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुंह में ऐसा फिल्टर लगा हुआ है कि अपनी तारीफ नहीं होगी, दुनिया भर की तारीफ करा सकते हो। अपने में तो सिर्फ हम बेइज्जती करना जानते हैं, खुद की बेइज्जती भर भर के करा सकते हो, लोगों को हंसाने के लिए खुद को कुछ भी बोल सकते हैं, बट आपने एक चीज़ कभी नोटिस नहीं की। भाई ब्रूस ली भी मानते हैं कि आप जो बोलते हैं आपका शरीर वो सुनता है, और जो सुनता है वही वो करता है। अगर आपने खुद को कभी गलती से कहा है कि यार मैं तो सच में पागल हूँ, मैं तो सच में गधा, सीरियसली आपके शरीर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ तुम हो ऐसे, हमको बनाने दो अब तुमको ऐसा। तो कभी भी खुद के बारे में उल्टा मत बोलिए। वो चीज़ें जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जब उनको छोड़ कर जाएं, उनको विदा करें, या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर बाय बाय करने वाले हों, तो एक थैंक यू के साथ गुड बाय ज़रूर बोलें, उससे आपको भी बेहतर महसूस होगा। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो बहुत उदास है, बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस्ड है, या बहुत एंजाइटी में है, तो एक चीज़ जो आपको घर आते ही करनी है वो ये है कि ठंडे पानी से हाथ धोना है। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न होता है। कभी आपने देखा, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहते हो जो बहुत निगेटिविटी लेकर साथ में चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी को झेल रहे होते हैं, वो खुद भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो उनके साथ साथ रहकर आप भी वैसे ही सोचने लग जाते हो। आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हुआ करते थे, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती थी, आपका नज़रिया अलग था, लेकिन एक ऐसे इंसान के साथ रह रहकर जिसने हमेशा हर चीज़ में इश्यूज़ ढूंढे हैं, उसे आप कुछ भी दे लो, भले ही उसको आप कितना ही समझा लो, लेकिन उसको लगता है कि यार दुनिया में जितना भी बवाल मचा है वो मेरी ज़िंदगी में है, जितनी भी टेंशन है वो मेरी ज़िंदगी में है, कोई चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, सब कुछ तो मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा विक्टिम जो हूँ वो मैं हूँ, बाकी पूरी दुनिया एक कल्प्रिट है, एक क्रिमिनल है। और उनके पास आप कितनी भी सोल्यूशन दे दो, इवन वो गॉड को भी कर्स करेंगे, वो यूनिवर्स को करेंगे, वो आपको भी करेंगे, वो पड़ोसी को भी करेंगे, वो अपने माँ बाप को भी करेंगे। तो जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी के साथ रह रहे हैं, जब भी आप उनसे मिलकर रहें तो अपने हाथों को ठंडे पानी से ज़रूर धोएं। इसके पीछे एक रीज़न है, रीज़न ये है कि भाई आपका शरीर जो बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, आपके आसपास क्या है क्या नहीं है, आप कहाँ मौजूद हो, किसके साथ मौजूद हो, उनसे निकलने वाला जो ऑरा है, जिसको साइंस में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और स्पिरिचुअलिटी में ऑरा कहते हैं, उसे आपकी बॉडी अब्जॉर्व करती है, यानी कि अंदर अपनी तरफ खींचती है, उस एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, अब्जॉर्व करती है, और वैसे ही आपके दिमाग का काम भी हो जाता है। तो कभी भी किसी से मिलकर आते हैं, किसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है, तो खुद को रिलीज़ करें, उस टेंशन को रिलीज़ करें, अपने हाथों को ज़रूर धोएं और एक पॉजिटिव ऑरा अपने आसपास ज़रूर क्रिएट करें। क्योंकि भैया देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि हम अच्छे तो बहुत होते हैं लेकिन अच्छाई हमारे साथ चल नहीं पाती। हम बहुत पॉजिटिव होते हैं लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा निगेटिव लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो हमारा पॉजिटिव ऑरा घटता घटता घटता घटता पता नहीं कब माइनस में चला जाता है, और ये बात हमें खुद भी पता नहीं चलती है जब तक हमें घर वाले आगे ना टोक दे कि बच्चा पहले तो तुम ऐसा ना ही रहे, अब अचानक का हुआ है बताओ, तरह ऐसे लग कहता हूँ दोस्तों के साथ ना रहा करो, ऐसे रहोगे तो ऐसे ही हो जाओगे। आपके माँ बाप कई बार आपको सच बोल देते हैं, वो अलग बात है कि हमें कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ज़िंदगी में परेशानियाँ सबके पास ही होती हैं। जो हमेशा परेशान रहते हैं, जिनके पास कभी कोई सल्यूशन नहीं होता, बस उनसे थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। इसके अलावा हमेशा अपनों से सवाल करें, अपनों से मतलब अपनी चीज़ों से, अपने दिमाग से,
और रात में सोने से पहले सवाल जरूर करें। जी हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो आपके पीछे का दिमाग है, वो आपके सवालों के जवाब ढूंढता रहता है, और अगर आप उसे सवाल नहीं करते हैं तो फिर वो खुद ही जवाब बनाता रहता है। आपको भी पता होगा, जो सपने आते हैं यानी कि जो ड्रीम्स आते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की वजह से ही आते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या कुछ चल रहा है। मैनिफेस्टेशन की ट्रिक भी वहीं से आती है। अगर आप सुबह उठकर वो पहली चीज़ नहीं कहते हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जो मैनिफेस्टेशन का ट्रिक है कि 11-11 पर आप ये बोले तो ये हो जाएगा, अगर आप 11-11 पर बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए या फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, तो एक वक्त के बाद वो आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं कि यार ये काम करूँगा तो बिगड़ जाएगा, एंड वो 90% चांस है वो बिगड़ जाएंगे, इसके पीछे भी रीज़न आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। तो सुबह उठकर सबसे पहले आपको अपने बारे में एक बेहतरीन चीज़ बोलनी है, एक वो बात बोलनी है जो आप अपने फ्यूचर में चाहते हैं, यानी आने वाले कल में चाहते हैं, भविष्य में चाहते हैं। प्लस रात में सोते समय खुद से एक सवाल करना है कि क्या मेरा आज का दिन अच्छा था। अगर आपके दिमाग से आता है कि हाँ आज तुमने कुछ अच्छा किया है तो कंग्रेचुलेशंस, और अगर आता है कि नहीं हम नहीं कर पाए तो कल सुबह उठकर दोबारा से कोशिश ज़रूर करें। इतना ही था आपके ब्रेन एंड बॉडी के बारे में, यानी आपके दिमाग और आपके शरीर के बारे में जो मुझे आपको बताना था। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते तब तक के लिए आप बताइए कि आप किस आदत को फॉलो कर रहे हैं और किस आदत को आप पीछे छोड़ने वाले हैं आज से ही। क्या खुद को बुरा बोलना आज से आप बंद करेंगे? यूँ तो पता है कि हम मजाक मजाक में खुद को बहुत कुछ बोल जाते हैं, बट कोशिश करें कि कभी खुद को कुछ ना कहे। आपका शरीर आपकी हर एक बात सुनता है और उसे सच और मजाक के बीच में फर्क बिल्कुल नहीं पता है। वो नहीं जानता है कि आप मजाक कर रहे हो कि आप सच बोल रहे हो, बस वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर कर ही लेता है। आइए एंजॉय करते हैं एक बढ़िया सा गाना, एदिल है मुश्किल से अरिजीत सिंह की आवाज़ में, ब्रेकअप सॉन्ग। मिलते हैं इस गाने के उस पर आपके अपने वाले मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
2: अरे तुम का बताई भैया, हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

छोरा हो छोरा किनारे

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले मॉर्निंग स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ख्याना स्थली। आपसे मेरा एक सवाल है दोस्तों, क्योंकि सावन चालू हो चुके हैं और अब हर दूसरा इंसान हो सकता है सोमवार का व्रत रखे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं पीते भी हैं। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो कुछ नहीं खाते कुछ नहीं पीते, वो पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो व्रत के नाम पर बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। उनका शुरुआत होता है एक बढ़िया फ्रूट चाट से, चाय से, साबूदाना से, मूंगफली से, फिर वो आलू, कुटू के पूरी और जाने कहाँ कहाँ जाके वो ख़त्म होता है। इस दौरान अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ दो दिन बिना कुछ खाए पिए रहो तो कैसा रहेगा, आपको कैसा लगेगा? क्या आप बिना कुछ खाए पिए मात्र दो दिन भूखे रह सकते हो? और चलिए, अगर आप दो दिन रह भी सकते हैं तो एक और सवाल बनता है, क्या आप उन लोगों में से भी हैं जो बिना कुछ खाए पिए 16 सालों तक अनशन पर बैठ सकते हैं? 16 साल, बताइए, क्या आप 16 सालों तक भूख हड़ताल कर सकते हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अगर नहीं तो भाई हमारे बीच में एक ऐसी ही महिला है जिसने 16 सालों तक अन्न का एक भी दाना नहीं खाया, क्योंकि उन्हें कुछ बदलवाना था, कुछ चेंज करवाना था। जब भी हम भूख हड़ताल की बात करते हैं हमें बहुत सारे लीडर्स का नाम याद आता है, लेकिन एक ऐसी भी महिला है जिन्हें द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने 16 साल तक खाना ही नहीं खाया। वो बिना कुछ खाए पिए भूख हड़ताल पर बैठ गई थी, अनशन पर बैठ गई थी कि जब तक सरकार उनकी बातें सुन नहीं लेती तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं। और सरकार ने उनकी बात सुनने में 16 साल लगा दिए। हालांकि उनके इस अनशन को तोड़ने के लिए और उनकी जान ना जाए इसके लिए उन्हें ज़बरदस्ती अरेस्ट तक कर लिया गया था। उनको हॉस्पिटल में रखा गया, उनके अंदर पाइप्स डाले गए, नलियाँ डाली गई, और उसके ज़रिए लिक्विड फूड, यानी कि वो खाना जब इंसान कुछ कर नहीं पाता, उठ के बैठ नहीं पाता, जो कोमा में लोग चले जाते हैं स्पेशली उन्हें देने के लिए होता है, वो खाना उन्हें खिलाया जाने लगा। इसके बाद भी वो नहीं टूटी और 16 सालों तक उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस अपने अनशन पर बैठी रही। 16 सालों के बाद जब उन्होंने अपना अनशन तोड़ा तो कुछ लोगों को बुरा लगा, कुछ लोग उनके लिए बहुत खुश थे कि फाइनली वो अपना खाना खा पा रही है, उन्होंने फाइनली वो नॉर्मल खाना खाया जो एक इंसान खाता है। लेकिन ये थी कौन, चलिए बता देते हैं। इनका नाम है इरोम शर्मिला। ये मणिपुर में रहने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें लोग उनके मजबूत इरादों के लिए आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से जानते हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, क्योंकि अभी तक जो सबसे लंबी भूख हड़ताल पर कोई बैठी है तो वो यही है। इन्होंने 16 सालों तक खाने को हाथ नहीं लगाया। जहां हमसे जब व्रत कराया जाता है और जब व्रत टूटने वाला होता है, जब हम उसको ख़त्म करने वाले होते हैं, तो हम थाली को देखते रहते हैं और इंतज़ार नहीं होता है कि कब वो एक घंटा गुजरेगा, कब चांद निकलेगा, कब सूरज निकलेगा, कब हम पानी पियेंगे, कब हम खाना खाएंगे। उस पर वो 2000 से बैठी हुई है भूख हड़ताल पर, और इसके पीछे की एक बहुत दर्दनाक वजह भी है। 2000 का वक्त था, मणिपुर बस स्टेशन पर गोलियां चल जाती हैं और उसमें 10 लोगों की जान चली जाती है। बस यही वो एक ऐसा हादसा था जो उनके दिल को झकझोर के रख देता है, उनका दिल टूट जाता है, उनके अंदर से कुछ टूट जाता है, और वो बैठ जाती है अनशन पर ये कह करके कि जब तक सरकार वहाँ के सुरक्षा कर्मियों को मिलने वाला एक अधिकार, एक कानून जिसको AFSPA के नाम से जाना जाता है, इस कानून के अंतर्गत ये है कि भैया वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी है वो बिना किसी ऑर्डर के भी एक्शन ले सकते हैं, इस कानून को हटा नहीं दिया जाता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। लोगों को लगा ये सिर्फ एक दो दिन चलेगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीने में बदले, महीने साल में बदलने लगे थे। सरकार परेशान, लोग परेशान कि अब क्या होगा, किसी की जान ऐसे भी नहीं जानी चाहिए। पर सरकार ने उनकी इस मांग को पूरा करने की जगह पर उन्हें ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लिया।
उन्हें उठाकर ले गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। हॉस्पिटल में उन्हें लिक्विड फूड दिया जाने लगा और धीरे धीरे धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ वो जिंदा रही, बट उन्होंने खाने को नहीं खाया। वो 16 साल तक अनसन पर यूं ही बैठी रही और आफ्टर 16 ईयर जब इस अधिकार को थोड़ा कम किया गया, पूरी तरह से तो नहीं हटा लेकिन हाँ ये थोड़ा सा कम हुआ, ये कानून थोड़ा सा कम हुआ, तब जाकर उन्होंने कहीं अनाज ग्रहण किया। इस पर भी लोग बुरा मान गए कि अरे अभी तक तो आप इस पर बैठी हुई थी, ये तो पूरा हटा भी नहीं है, आपने खाना कैसे खा लिया। तब उन्होंने जाकर के कहा कि देखो मेरा अनसन का तरीका सिर्फ बदला है, इरादे नहीं बदले। 16 सालों तक अगर मैं भूखी रह सकती हूँ तो इसका मतलब मेरे इरादे मजबूत हैं, मैंने हार नहीं मानी है, मैं हारी नहीं हूँ। हालांकि पूरी तरह से जीत भी मेरी नहीं हुई, बट पूरी तरह से हार भी मेरी नहीं हुई। कानून पूरा ना हटाया लेकिन कम तो किया गया ना। और ये वो सबूत है जो उन्हें बनाती है आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। क्या आपको पता था इनके बारे में? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं तो क्या सोचते हैं आप इस लेडी के बारे में, इस नारी के बारे में, कमेंट बॉक्स में या फिर कहें तो चैट बॉक्स में जो आपके एप्लीकेशन में मिलता है, बताना जरूर। लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति और वक्त हो चला है आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का, आपके मैसेजेस को देखने का जो आपने मुझे भेज दिए हैं। तो भाई, हमारा सबसे पहले मैसेज जो आया था वो आया था कैलाश नाथ तिवारी का, जो मैं मोतिहारी बिहार से सुन रहे हैं। लिखा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम आवास विकास। सविता दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखा है सुप्रभात मित्रों, सुप्रभात आपको भी। एंड धर्मेंद्र जी ने लिखा है कीर्ति जी नमस्ते, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान, जय हनुमान। बेगानों की दुनिया में अकेले रहना सीख लिया है, मैं खुश हूँ, जीवन की राहों पर चल पड़ा, ना किसी से शिकवा है ना किसी से मोहब्बत। क्या बात है, नमस्ते आपको, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं और बहुत खूब लिखा है आपने। एंड इसके बाद उन्नति मैम, बहुत बात आपने आपसे लेकिन आजकल पेट में गुली मुली हो रहा है। भैया ध्यान रखिए क्योंकि मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, पहला डायरिया, दूसरा टाइफाइड। तो भैया बच के रहिए क्योंकि पानी से होने वाली बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैलती हैं मानसून के सीज़न में स्पेशली। एंड सविता दुबे जी आप अपना प्लीज़ ख्याल रखिएगा। इसके बाद बहुत सारे इमोजीज भेजे हैं, लास्ट में लिखा है कि हम भी सैया जी से ब्रेकअप कर लिया है आज, तो हम भी पूछ लेते हैं रणबीर कपूर बनके कि काहे अपने सैया जी से ब्रेकअप कर लिया है आपने। एंड कैलाश नाथ जी लिख रहे नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, आपकी तरफ से भी बहुत सारी इमोजीज आई हैं। प्रीति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी हैं और वो लिख रही हैं आज लेट से बट वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू, एंड आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। इसके बाद लगातार आपकी इमोजीज हैं। तबिश खान फ्रॉम लखनऊ लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है गुड मॉर्निंग गोंडा में। इसके अलावा सविता जी ने बहुत ही सरप्राइज और बहुत ही शॉक्ड वे में बोला है 16 साल। जी हाँ भैया, 16 साल कोई अनसन पे बैठा था, नारी शक्ति की मिसाल। ओके, तो भैया आपने इनका नाम नहीं सुना था, ऑल राइट। बहुत सारे नाम हमारे इतिहास के पन्नों में ऐसे हैं जिनका हमने कभी जिक्र भी नहीं सुना है, बट हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद लिखा है धर्मेंद्र जी ने कि उन्नति जी, यदि कोई इंसान खाना पानी छोड़ देता है तो आमतौर से 3 से 7 दिन तक जीवित रह सकता है, और अगर वह सिर्फ पानी पीता है तो 2 महीने तक जीवित रह सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, पानी थोड़ा बहुत तो उनको भी दिया जाता है क्योंकि पानी के बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया उन्होंने 16 सालों तक खाना नहीं खाया। इसके पीछे की जो एग्जैक्ट वजह है वो ये कि पुलिस ने उन्हें कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें

खाना नहीं खाया, एक मेडिकल साइंस के जरिए, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और वो यूं किसी को मरने नहीं देती, इस बात का सबूत आपको अभी हमने आयरन लेडी ऑफ मणिपुर में दे ही दिया। एंड ओके, गुड मॉर्निंग मैम जी, लिखा है अनोखी शर्मा जी ने, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड फिलहाल एक सवाल है आपसे, मेरा सवाल ये है कि क्या आपने अपने घर में खिलने वाले रंग बिरंगे पौधों को देखा है? अगर हाँ तो उसमें एक फूल आता है जिसको हम आम भाषा में सदाबहार कहते हैं, जो हमेशा हर मौसम खिलता है। क्या कभी आपने उस पौधे को देखा है? हमारे घर के आसपास मंदिरों में, इवन कई बार रैंडम जगह पर उगाता है, चलते फिरते कहीं भी वो नजर आ जाता है। उसके बीज जहां जहां जाते हैं वहां वहां सदाबहार के पौधे नजर आते हैं। पर आपको बताइए, सदाबहार का पौधा जो हमें दिखने में बड़ा आम सा लगता है, जो कभी कभी इंसान इतना परेशान हो जाता है कि भैया मेरे घर में तो पूरा जंगल है, तुम चाहो तो उसको फ्री में ले जाओ, नर्सरी वाले आपको ये 10 से 15 रुपए की बीच में दे देते हैं, वही पौधा मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी रिसर्च में शामिल था। बताते हैं आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किस चीज की रिसर्च हो रही थी जिसके बाद सदाबहार पौधे ने अपना कमाल दिखाया था, किस किस थेरेपी में ये शामिल हुआ था, बताते हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग और अपनी आज शे उन्नति के साथ, स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी आरजी, मौजूद हूं आप सभी के साथ और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। इस ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे किया था एक छोटा सा सवाल, और सवाल ये था कि क्या आपने कभी सदाबहार के पौधे को देखा है, उसके रंग बिरंगे फूलों को देखा है। तो हमारी सविता जी ने कहा है कि हाँ देखा है, और मे बी आपने भी देखा ही होगा, भले ही आपको नाम से ना याद आ रहा हो, लेकिन आपने इसको आसपास, आस पड़ोस में, अपने घर के गार्डन में, बाहर के कहीं पर, हॉस्पिटल्स में, कहीं ना कहीं इस पौधे को ज़रूर देखा है। 15 से 20 रुपए या फिर 10 रुपए में मिल जाने वाला ये पौधा एक ऐसी दवाई में काम आता है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये तो बहुत कॉमन है कि ये डायबिटिक का इलाज करता है। जी हाँ, इसको कई लोगों ने माना भी है, जाना भी है। आपको हम बता दें कि लोग कहते हैं कि भैया डायबिटीज के इलाज में सदाबहार के पौधे ने हमेशा अपना कमाल दिखाया है। इसके पत्ते, इसके बीज, इसके फूल, न जाने क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब ये पहली बार इस पर रिसर्च चल रही थी, कनाडा के दो वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर जेम्स नोबल और डॉक्टर चार्ल्स बियर, वो अमेरिका की एक दवा कंपनी का नाम था एली लिली के साथ मिलकर काम कर रहे थे, और वो रिसर्च कर रहे थे इसी पौधे के ऊपर, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जान रहे थे, स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे कि ये पौधा क्या सच में डायबिटिक का क्योर हो सकता है, क्या डायबिटिक का इलाज इससे हो सकता है या नहीं हो सकता है। तब उनके पास एक छोटा सा सफ़ेद चूहा था, और आपको पता है कि जब भी कोई दवाई बनती है तो उसका इस्तेमाल सबसे पहले छोटे जानवर जैसे लाइक चूहा और मेंढक पे किया जाता है, स्पेशली चूहों पर किया जाता है। तो इसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर, यानी कि इसकी कुछ बूंदें निकाल कर उस चूहे के बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं। इसके बाद जो होता है वो साइंटिस्ट को हैरान कर देता है, और होता क्या है, वो चूहा मर जाता है। जी हाँ, साइंटिस्ट हैरान परेशान कि चूहा मर कैसे गया, हम तो डायबिटीज का रिसर्च कर रहे थे ना, इसका मतलब ये रिसर्च फेल हो चुकी है। आई थिंक कोई भी ये सोच लेता कि हाँ ये रिसर्च अब फेल हो चुकी है, अब ये किसी काम की नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। 1950s में, यानी कि 1950 से लेकर 1960 के दशक में जो साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे थे, मिस्टर नोबल एंड मिस्टर बियर, वो अपनी इस रिसर्च से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, उन्होंने इसको फेल नहीं बताया, बल्कि उन्होंने इस चूहे पर स्टडी करना शुरू किया, उन्होंने देखना शुरू किया कि आफ्टर ऑल ये चूहा मरा तो मरा कैसे, एक पौधे में क्या जो हम डायबिटिक का क्योर समझ रहे थे, जिसको हम अभी तक डायबिटिक का इलाज समझ रहे थे, क्या वो अचानक से जहरीला हो गया है, या इसके पीछे कोई और वजह है, इसके पीछे इस चूहे की मौत क्यों हुई। तो जब उन्होंने रिसर्च किया, स्टडीज की, तो पाया कि चूहे के अंदर वाइट ब्लड सेल्स जो थी वो अचानक से रुक गई थी और ख़त्म होने लगी थी। उनके दिमाग में फिर एक सवाल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक पौधा किसी के वाइट ब्लड सेल्स को कैसे रोक सकता है। तो बाद में समझ में आया कि इस पौधे ने जैसे ही इसका एक्सट्रैक्ट उस चूहे के अंदर गया था, वैसे ही उस पौधे ने वाइट ब्लड सेल्स का डिवीजन होने से ही रोक दिया था, यानी कि सेल डिवीजन नहीं हो रहा था, सेल दो चीज़ों में नहीं बट रहा था। आपको भी पता है सेल डिवीजन होता है और इसके बाद ही एक नया प्रोसेस चलता रहता है, ये प्रोसेस यूं ही चलता रहता है, सेल डिवाइड होते रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है, वो डिवीजन ही नहीं हो रहा था। वाइट ब्लड सेल्स की काउंटिंग गिरने लगी थी क्योंकि सेल डिवाइड नहीं हो रहे थे, वो वहीं थम चुके थे, और उसी वाइट ब्लड सेल्स के काउंट के गिरने की वजह से चूहे की मौत हुई थी। अब बाकी लोग जहां इसको फेल बताने वाले थे,

अब बाकी लोग जहां इसको फेल बताने वाले थे, पर उन्होंने यानी कि मिस्टर नॉवल और मिस्टर बेयर ने इस पर रिसर्च किया और पाया कि ये दुनिया की वो खतरनाक बीमारी का इलाज बन सकता है जिसका इलाज अभी तक कभी नहीं था। जी हाँ, हम आपको बता दें, सदाबहार का वो पौधा जिससे एक चूहे की मौत हुई, वही आ गए जाकर बना कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा हथियार, मतलब कैंसर की दवा। कैंसर में कीमोथेरेपी दी जाती है और कैंसर में भी यही होता है कि जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड हो रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से उनका डिविजन होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो अननेचुरल होती है, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप करता है इंसान के शरीर में। और सदाबहार का ये एक्सट्रैक्ट बस उसी चीज़ को रोक कर रखे हुआ था, यानी कि वो बढ़ने ही नहीं दे रहा था, सेल्स को डिवाइड नहीं होने दे रहा था, और जो रिसर्च फेल होने जा रही थी उस रिसर्च को कामयाब बनाया। उसे कैंसर के कीमोथेरेपी की एक रामबाण इलाज माना गया और उसको कीमोथेरेपी में चला दिया गया, और आज भी ये दवा इस्तेमाल की जाती है कीमोथेरेपी में, क्योंकि ये सेल को डिवाइड होने से रोक देती है। तो जो दवा, जो रिसर्च अभी तक डायबिटीज़ को लेकर चल रही थी, वो आकर ख़त्म होती है एक कीमोथेरेपी पर। इसीलिए कहते हैं गलतियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कभी कभार आप अपनी गलतियों से ही बड़े बड़े इन्वेंशन करते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करते हो, बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हो, और ये बात तब तक पता नहीं चलती अगर उस इन्वेंशन से या उस रिसर्च से उस चूहे की डेथ नहीं होती और उस पर रिसर्च नहीं किया जाता। यूँ तो कई लोग अपनी गलतियों से हार मान जाते हैं, बट इतिहास के पन्नों में जिन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है, जिन्होंने अपनी गलतियों को दोबारा से पढ़ा है, देखा है, उनका ही नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होता है। तो आप बताइए, आपको पता था कि आपके घर में लगा हुआ फ्री का या 10 रुपये के पौधे में कीमोथेरेपी को यानी कि कैंसर की दवा हो सकती है, कैंसर का इलाज उसमें शामिल हो सकता है, प्लस उसमें डायबिटिक का भी इलाज शामिल हो सकता है? अगर आपको नहीं पता था तो ये जानकारी जान के आपको कैसा लगा? सुनते रहिए, मुस्कुराते रहते, छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं। तब तक के लिए आप इन्जॉय करें छोटा सा प्यारा सा गाना जो आपके लिए पेश करते हैं हम ताल फिल्म से, इश्क बिना। स्टे ट्यून्ड।

आइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: साइकिल।
1: अच्छा, आपने कभी अपने घर के बच्चों से पूछा है कि अगर उनका कोई दुश्मन है तो वो कौन है? पूछा है? और उनका जवाब बड़ा चिढ़के आया हो कि यार कौन था वो, कौन था वो जिसने कभी स्कूल बना दिया, जिसने स्कूल जाने का नियम बना दिया, और क्यों सुबह 7 बजे ही? एक्चुअली दिमाग में मेरे काफ़ी बार आया है, क्यों सुबह सुबह ही स्कूल जाना पड़ता है, क्यों हम रात में स्कूल नहीं जा सकते, और ये एग्ज़ाम वाला काम किसने किया है? भाई आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर पूछा होगा किसी ना किसी से कि एग्ज़ाम बनाया किसने, कौन बनाकर दिया है एग्ज़ाम, मिल जाए तो उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मेरे क्लास में तो भैया बच्चे इसीलिए लड़ा करते थे क्योंकि उनको लगता था एग्ज़ाम जिसने बनाया है ना, अगर वो एक बार मेरे सामने आ जाए, अगर वो एक बार आ जाए तो उसको कोई बचा नहीं सकता मुझसे, बट वो कभी आया नहीं। आपके बच्चों के 3 सबसे बड़े दुश्मन, सबसे पहले वो जिन्होंने रोज स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया, दूसरे वो जिन्होंने देखा कि बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं स्कूल जाने के बाद भी, बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं, और क्यों ना इनकी खुशियों को चुटकी में गायब करते हैं और होमवर्क बना दिया, तीसरे वो जो इन सब के दादाजी निकले और उन्होंने कहा ठीक है तुम स्कूल भी जा रहे हो, होमवर्क भी कर रहे हो और अभी भी खुश हो, ऐसे कैसे, चलो तुम्हारे लिए हम एग्ज़ाम बना देते हैं। और इन तीनों ने मिलकर बच्चों के सबसे बड़े नाइटमेयर को क्रिएट कर दिया। पहले बच्चे बड़े खुश हुआ करते थे, हमेशा घूमते थे, खाते थे, इधर उधर जाते थे, और फिर आया वो टाइम जब हमने बच्चों की काबिलियत को उनके नंबरों से जज करना शुरू कर दिया। हमको लगने लगा कि जो बच्चा 90% लेकर आ रहा है वही इस देश की आन बान शान है, वही अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। इसके अलावा जो 45% वाला है, जो 75% वाला है, जिसके 80% भी आ रहे हैं या जो फेल हो चुका है, उससे तो अपनी ज़िंदगी में कुछ होने वाला है ही नहीं। और इसी बात को सुन सुनकर उसके दिमाग में एक और चीज़ चढ़ गई कि हाँ अगर मार्क्स इतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो क्यों ना चीटिंग कर लें। इसके बाद आया कि नहीं, चीटिंग करना इज़ बैड, हाँ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ये जो खौफ तैयार हमने कर रखा है बच्चों के चारों तरफ कि भैया नंबर नहीं आए, अगर 90% आए तब तो मैं आपको तोहफा दूंगा, अगर 60% आए तो आपको बहुत पिटाई हो जाएगी, इसी डर में बच्चे चीटिंग करते हैं, बच्चे झूठ बोलते हैं, बच्चे एग्ज़ाम देना नहीं चाहते, और उनके कम नंबर आ भी जाते हैं तो वो बताना नहीं चाहते, ये होती है असल वजह। लेकिन इसकी शुरुआत की थी सबसे पहले एक महान इंसान ने जिनका नाम था हॉरेस मैन। हॉरेस मैन से देखा नहीं गया, वो बच्चों को देख रहे थे कि बच्चे खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं, ग्राउंड में बहुत मस्ती मजाक चल रही है, और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे तुम मस्ती कर सकते हो, अभी अभी देखो अभी हम स्कूल बना चुके हैं ना, तुम स्कूल जाना ही पड़ेगा, तुम स्कूल नहीं जाओगे तो खराब हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और इसी बात पर उन्होंने बच्चों के लिए नियम बनाया कि अब आपको रोज़ रोज़ स्कूल आना है। बच्चे जो सुबह उठने में चिड़चिड़ किया करते थे, अब उन्हें भी रोज़ सुबह 7 बजे उठना पड़ता था, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स ज़बरदस्ती उठाना शुरू कर चुके थे कि स्कूल जाना है, स्कूल जाओगे तो नवाब बनोगे, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। भाई क्यों ऐसा क्यों किया हमने, हमेशा जो बच्चे खेल कूद में आगे होते हैं उन्हें हमेशा हम लोगों ने ख़राब की कैटेगरी में रखा है, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं उन्हें हमने हमेशा अच्छे बच्चों की कैटेगरी में रखा है। क्या हमारी लाइफ में खेल कूद का कोई महत्व नहीं है? क्या हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में खेल कूदना ज़रूरी नहीं है? अगर है तो हम ये क्यों कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब? हम ये भी तो कह सकते थे ना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बढ़िया और वैसे भी पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब। हम दोनों चीज़ों को कंपेयर क्यों करते हैं? फिलहाल ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि ये कहावत हमने क्यों बनाई और क्यों हम बचपन से हर एक बच्चे के दिमाग में यही डालते आ रहे हैं कि खेलना कूदना ख़राब चीज़ होती है, जबकि ये उनके फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, सोशियोलॉजिकल हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका जवाब आप मुझे चैट बॉक्स में दीजिए, तब तक हम बात कर लेते हैं इन लोगों की जिन्होंने बच्चों के 3 दुश्मन तैयार किए हुए हैं, जिसमें से पहला है हॉरेस मैन, जिन्होंने कहा कि हर कोई स्कूल जाएगा, और यही वो इंसान है जिन्होंने मॉडर्न स्कूल सिस्टम की शुरुआत की थी प्लस बढ़ावा दिया था। 1830 के दशक में उन्होंने शिक्षा में सुधार लाने के लिए बच्चों को हमेशा हमेशा स्कूल जाने की हिदायत दी। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने मॉडर्न स्कूल सिस्टम बनाया और जिसमें हर एक बच्चे को रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया, और वहीं से स्टार्ट हो गया आई थिंक कि बच्चे स्कूल जाएंगे 75% अटेंडेंस लाएंगे, और कुछ बच्चे तो सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मम्मी लंच बनाकर देती है, वो बहुत टेस्टी होता है। स्पेशली कुछ बच्चों में हम भी कभी कभी शामिल हो जाते थे, स्कूल जाने का मन नहीं था लेकिन लंच तो मिलता था ना बॉस। और इसके बाद है वो इंसान जिन्हें आपकी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कहा स्कूल जा रहे हो तो घर आके क्यों इतनी मस्ती कर रहे हो, घर आके भी तुम काम करोगे। और ये वो इंसान है जिन्होंने होमवर्क बना दिया। भैया इंटरनेट पे कहा जाता है कि इटली पे रहने वाले रॉबर्टो नेवलस नाम के एक इंसान, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने होमवर्क बना डाला गया है। हालांकि इतिहासकार इसको एक मिथ मानते हैं, सिर्फ एक मिथ यानी कि अफवाह मानते हैं, लेकिन हाँ लोग बहुत अच्छे से मानते हैं कि 1905 में यही वो इंसान थे जिन्होंने कहा था कि बच्चे घर जाके होमवर्क करेंगे, उनको सुकून से जीने नहीं देना है, और उन्होंने घर पर जा करके घर अभ्यास यानी कि होमवर्क जैसी चीज़ों को बना डाला। और अब बच्चे अब घर जाकर यहाँ से 8 घंटे स्कूल से पढ़ने के बाद घर जाकर भी पढ़ाई कर रहे हैं। और इससे भी जब साइंटिस्ट का पेट नहीं भरा, उन्हें लगा कि बच्चे अभी भी बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो एक महाशय सामने आए जिनका नाम था हेनरी फिशेल, और उन्हें बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम बना दिया। जी हाँ, उन्होंने माना कि शैक्षणिक परीक्षाओं में बदलाव लाने के लिए प्लस सुधार लाने के लिए एक टेस्ट का होना, एग्जाम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्चों की ग्रोथ के बारे में बताएगा, वो क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं और किस किस तरह की चीज़ें हैं। प्लस उन्होंने देखा कि पुरानी सभ्यताओं में भी टेस्ट जैसी कोई चीज़ हुआ करती थी, जब उनके टीचर्स उन्हें कुछ सिखाया करते थे और उसके बाद उसका परीक्षा भी लेते थे। वो देखते थे कि क्या जो मैंने सिखाया वो तुम्हें आ गया, अगर हाँ आ गया तो आप सफल हुए यानी कि आप पास हुए, नहीं तो आप पर वापस से मेहनत की जाएगी। और इसी चीज़ से इंस्पायर्ड उन्होंने एग्ज़ाम बना डाला। मैं तो हमेशा सोचती थी बचपन में, जब जब मेरा एग्ज़ाम आता था और मेरे अंदर बस एक ही गुस्सा होती थी कि जिसने भी एग्ज़ाम बनाया बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। और ये हर कोई सोचता है कि एग्ज़ाम क्यों होते हैं यार, ये सब तब भी ठीक था कि एग्ज़ाम आए, होमवर्क आया, स्कूल जाना कंपलसरी हुआ, एक बहुत बेहतरीन चीज़ थी। लेकिन चीज़ें यहाँ से गड़बड़ा गईं जब हमने बच्चों के होशियारी को, उनकी वैल्यू को, उनकी चीज़ों को, उनकी ज़िंदगी को सिर्फ एक मार्कशीट के अंदर कैद करना शुरू कर दिया। जब हमें ये लगने लगा कि बच्चे तो सिर्फ वही अच्छे हैं जिनके 90% आ रहे हैं, जिनके 70% से ज़्यादा आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं, 99% आ रहे हैं। और इसीलिए आज भारत में न जाने कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स कम रहेंगे। उनके मम्मी पापा ने सोचा था कि भैया 90% लेकर आना, और बच्चों की अगर 82% भी आ जाते हैं तो वो उस डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं कि हमने बहुत ख़राब प्रेजेंटेशन किया है, हम खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और इसी के चलते वो अपनी जान ले लेते हैं। तो क्या हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम बच्चों के मार्कशीट से उन्हें जज करें, और हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा करते करते करते करते बच्चे इतने उदास हो जाएं कि वो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म करने पर आ जाएं? क्या ये सही था? एग्ज़ाम से होना सिर्फ यही तो बता रहा था ना कि आपने कुछ सीखा कि कुछ नहीं सीखा। अगर आपने नहीं सीखा तो उस पर दोबारा काम करना जाएगा, और अगर आपने सीख लिया है तो आप सफल हो चुके हैं, आप अगली कड़ी में जा सकते हैं, आप अगली सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। बट फिर हमने क्यों ऐसा कर दिया कि जो बच्चे हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं हम उन्हें ही रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें ही अच्छा बच्चा कहते हैं, उन्हें ही हम न जाने कितनी ही अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजते हैं। बट वही बच्चा जो खेलने में बहुत आगे होता है, जिसका साथ पढ़ाई में दिमाग नहीं होता, वो टॉपर्स की तरह 99% 95% 90% नहीं ला रहा है, लेकिन स्टिल वो पास हो रहे हैं, बस वो गेम्स में बहुत अच्छे हैं, तो क्या वो ख़राब हो गए? क्या वो हमारी नज़रों में इतने गिर चुके हैं? जहाँ दूसरी कंट्रीज इस चीज़ को बढ़ावा देती आ रही हैं, जहाँ दूसरी कंट्रीज, आपका पड़ोसी देश जापान ये बताता है कि 12 साल तक बच्चों का कोई एग्ज़ाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें चीज़ें सिखाई जाती हैं। बच्चों पर प्रेशर डेवलप होता है जब हम उनको एग्ज़ाम का प्रेशर देते हैं, उनको मार्क्स का प्रेशर देते हैं, बच्चे डेवलप नहीं कर पाते। तो यहाँ हम क्यों ऐसा करते हैं भाई कि जिसके अच्छे मार्क्स होंगे बस उसी की जिंदगी अच्छी होने वाली है। आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स सोसाइटी में मौजूद हैं जिन्होंने बहुत कम मार्क्स लेकर भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने क्लास के टॉपर तो हो सकते हैं लेकिन ज़िंदगी के टॉपर कभी नहीं बन पाए। तो क्यों आज भी हमारे पेरेंट्स की, हमारे हमसे पहले वाली जनरेशन की, इवन हमारे जनरेशन के भी कुछ लोगों की सोच सिर्फ उस मार्कशीट तक रुक चुकी है? क्यों हर साल जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो उसके साथ साथ दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ये भी छप जाता है कि बच्चों ने टॉप किन किन बच्चों ने किया है और किन किन बच्चों ने अपने डिसअपॉइंटमेंट में आकर सुसाइड कर लिया? ये सवाल मेरा आपसे है, आप जवाब देंगे चैट बॉक्स में कि ऐसा क्यों है, क्यों हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि बच्चों को लगता है कि एक एग्जाम में फेल हो जाना, जिंदगी में फेल हो जाना होता है, क्यों वो अपनी जान ले लेते हैं? बताइए बताइए, और एंजॉय कीजिए एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पर आते हैं, बात करेंगे आपके सपनों पर, वो वाले सपने नहीं जो आप खुली आंखों से देख रहे हैं, वो सपने जो आप बंद आंखों से देखते हैं। खुली आंखों से देखने वाले सपनों पर तो हर कोई बात करता है, लेकिन ये सपने जिस पर कोई बात ही करना पसंद नहीं करता है उस पर हम बात करने वाले, कितने तरीके के होते हैं और आपका खुली आंखों वाला सपना कौन सा है बताइएगा जरूर। स्टे ट्यून्ड।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: कभी आपने सोचा है कि जो आप सपने देखते हैं वो आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ पर हैं? कभी सोचा है ये जो सपने हमें रात भर लगते हैं, कि हमें रात भर एक सपना आया, क्या वो सच में पूरी रात आते हैं या बस वो कुछ सेकंड के लिए होते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं वो हमसे इतने अलग क्यों होते हैं और उनके सपने इतने अलग क्यों होते हैं? क्यों अचानक से हमें नाइटमेयर्स आ जाते हैं? क्यों हम डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं? और क्या हर सपना एक दूसरे से अलग होता है? क्या सपनों के भी तरीके होते हैं? जी हाँ, बात करेंगे इसी पर। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं आपका वापस से आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी RJ उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ हैं। आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। भैया सपने ना बड़े अलग अलग होते हैं। एक वो सपना होता है जो हम खुली आंखों से देखते हैं, जो कुछ बनने के लिए देखते हैं, अपने फ्यूचर के लिए देखते हैं। और एक वो सपने होते हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नींद में उठा देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लगता है कि ये सच है, बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और उसमें इतना ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस आता है कि इंसान अपनी सच में से भी डरने लगता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। सपनों में

आंख खोलते हैं तो यही सोचते हैं, क्या मैं अभी भी सपने में हूँ या मैं बाहर आ गई, मैं हूँ कहाँ। अगर ऐसा होता है तो आइए बात करते हैं आपके इन्हीं ख्वाबों के बारे में, इन्हीं सपनों के बारे में, इन्हीं ड्रीम्स के बारे में।

तो भैया बात करते हैं सबसे पहले आपके लूसिड ड्रीम के बारे में, यानी कि वो सपने जो आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। जी सुनने में अजीब लगता है कि सपने हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो आते हैं ना, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वो उनके पास ये ताकत होती है कि सपने के अंदर वो क्या देखेंगे, क्या करेंगे, ये उनके हाथ में होता है। जैसे कोई फिल्म चल रही हो ऐसे होते हैं उनके सपने, और डायरेक्टर प्लस राइटर वो अपने सपनों के खुद होते हैं। वो किसी और का इंतज़ार नहीं करते, वो अपने माइंड का इंतज़ार नहीं करते, उन्हें पता होता है कि वो एक सपने के अंदर है। हमें बात नहीं पता होती, हम सपना देख कर जब उठ जाते हैं तो हमें कहीं जाकर लगता है भैया कि हाँ हमने एक रात में कुछ तो देखा था जो थोड़ा सा अटपटा था। बट ये वो लोग हैं जो सोते सोते सपने देख रहे हैं, उन्हें पता है कि उनका ये सपना है और वो सपने के अंदर बदलाव कर रहे हैं। अगर उनके पीछे कोई भूत पड़ा है तो हो सकता है वो सुपरमैन बन के उस भूत को पंच भी कर दे, क्योंकि कंट्रोल तो उनके हाथ में है, वो किसी और को थोड़ी कंट्रोल दे रहे हैं। हो सकता है वो सपने में अंबानी बन चुके हों, हो सकता है उनके पास पैसे ही पैसे हों, कुछ भी हो सकता है। वो अपनी कहानी, अपने सपनों की कहानी खुद लिखते हैं, क्योंकि उस वक्त उनका दिमाग उनके साथ होता है, आपका नहीं होता, मेरा भी नहीं होता। और कुछ होते हैं जिनको देखकर अक्सर हमारी नींद खुल जाती है, अचानक से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, माथे पे पसीना और सांसें बहुत तेज हो जाती हैं, जो अक्सर हमें हॉरर मूवीज में दिखती हैं, जिसको हम कहते हैं नाइटमेयर्स, यानी कि रात के वो डरावने सपने जिसे कोई देखना पसंद नहीं करता। स्पेशली ये सपने बच्चों को काफ़ी आते हैं, इसीलिए बच्चे अक्सर डर जाया करते हैं और उनके माँ बाप उनके हमेशा साथ में रहते हैं। और एक फैक्ट बताऊँ नाइटमेयर्स को लेकर के, कहते हैं कि अगर आप अपने सीने पर सोते वक्त हाथ रख लो, और हाथ रखकर आपका जो दिल है उसके करीब आप अपने हाथ को रखकर सो जाते हो, तो सपने में आपको लगेगा कि आप एक नाइटमेयर देख रहे हो। प्लस वो जो एक भारीपन होता है कि आपका दिल धीमे धीमे धीमे धीमे बंद हो रहा है, वो रुक रहा है, इसका एहसास भी आपको होगा। इसके पीछे का रीज़न बस इतना है कि आपको अपने चेस्ट पर एक वेट फील होता है, एक वज़न महसूस होता है, जिसकी वजह से आप खुल के सांस नहीं ले पाते और आपका दम घुटने लग जाता है। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो चैट बॉक्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। इसके बाद आते हैं ड्रे ड्रीमर्स। ये सोते समय नहीं बल्कि जागते हुए होश की अवस्था में अपनी सारी कल्पनाओं के ज़रिए देख लेते हैं क्या हो रहा है, और इनमें बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, स्पेशली जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, वो अपनी इमेजिनेशन पावर से दिन में जागते हुए होश में रहते हुए सपने देखते हैं। और एक ऐसा भी सपना है जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, और उसमें होते हैं फॉल्स अवेकनिंग। इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो नींद से जाग चुका है, वो सुबह का काम कर रहा है, जबकि असल में वो सो रहा होता है। ऐसा एक्सपीरियंस कुछ लोगों को हुआ है, और ऐसे एक्सपीरियंस में कुछ लोग मेरे पास भी हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हाँ उन्होंने फॉल्स अवेकनिंग जैसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, जिसमें उन्हें लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसी एक नॉर्मल लाइफ होती है, बट असल में वो एक सपना देख रहे होते हैं। और सुबह उठकर भी लगता है यार सोए हुए थे नहीं क्या, रात में नींद पूरी नहीं हुई, अजीब सी फीलिंग आती है, थकान महसूस होती है, और लगता है यार रात में भी ढंग से नींद नहीं आई, और उन्हें रात का याद भी नहीं रहता है वो कब सोए कब उठे, क्योंकि उनका वो सपना इतना ज़्यादा नेचुरल लग रहा होता है कि वो उठने के बाद भी समझ नहीं पाते कि हमारे साथ तो हुआ का। जी हाँ, तो ये वो सारे सपने हैं जो अलग अलग तरीके से आते हैं। लेकिन सपने आते क्यों हैं, इसका जवाब आज तक साइंस के पास भी नहीं है। बस साइंस इतना मानता है कि आपके दिमाग के पीछे जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है, कहीं ना कहीं वही आपके इन ड्रीम्स की वजह बनते हैं। अनकॉन्शियस माइंड जो आपके पूर्वजों के एक्सपीरियंस को भी अपने साथ रखते हैं, और इसीलिए कभी कभी आपको सोते हुए अचानक से झटका आ जाता है। और कहते हैं कि पहले आपके पूर्वज पेड़ पे सोया करते थे, और वो गिरने की वजह से वो जो

झटका लगता है कि वो ना गिरे, उनका बैलेंस बना रहे, और ये एक्सपीरियंस आज भी हमारा दिमाग अपने साथ लेकर घूम रहा है। वहीं पर सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ है जो सपने तैयार करता है और आपको दिखाता है, और ये सपने पूरी रात नहीं आते। जी हाँ, आपको पूरी रात कोई सपना नहीं आता, सपने सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड के अंदर आते हैं, और आप 7 सेकंड को अपने 7 घंटे की नींद समझ लेते हैं कि आपने पूरी रात ये चीज़ देखी है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सुबह उठने से पहले जो 7 सेकंड होते हैं, बस आप उसी में देखते हैं, और इसीलिए सपनों को लेकर के बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। आज भी साइंस इस बात को खोजने में लगी पड़ी है कि क्यों सपने आते हैं, क्यों कई बार ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं है। इससे पहले कि उन्हें कोई भूत बता दे, आप साइंस की तरफ जरूर जाइएगा। लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, आपके मैसेजेस की तरफ चलेंगे। आप बताइए आज का शो आपको कैसा लगा, आपका फीडबैक जरूर से दीजिएगा आपके अपने चैट बॉक्स में। और घड़ी में वैसे तो वक्त होता जा रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन एक प्यारा सा ब्रेक आप एंजॉय करें, हम मिलते हैं इस गाने के उस पर। स्टे ट्यून्ड।

तो एक बार वापस स्वागत है आप सभी का आपके अपने मॉर्निंग स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। अपनी आशुंदी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। वक्त हो चला है आपके अपने चैट बॉक्स की तरफ चलने का, आपके मैसेजेस और आपके फीडबैक्स जो हमारे चैट बॉक्स में आ चुके हैं उनको पढ़ने का। तो जो लास्ट मैसेज हमने पढ़ा था वो अनोखी शर्मा जी का था और उन्होंने लिखा था गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद उनका ही सवाल था कैसी हैं मैम जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। एंड उसके बाद सोनिया तिवारी हमारे साथ जुड़ी थी जो लिख रही है हाई एवरीवन, हाई कैसी हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड अनोखी जी ने कमाल का ज्ञान दिया है और लिखा है कि खाली बैठी थी तो सोचा कुछ आपको बता दूं, 99 के बाद 100 आता है, कसम से ज्ञान बहुत है लेकिन कभी घमंड नहीं किया। क्या बात है भाई, बहुत होशियार हैं आप और आपने सच में बहुत बेहतरीन बात बताई है। मिश्रा ऑप्टिकल हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। सविता दुबे जी की तरफ से काफी सारे इमोजीज, थैंक यू सो मच। कैलाश नाथ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मोतिहारी बिहार से। ललित माझी हमारे साथ जुड़े हैं नेपाल से, आपका भी स्वागत करते हैं। और नेपाल में वेलकम को क्या कहते हैं सर, मुझे जरूर बताइएगा चैट बॉक्स में, क्योंकि मुझे नेपाली सीखनी है, मुझे भाषा ही सीखने में बड़ा मजा आता है। एंड ओके, आपका भी वेलकम है, इस्तकबाल है गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड सबलू जी जो मैं मुंबई से सुन रहे हैं लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आरजी व्रति जी, गुड मॉर्निंग टू यू। और लिखा है एंटरटेनमेंट जो है रंग लाती, गम को दूर ले जाकर छोड़ देती है। जी हाँ बेशक, और आप तो मुंबई में रहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एंटरटेनमेंट का मतलब और भी बहुत कुछ है। इसके बाद लिखा है कि उन्नति जी मेरे दादाजी आज भी साइकिल चलाना पसंद करते हैं, पहले के जमाने में लोग मेहनत क्या करते थे, अब मोटर वाहन की सुविधा है, लोग पैदल चलना छोड़ रहे हैं। वैसे ये बात तो सच है भैया, लोगों ने पैदल चलना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, लेकिन लेकिन लेकिन जिस तरह से अब 10K स्टेप्स का जमाना वापस आ रहा है, जिस तरह से लोग अपने कदमों को गिन रहे हैं कि 10,000 कदम चलने ही हैं दिल के, वो फिर से वॉक करना स्टार्ट कर चुके हैं और कमाल की बात है कि ये फिर से वापस आ चुका है। महेंद्र दीपन जी जो मैं सुन रहे हैं राजस्थान से, और उन्होंने लिखा है कि बिल्कुल सही कहा आपने मैम, और यही सबसे बड़ी विडंबना है, इतिहास और आज का दौर दोनों इस बात का गवाह है कि स्कूल कॉलेज में औसत रहने वाले कई लोगों ने अपनी सूझबूझ, व्यापार और कला के दम पर ऐसी सफलता हासिल की है जो टॉपर कभी सोच भी नहीं सकता। जब तक समाज इस सोच से बाहर नहीं आता तब तक ये दबाव रहेगा, लेकिन कम से कम हम अपने स्तर पर ये समझ सकते हैं कि कागज़ का एक टुकड़ा किसी इंसान का भविष्य या उसकी काबिलियत तय नहीं कर सकता। जिंदगी किसी भी एक परीक्षा से बहुत बड़ी और खूबसूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत बेहतरीन बात कही। हम अपने लेवल पर एक कोशिश कर सकते हैं कि हमारे साथ रहने वाले हमारे भाई बहन और हमारी जनरेशन के आगे आने वाली जो जनरेशन है वो कभी मार्क्स को लेकर के इतनी डिसअपॉइंट ना हो कि वो सुसाइड जैसा कदम उठाए। एंड इसके बाद मुस्तफ़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं सऊदी से, आपका भी स्वागत करते हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू, क्या आपके वहाँ भी मॉर्निंग हो चुकी है। एंड इसके बाद लिखा है धर्मेंद्र जी ने, मोदी जी मैं तो सपने में हनुमान जी की तरह उड़ता हूँ, अब अपने को देखता हूँ, ओके उड़ते हुए अपने को देखता हूँ और ये सपना अक्सर आता है। ये अगर रिपीटेड सपना है आपके लिए तो भाई आपके सपने का कुछ ना कुछ मतलब जरूर निकलेगा। फिलहाल कुछ लोग हैं जिनको रिपीटेड सपने कई बार निकल कर आते हैं, यानी कि बार बार एक ही तरह का सपना आता है, लेकिन कोशिश कीजिए आप उस सपने में सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, क्योंकि साइंस कुछ और बोलती है और वहीं पर जो सपनों को रीड करते हैं यानी कि जो ड्रीम्स को रीड करते हैं उनके लिए आपके सपनों का मतलब डेफिनेटली कुछ और निकलने वाला है। महेंद्र जी ने लिखा है शो और जानकारी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड अगेन ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखा है गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल, गुड मॉर्निंग टू यू। और सर मैंने आपसे पूछा था कि वेलकम को नेपाली में क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, तो अब मैं आपसे मिलूंगी 12 से 1 लेकर के आज की स्टोरी यानी कि ट्यूसडे वाली स्टोरी, तो सुनना मत भूलिएगा। 12 से 1 आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कहानी पेश करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंतज़ार कीजिए, एंजॉय करते रहिए। आपको विदा कर रही हूँ इस गाने के साथ जो कि पीके फिल्म से है, लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आपका अगला कार्यक्रम है गांव की गूंज और अभी तक आपके साथ मौजूद थी आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजी उन्नति। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर। क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJMPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस

0: मत की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली पीजी कॉलेज गोंडा।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: हेलो किरण दी, कैसे याद किया आज?
1: हेलो समता, अरे लाली बुआ को तो तुम जानती हो ना, वो गोंडा आने वाली थी। उनको 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली में सुन सहेली प्रोग्राम के लिए बुलाया था श्वेता ने, पर उनकी भैंस बीमार हो गई। उन्होंने पूरी गांव की गूंज की टीम को सिद्धार्थ नगर अपने गांव पिपराहवा बुलाया है।
0: अरे फिर तो बहुत मजा आएगा, हम श्वेता जिम्मी को भी बोल देते हैं तैयार होने को। और ये तो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर ही है, इतनी ठंड में खूब मजा आएगा।
2: अरे समता दी बहुत खुश हैं, हम सबको भी बताइए क्या बात है। वैसे हम लोगों ने सुन लिया है चोरी चोरी आप लोगों की बातें कि हम लोग सिद्धार्थ नगर जा रहे हैं, जो 29 दिसंबर 1988 को बस्ती जनपद के उत्तरी भाग को अलग कर सिद्धार्थ नगर बनाया गया। इस जनपद का नामकरण गौतम बुद्ध के बचपन के नाम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर हुआ।
3: वाह ज्ञानी बाबा, श्वेता की जय हो। मैं तो चली गाड़ी में बैठने, किरण दी आ गई हैं, उनके गाने की आवाज सुनाई दे रही है।
4: हमार राजा राखें दुई रनिया।
5: बड़े दुख की बात है,

0: वाह किरण दी, आप आती हैं और अपने गानों से जोश भर देती हैं। आज तो बहुत मजा आएगा, लाली बुआ के हाथ के पुलाव भी खाने को मिलेंगे।
1: हाँ सही कह रही हो, काला नमक सुगंधित चावल तो है ही और बहुत प्रसिद्ध है, ये तो विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है।
2: जब हम चावल खाते हैं तब कभी नहीं सोचते कि किसान भाई कितनी मेहनत से हमें चावल देते हैं, पर डाइनिंग टेबल पर बैठे हम लोग पुलाव या बिरयानी बनाने वाले की जमकर तारीफ करते हैं, पर ये चावल दिया किसने, उगाया किसने, ये कभी नहीं सोचते।
3: हाँ किरण दी, गांव की गूंज की टीम का उद्देश्य तो यही है, गांव की मिट्टी से फिर से सबको जोड़ने का, पर हम सब मिलकर कहते रहते हैं अरे गांव में क्या रखा है।
0: नए जोश के साथ शुरुआत करते हैं और एक बार फिर गांव की गूंज की पूरी टीम लोगों को बताते हैं कि गांव से दूर होकर के हमने क्या खोया है, पर जोश के लिए गाना तो बनता है भाई।

0: आइए आइए, आप सभी का स्वागत है सिद्धार्थ नगर में। मैं अपने फ्रेंड के साथ कपिलवस्तु घूमने गया था, पता चला आप लोग आ रहे हैं तो मैं रुक गया।
1: हरिओम, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लाली बुआ तो शायद डॉक्टर के पास गई हैं अपनी भैंस के लिए।
2: अरे भैंस के भी डॉक्टर होते हैं? ये तो मैंने पहली बार सुना है।
3: वेटनरी डॉक्टर, गाय भैंस कुत्ते हर जानवर के डॉक्टर होते हैं ये। जानवर की भी वैक्सीन होती है।
0: सही बोला जिम्मी तुमने, जानवरों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है और जाड़े में उनको भी तो सर्दी जुकाम हो जाता है।
4: हरिओम भैया, फिर बताइए कैसे हम लोग जानवरों की देखभाल करें? जाड़े में चारों ओर पहाड़ी पहाड़ दिख रहे, कितना सुंदर है। पिहरवा गांव पर ठंड भी और ज्यादा पड़ती होगी।
2: पहले यह लाल रंग का आयुर्वेदिक पानी पियो। यह सप्पन वुड के पेड़ के छिलकों को पानी में उबाल करके और जब हल्का गुनगुना रहे तब इसको पियो, ये बहुत फायदा करता है।
3: स्वप्न वुड, इसे इंडियन रेड वुड भी कहते हैं। देखो यह पेड़ भी यहाँ लगा है। आयुर्वेदिक पानी हम लोग के यहाँ नहीं पॉपुलर है। किरण दी के गाने को देखो, कितने लोग वेट कर रहे हैं।
5: अरे मैं पैसे वाली बलम मोरा बनिया,

0: आप लोग को पिपराहा गांव घुमाने ले चलता हूँ, पर उससे पहले हम जानवरों को सर्दी से कैसे बचाएं इस पर बात कर लेते हैं। ठंडी के मौसम में अधिकतर जानवर कोल्ड स्ट्रोक से मरते हैं और काफी मात्रा में बीमार भी पड़ते हैं। इससे बचाव करने के लिए हमें जानवरों के आसपास अलाव जला के रखना होगा ताकि उनके पास नमी ना बने, और दूसरा उनको तिरपाल से या टाट के बोरे से ढक के रखना चाहिए ताकि उनको सर्दी ना लगे।
1: खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए ठंड में गुनगुना पानी पिएं और पिलाएं, जरूर पिलाएं, क्योंकि साफ सफाई का भी ध्यान रखें और गुनगुना पानी भी पिएं।
2: एक बात हमें भी पता है कि ठंड में गाय भैंस को रात के समय सूखा चारा खिलाना चाहिए और हरे चारे और मक्के का सेवन भी जरूर कराना चाहिए।
3: बहुत बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। दूध हम सभी पीते हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल प्योर मिले, पर उन जानवरों की देखभाल के बारे में हम कभी नहीं सोचते।
4: बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, पर हरिओम भैया, अगली बार वैक्सीन और सभी बीमारियों के बारे में डिटेल में बता दीजिएगा।
0: ठीक है जिमी, चलो हम सब लोग यहाँ से पुरातात्विक स्थल को देखने चलते हैं जहाँ मठों के खंडहर के अवशेष मिले थे।
2: यहाँ देखो किरण दीदी के लोक गीत सुनने कितने लोग बैठे हैं। लो श्वेता, ढोलक लो और किरण दी को हारमोनियम भी दे दो।
5: हरे निमिया के तीते लगे पाती,

0: कुछ विद्वान मानते हैं कि पिपराहवा गांव शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु के प्राचीन शहर की जगह है, जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के पहले 29 साल व्यतीत किए थे।
1: माना जाता है कि बुद्ध भगवान की मृत्यु के बाद राख का एक बड़ा हिस्सा यहां दफन हुआ था, जो उनके अपने शाक्य वंश को दिया गया था। एक बड़ा स्तूप और कई मठों के खंडहर है, साथ में एक संग्रहालय भी है। देखो कितना बड़ा स्तूप है यह।
2: चलिए, नहीं तो कोहरा गिरने लगेगा।
3: देखो देखो, लाली बुआ पुलाव और मूंग की दाल के कबाब भी ले आई हैं। आपकी भैंस कैसी है लाली बुआ?
1: वहाँ बहुत टेस्टी खाना है, स्पेशली टमाटर की चटनी रास्ते के लिए बुआ ने गर्म करके दी है और साथ में मूंगफली भी बांध के दी है।
0: अलाव के बगल में बैठ के खाना खाने का तो मजा ही कुछ और है। और वो देखो, किरण दीदी गुनगुनाने भी लगी।
4: अरे दीदी, गाना तो सुना ही दीजिए ना, अब तो पूरा माहौल बन गया है।

0: आप सभी को नमस्ते और बहुत प्यारे से ट्रिप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गांव के गूंज की टीम जल्दी ही फिर से वापस आएगी जानवरों के रखरखाव की पूरी जानकारी के साथ। सो टाटा बब बाय, फिर मिलेंगे।
1: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
6: अरे सुना?
7: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
10: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
11: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
10: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
12: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: माही आजा रे माही।
1: हां जी, और आप सुन रहे हैं माही फ्रॉम राज। राज राज राज राज ही रहेगा, क्योंकि आज राज हम जो खोलने वाले हैं अपनी कहानी में, वो भी बड़ा खतरनाक है। यूं तो कहते हैं कि जब भी आप नेचर में होते हैं, जब भी आप प्रकृति से मिलते हैं, तो प्रकृति के नियमों से, उसकी बनाई चीज़ों से ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी प्रकृति के बनाए हैं, लेकिन प्रकृति ने कुछ चीज़ों को और भी ऐसा बनाया है जो आपसे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। आज है मंगलवार और आपका स्वागत करते हैं ज्ञानस्थली लाइफ में। मैं हूँ आपकी अपनी आरजी उन्नति, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। हर ट्यूसडे लेकर आते हैं हम आपके लिए एक ज़बरदस्त सी कहानी, और आज की कहानी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक भालू की। जी हाँ, एक भालू जिसने रातों रात पूरा गांव गायब कर दिया। लेकिन कहां, कब, कैसे, क्यों, क्या हुआ था, इस सारे सवालों का जवाब देंगे इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार। तो बने रहिए, और आई होप आपकी एक्साइटमेंट लेवल हो चुकी होगी ऊपर। अगर हाँ, तो टेनिस लगाइए चैट बॉक्स में और इंतजार कीजिए। बस हम मिलते हैं इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले कार्यक्रम ज्ञान स्थली लाइफ में। मैं हूं आपकी अपनी आर्जुनती और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन पर। आज मैं आपको लेकर चलूंगी जापान। हर बार मैं आपको अमेरिका लेकर जाती हूं, लेकिन आज की हमारी कहानी जापान से आई है, होक्काइडो आइलैंड। ये आज भी देखने को मिलता है, लेकिन मेरी कहानी आज से कुछ 700 से 800 साल पुरानी है। अगर आप कभी जापान के होक्काइडो इलाके में जाएंगे तो आपको एक पक्की रोड मिलेगी, और अगर उस पक्की रोड पे आगे चलते चले जाते हैं तो वो रोड अचानक से कच्ची होने लगती है, और बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर वहाँ पर एक स्टैचू बना हुआ है, एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है। वहाँ पर जो फिगर है, आज मेरी कहानी उसी पर होने वाली है आप सभी के लिए। वो आइलैंड अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और हम आपको बता दें कि उस आइलैंड पर इतनी बड़ी तादाद में बड़े बड़े भालू रहा करते हैं कि जिससे हर कोई डरता है जानवर। और उन्हीं जंगली जानवरों के बीच में कुछ लोगों ने आकर अपना बसेरा डाला। आइनू लोग उस टाइम पर वहाँ रहा करते थे, और आज उनके साथ क्या हुआ, क्यों वहाँ पर आज भी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, और ऐसा क्या था जिसके ऊपर आज मैं आपके लिए पूरी कहानी लेकर आई हूँ। हम आपको बता दें, आइनू लोग जो वहाँ पर रहते थे, और आपको भी पता होगा क्योंकि आजकल चीज़ें ऐसी हैं, हम जॉब करते हैं, चीज़ें लेकर आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बट 700 से 800 साल पहले भी लोग शिकार करने जाया करते थे। स्पेशली अगर वो एक आइलैंड पर रहते हो, एक छोटे से आइलैंड पर रहते हो, तो वो हमेशा शिकार करने जाते थे, और आइनू लोग भी यही करते थे, वो हमेशा शिकार करते थे। शिकार करना, उसको काट कर पकाना, उसी को खाना, ये उनका दिनचर्या था। लेकिन जब भी वहाँ के लोग किसी भालू को मारने के लिए निकलते थे, तो सबसे पहले अपने लीडर से बात की जाती थी। जो सबसे सीनियर लीडर होता था, उससे बात होती थी कि भैया बताओ, क्या मैं किसी मादा भालू को मारूं? अगर उसने कहा हाँ, तो अपने साथ कुछ बहुत बड़े बड़े स्पेशल वेपन्स जो उस मादा भालू को मारने के लिए बनाए जाते थे, उनको वो लेकर जाता था, अदरवाइज नहीं। मादा भालू को मारा जाता था, उसके साथ अगर कोई बच्चा होता था तो उस बच्चे को अपने साथ जिंदा वापस लेकर आते थे, बच्चे को नहीं मारते थे। प्लस उस मरी हुई भालू को भी अपने साथ लेकर आते थे, मरी हुई भालू जिसको पका कर खा लिया जाता था। वहीं पर उसके बच्चे को बहुत देखभाल के साथ रखा जाता, उसके साथ कोई अत्याचार नहीं, कोई टॉर्चर नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की जाती, उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता, बहुत अच्छा अच्छा उसको पानी पिलाया जाता, उसकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता, उसे एक अलग ही लेवल की ट्रीटमेंट मिलता। और जब वो बड़ा हो जाता तो क्या होता, क्योंकि अभी तक जो उसकी देखभाल कर रहे थे वो हंटर ग्रुप्स, वो उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, उसकी देखभाल करना, उसको पानी पिलाना, उसकी तबीयत का ख्याल रखना। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो क्या उसको मार देते थे? नहीं, उसको मारते नहीं थे, वो उसको बाहर लेकर जाते थे, पिंजड़े में डाल कर रखते थे, और जब वो शिकार करने जाते थे, वो अपने साथ हमेशा उस बड़े से भालू को लेकर जाते थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक बड़े भालू से लड़ने की जो ताकत है वो इंसानों में नहीं है, एक बड़े भालू के अंदर ही होता है। तो फिर अचानक क्या हुआ, क्या हुआ ऐसा जो मैं आज आपको कहानी सुना रही हूं, आज इनका सामना किससे होने वाला था? ये लोग जो अभी तक बहुत अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, जो अभी तक बहुत खुश थे, लोगों के साथ थे, अचानक से उनके साथ अब क्या होने वाला था, बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के उस पर। Stay tuned.

1869 जहां से इस कहानी का रुख बदलने वाला था। 1869 में ये जो पहले रह रहे लोग आइनू लोग थे, इनके ऊपर जापान की आर्मी ने हमला कर दिया। अब क्योंकि आर्मी हमला कर रही है तो सिविलियंस या शिकारी कितने ही दिन तक जीतेंगे। ये हार चुके थे और इन सबको उठा उठा के यहाँ से लोग ले गए। कुछ बचे थे जो अभी भी यहाँ रह रहे थे, लेकिन अब क्योंकि जापान की आर्मी और उस वक्त जापान बहुत अलग था, आज का जापान जैसा आपको दिखता है, हर जगह पर खुशहाली है, हर जगह पर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हर जगह पर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें नज़र आती हैं, जापान कभी ऐसा नहीं था। जब जापान अपने लड़ाई के वक्त में था, जब युद्ध कर रहा था, तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी थी। लोगों की ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं हुआ करती थी। और आपको भी पता है कि जापान वो इकलौता देश है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है और उसका असर आज भी लोगों को दिखता है। इवन जापान की कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा पावर प्लांट भी ब्लास्ट हुआ है और वहाँ आज भी कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस वो जगह हो चुकी है, वहाँ पर जो भी सांस लेता है उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से जापान ने अपना पूरा इतिहास देखा हुआ है। तो उस वक्त जो सरकार जापान को चला रही थी, उस सरकार से कुछ लोग बहुत परेशान थे। वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनको खाने पीने के लिए खाना नहीं मिल रहा था, तो वक्त की रोटी वो जुटा नहीं पा रहे थे, नौकरी उनके पास थी नहीं, और इस बात से वो परेशान होकर उन्होंने सोचा क्यों ना जापान का शहर ही छोड़ दिया जाए और चलते हैं वहीं पर जहाँ पर इन लोगों ने किसी को भगाया था, यानी कि जहाँ पर अभी तक आइनू लोग रह रहे थे, जहाँ वो भालू को मार रहे थे। और वो बड़ा सा भालू जिसको शिकार में इस्तेमाल किया जाता था, जब वो बहुत बड़ा हो जाता था, बहुत का मतलब जब वो 3-4 लोग भी उसको नहीं संभाल पाते थे, तब वो उसकी भी जान ले लेते थे और उसकी जान बड़े बड़े पेड़ों के नीचे दबा कर ली जाती थी बहुत बेदर्दी से। रीज़न ये था, उनको लगता था कि हमने प्रकृति को उपहार दिया है, हमने बलिदान दिया है। पता नहीं क्यों लोगों की ऐसा होता है, सब जगह ऐसा होता है। तो उनके यहाँ भी एक ऐसा रिचुअल था जिसको वो अभी तक फॉलो करते आ रहे थे। वो चले गए थे, घर बाकी थे। तो जब ये लोगों ने देखा कि जापान के उस इलाके में लोग रहते हैं, शिकार करके खाते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी रह सकते हैं ना। वो रह सकते तो हम क्यों नहीं रह सकते, वो इंसान तो हमारे कौन से सींग निकले हुए हैं, हम भी तो इंसान ही हैं, चलो हम भी रह कर दिखाते हैं। तो वो जैसे ही उस आइनू के इलाके में पहुँचे, उन्होंने सबसे पहले आइनू के कम्युनिटी के जितने भी लोग थे सबको भगा दिया, उनके घर तोड़ दिए, क्योंकि इनके पास बंदूकें थी तो इन्होंने बंदूकों के सहारे उन लोगों को वहाँ से भगा दिया। वो लोग तो भाग गए। जिसका नाम अभी तक आइनू आइसलैंड था, उसको बदल के हिकाइडो आइसलैंड कर दिया गया। लेकिन इन लोग को कोई आइडिया था ही नहीं कि जिस जगह पर ये रहने आए हैं, जिस जगह पर इन्होंने सोचा है कि हम रहेंगे, अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, भविष्य बनाएंगे, वो जगह कितनी अलग है, कितनी ख़तरनाक है। उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पर भालुओं का आतंक बहुत ज़्यादा है, ये बात वो जानते ही नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर शुरू किया, झोपड़ियाँ बनाई और झोपड़ियों पर गेट नहीं लगाया। इसके पीछे की वजह, वो कहते थे कि हमें एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई हमसे चोरी करेगा या जिसके लिए यहाँ पर कोई क्राइम होगा। हर कोई इंसान तभी यहाँ पर आया है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। आसपास ही मक्के की खेती करने लग चुके थे और जब मक्का होता था तो जापान के शहरों में जा कर के इसको बेच दिया जाता था। एक रात जब इसी कम्युनिटी का एक आदमी अपने घर के अंदर आराम से सो रहा था, तो उसने देखा कि घर के बाहर जो उसका घोड़ा बंधा हुआ है वो कुछ कर रहा है, किसी पर घुर्रा रहा है। और जैसे उसने ये चीज़ नोटिस की, वो तुरंत बाहर आया, बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर उसने नोटिस किया कि कुछ तो यहाँ पर गलत है। अब घोड़े से तो पूछा जा नहीं सकता कि भैया तुम यहाँ कर क्या रहे हो, क्यों तुम यहाँ पर, किस पर घुर्रा रहे हो। बट इसके बाद भी उसे चारों तरफ देखना शुरू किया। बर्फ़ पड़ी हुई थी और बर्फ़ में एक बहुत भारी बड़ा पंजे का निशान बना था। वो निशान किसका था? वो निशान एक भालू का था। अब वो चारों तरफ घूम घूम के देख रहा है कि भालू है तो कहाँ है, क्योंकि एक बड़ा भालू जिसका पंजा इतना बड़ा है वो बहुत ख़तरनाक है। फिलहाल उसे वो भालू नहीं मिला, उसने सोचा कि चलो हो सकता है वो मक्के के लिए आया होगा या हो सकता है वो उस घोड़े को मारने ही आया होगा, बट किसी को नहीं नुकसान पहुंचा है, तो अंदर जाके सो जाते हैं।
उसके सोने के बाद उसको फिर महसूस हुआ कि इस बार उसका घोड़ा अपनी टांगे भी चला रहा है, यानी कि फिर से वो किसी से लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। वो फिर बाहर आता है और देखता है कि इस बार उसके घोड़े की आगे वाले दो पैर हैं ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, उसके बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और वो उसी ब्लीडिंग की वजह से, खून की कमी होने की वजह से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ भी हो जाती है। प्लस सामने जो मक्का टंगा हुआ था जिसको अभी तक ये लोग सुखा कर खा रहे थे वो भी गायब है, वो भी है ही नहीं। अब उसका दिमाग हो चुका था बहुत ज़्यादा ख़राब कि एक तो मेरा घोड़ा भी गया, ऊपर से मेरा मक्का भी गया, तीसरा हो सकता है ये हम हों। इसीलिए अब अपने गांव में रहने वाले कुछ शिकारियों की मदद लेनी ही पड़ेगी, आफ्टर ऑल वो हैं कौन। उन लोगों ने इंतज़ार किया एक और रात का कि अगली रात देखा जाएगा जो होगा। इनके पास जो बंदूकें थीं, जो गोलियां थीं, उनको तैयार किया गया और ये तीन लोग, गांव के दो शिकारी और वो खुद जिसका भी अभी घोड़ा मर गया है, वो एक जगह पर छुप के बैठ चुके थे। बर्फ़ बहुत ज़ोर से पड़ रही थी, ठंड का महीना था और इस वक्त रात में फिर से वो भालू वापस आता है उसी मक्के को पकड़ने। और जैसे ही वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा होकर उस बालियों की तरफ पहुंचने वाला होता है, ये लोग पीछे से फायरिंग कर देते हैं। एक गोली जाकर उस भालू को लगती है और गोली लगते ही वो भालू उस झोपड़ी को छोड़ के भाग जाता है। क्योंकि रात का वक्त था तो इन लोगों ने सोचा बाहर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, बाहर जाएंगे तो अपने लिए ही नुकसान है, सुबह देखते हैं। और वैसे भी इसको गोली लग चुकी है तो ऑफकोर्स ये मर जाएगा। बट यहीं पर इनकी सबसे बड़ी गलती थी, इन्होंने जो सोचा था वो नहीं होने वाला था। ये वो भालू था जिसको जापान में एक स्पेसिफिक नाम दिया गया और कहते हैं कि अगर इसको जान से ना मारो तो ये वापस अपना रिवेंज लेने ज़रूर आता है। आगे कहानी में क्या होने वाला है बताते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। आप इंजॉय करें इस प्यारे से गाने को, मिलते हैं इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो हम आपको सुना रहे हैं कहानी और मेरा नाम है उन्नति। हर मंगलवार की तरह आज भी हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं, लेकिन इस बार अमेरिका से नहीं, सीधे लेकर आई हूँ जापान से। जापान में एक भालू ने आतंक मचा रखा था, और आपको भी पता है जब जानवरों के जुबान पर इंसानी खून लग जाता है तो वो कितने ख़तरनाक हो जाते हैं। फिलहाल हमने बात की थी कि इन लोगों ने उस भालू को गोली से मार दिया था और लगा था कि शायद अब ये मर जाएगा। सुबह ढूंढने की कोशिश की थी पर भालू कहीं मिला नहीं, और महीने ऐसे ही गुजर गए, वो भालू कहीं दिखा भी नहीं। सब में खुशी का माहौल था, डर ख़त्म हो चुका था। बट एक रोज़ जब उसी गांव का रहने वाला एक इंसान जिसका नाम था सुब्रतो, अपनी बीवी और अपने बच्चे को घर पे छोड़कर बाहर गया था क्योंकि खाना ख़त्म हो चुका था और खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, तो उसने अपने बीवी बच्चों को घर में छोड़ा और अपने साथी के साथ सुब्रतो जंगल के अंदर चला गया। वहाँ जाने के बाद रात में जब वो वापस आया तो उसने नोटिस किया, यार उसके घर में आज कुछ अजीब है। उसके बच्चे की आवाज़ जो हमेशा एक साल का था, उसकी हमेशा आवाज़ आया करती थी, वो कुछ ना कुछ चबड़ चबड़ चबड़ चबड़ किया ही करता था जितना भी वो बोल पाता था। आज घर से बहुत खामोशी की आवाज़ है, कुछ है ही नहीं, एकदम खामोशी है, सन्नाटा है। सुब्रतो को ये चीज़ हजम नहीं हुई। उन्होंने घर के अंदर कदम रखा तो घर में भी एकदम सन्नाटा फैला हुआ था चारों तरफ। सुब्रतो सोचा कि यार ये क्या बात होती है, इतना क्यों सन्नाटा है। आगे जैसे ही बढ़े तो उसने देखा कि उसका बेटा सर नीचे रखकर खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट बैठा और खड़ा की पोजिशन में है। सुब्रतो को हंसी आई, उसको लगा कि शायद उसका बेटा उसके साथ प्रैंक कर रहा है, बट नहीं। जैसे ही उसका ध्यान अपने बेटे की गर्दन की तरफ गया, उसको पता चला कि उसके बेटे की आधी गर्दन है ही नहीं, उसको कोई निकाल चुका है। अब वो अफरा तफरी में अपनी बीवी को ढूंढता है कि वो कहां गई, क्योंकि घर का सामान फैला हुआ था, आलू जो वो छील रही थी वो फैले थे, हथौड़ा टूटा पड़ा था, झाड़ू पड़ी थी, जानी कितनी चीजें फैली पड़ी थी उस पूरे कमरे में, और उसे नहीं मिली। बाहर जाकर देखा तो बर्फ पर एक लाइन खिंची हुई थी और वो लाइन किसी और की नहीं, खून की बनी थी। इस बात से वो बड़ा परेशान हो गया। अब क्या करना है, लोगों ने उसको रोका कि नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं रात में नहीं, रात में नहीं जाते मुन्ना, रात में नहीं, दिन में जाएंगे, दिन में। उसे जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही जंगल की तरफ भागना शुरू किया। भागते भागते भागते भागते ये लोग एक ऐसी जगह पर आकर पहुंचे जहां पर इन्हें लगा कि हाँ सच में यहाँ पर कुछ होगा। सामने एक बड़े से पेड़ के पीछे भालू छिपा हुआ था और जमीन को जैसे इन्होंने हटाना, उस बर्फ को हटाना शुरू किया, अंदर से एक लाश निकलती है जिसके बीच का पार्ट है ही नहीं, सिर्फ पैर है, सिर्फ सर है, बाकी पूरा हिस्सा भालू पहले से खा चुका है। उसकी बीवी के मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े थे, उसके सर के बाल उसके दरवाजे पर थे। सुब्रतो वहीं टूटकर बिखर चुका था कि जिस बीवी को, जिस बच्चे को वो एकदम सही सलामत सिंगल पीस में घर छोड़ के गया था, अब वो लग ही नहीं रहा है। इतने में ही भालू ने देखा कि ये लोग 20-30 लोग हैं, उसका खाना निकाल रहे हैं, उसने सीधे हमला कर दिया। इन लोगों के पास बंदूकें थी, इन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो बंदूक चली ही नहीं, सिर्फ एक बंदूक चली, उसकी भी गोली उसको लगी ही नहीं। जिन लोगों के पास हथौड़ी थी, जिन लोगों के पास कुल्हाड़ी थी, उन्होंने उससे मारना शुरू किया, और हाँ इसका असर हुआ, वो भालू उन्हें छोड़कर चला गया। इन लोगों ने उस लाश को उठाया, हालांकि आधे लोग मना कर रहे थे कि ऐसा

मत करो, ये भालू का खाना है और भालू ने अगर देखा तो आएगा जरूर पलट के। बट सुब्रतो तो क्यों मानेगा, उसकी तो बीवी है ना, उसको तो अलविदा मिलना ही चाहिए। अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग रात के 8 बजे रिचुअल शुरू किया गया, फ्यूनरल दिया गया और लास्ट कप जैसे ही चाय का पीने जा रहे थे, पीछे से दीवार के टूटने की आवाज़ आई। दीवार टूट चुकी थी, मतलब वो भालू फिर से आ चुका था, क्योंकि उसके जुबान पर, उसके मुंह में इंसानी खून लग चुका था और अब इसका असर हर एक बात पे दिख रहा था। वहां जो लोग बैठे थे वो घबरा चुके थे और एक बंदा भागते भागते भागते भागते तुरंत अपने गांव के मुखिया के पास जाता है और उनको जाकर बताता है कि सुब्रतो के घर में भालू ने हमला कर दिया है। मुखिया डर चुके थे, उन्हें पता था कि अब कोई मतलब है नहीं, अब खुद की जान कैसे बचानी है ये बताओ। तो उन्होंने वहां पर आग जलाना शुरू किया और उनको लगा कि शायद आग की वजह से वो भालू नहीं आएगा। जानवरों के साथ ऐसा होता है, आग जला दो, बहुत शोर मचा दो तो वो भाग जाते हैं। इन्होंने आगे से आग जलाई और भालू उनको सच में नहीं दिखा। बहुत खुश थे कि चलो फाइनली हम तो बच गए, लेकिन वहीं पर उन्होंने नोटिस किया कि जो खिड़की अभी तक खुली थी, जहां से अभी ठंडी हवा आ रही थी, अचानक से वो हवा बंद हो चुकी थी, यानी कि उस खिड़की के पीछे कोई खड़ा है। कौन खड़ा था बताते हैं, स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो इसी के साथ वापस से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने वाले शो ज्ञानस्थली लाइव में। और हमने आपको जापान की एक बढ़िया सी कहानी सुना रहे हैं। कहानी में अब तक हम मुखिया के घर पहुंच चुके हैं, जहां पर भालू ने हमला कर दिया है। खिड़की के पीछे भालू खड़ा है और अब होने वाला है मौत का तांडव। जी हाँ, लेकिन वहां पर जो सबसे बुरा अब होने वाला था, वो होने वाला था सायो नाम की एक महिला के साथ, जो ऑलमोस्ट 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी डिलीवरी 4 से 5 दिन में होने वाली थी, बट भालुओं को ये बात समझ में कहाँ आती है। वो भाग नहीं पा रही थी, उसने अपने 8 साल के बच्चे को पकड़ा, उसने बगल में एक और बच्ची को पकड़ा 6 साल की, वो दोनों को लेकर भाग रही थी कि कैसे भी बस यहाँ से निकल जाए। बट भालू ने सबसे पहले उसे ही पकड़ा, ज़मीन पर गिरा दिया और वो भालू से अब रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ कुछ भी करो, मुझे मारो मत, मुझे अगर मारना है तो मेरे गले से मारो, मेरा ये जो बच्चा है जो अभी दुनिया में आने वाला है, इसको प्लीज़ मत कुछ करना, मेरे पेट को कुछ मत करना, प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करना। ये लिटरली बार हर कोई सुन रहा है कि वो भालू से रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन भालू, उसे इंसानी भाषा कहाँ समझ में आती है, वो क्यों जानेगा वो तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। और उसने सबसे पहला वार उसके पेट पर ही किया था। मौके पर सायो की मौत हो गई और उसका अनबॉर्न चाइल्ड, जो अभी सिर्फ उसके पेट के फटने की वजह से बाहर आ चुका था, जिसकी सांसें अभी चल रही थी, भालू ने उसकी भी जान ले ली। इतना देखते ही एक आदमी था जो उसी के खानदान का था और वो वहां से बस भाग रहा था कि यार हटाओ सब दुनियादारी, पहले मैं जिंदा रहूंगा, मैं जिंदा रहूंगा तो खानदान दोबारा बना लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात होती है, भागो यहां से। भालू ने उसे देखा कि ये भाग रहा है, अच्छे बेटा तुम भाग रहे हो, रुको तुमको भी सबसे पहले लेते हैं, और ये कहकर सबसे पहले पंजा उसी के हाथ पर गया। ऑफ कोर्स उसकी भी ऑन द स्पॉट जान चली गई। 8 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, बड़े छोटे, महिला, प्रेग्नेंट, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। उसने ऑलमोस्ट सबकी जान ले ली। बस 3 से 4 लोग जो थे वो 7 से 8 किलोमीटर भाग कर जैसे तैसे दूसरे गाँव पहुंचे थे। और ये जिसके खानदान से ये औरत मारी गई थी, वो खुद कह रहा था कि इस भालू का शिकार करके लोगों को बचाएगा। अब नहर के लोग समझ चुके थे, जो नहर के उस पार रह रहे थे, कि अगर भालू को नहीं पकड़ा गया तो भालू हम पर हमला करेगा, क्योंकि वो इस गांव वापस जाएगा, उसको इंसानी खून का स्वाद लग चुका है, वो वापस से खाने के लिए जाएगा, खाना उसको गांव में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो नहर पार करेगा और नहर पार करके वो सीधा यहां आएगा, हम पर हमला करेगा और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए उन लोगों ने बहुत सारा मांस उस नहर के ऊपर रखा कि भालू आएगा, हम शिकार करेंगे। लेकिन भालू बड़े चालाक होते हैं और उसको समझ में आ गया कि ये ट्रैप है, फ्री में इतनी चीजें मुझे कोई नहीं देगा, और वो नहीं आया। वहां पर मौजूद था एक शिकारी, वो शिकारी जिसके लिए आज भी जापान के सभी लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसको सल्यूट करते हैं, वो शिकारी जिसने अब अपनी राइफल उठाई उस भालू के नजर आने के बाद और सबसे पहला गोली उसी ने चलाया, वो डायरेक्ट जाकर उस भालू को लगी। लेकिन ऑफ कोर्स रात थी तो वो उसने भी सोचा कि सुबह जाके देखेंगे। अब इस वक्त क्योंकि सर्दियां नहीं थी, गर्मियों का टाइम था, खून की जो लाइन बन रही थी उसको फॉलो करते करते करते करते ये लोग सुबह पहुंचे और देखा कि वो बड़ा सा भालू, जिसको इमनटास भालू कहते हैं, और वो बहुत बड़ा होता है। नॉर्मल भालू आपने देखा होगा, वो पहले ही खतरनाक लगता है, अगर नॉर्मल भालू को 3 गुना और बड़ा कर दिया जाए तब जाकर वो एक सिंगल भालू बनता है। उसको जब देखा कि वो बैठ के अपने घाव को चाट ही रहा है, इतने पर उसे दोबारा गोली चलाई और इस वक्त वो गोली उसके सीने पर जाकर लगी। जैसे ही दूसरी गोली लगी वो बहुत गुस्से में खड़ा हो गया, दोनों हाथों को ऊपर करके कि बस अटैक करने ही वाला था, बट उस शिकारी ने दोबारा से एक गोली चलाई और इस वक्त वो उसके सीधे दिल में लगी। और जैसे ही ये गोली उसके दिल में जाके लगी, वो ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। उसने कम से कम 30 से 40 लोगों की जान ली थी, और 30 से 40 लोगों की जान लेने के बाद कहीं जाकर वो भालू मारा गया था। इतने सारे लोगों की जान लेने के बाद एक फाइनली एक शिकारी ने आकर अपना हुनर दिखाया, बट वो लोग जो इस जगह पर अपनी जिंदगी बचाने के लिए ले आए थे, जो सोच रहे थे कि हम यहाँ पर अपनी जनरेशन लगाएंगे, बचाएंगे, यहाँ पर हम रहेंगे, खुशियों के साथ रहेंगे, उनकी खुशियाँ तहस नहस हो चुकी थी। लोग मारे जा रहे थे, बच्चों की जान गई थी,
और वो लोग जो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ सोच रहे थे कि सरकार से पीछा छूटा ना, सरकार साइड गई, अब हम यहाँ पर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, वो शायद अपने इस फैसले पर अब रो रहे थे कि यार मैं यहाँ आया ही क्यों था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। यूँ तो कहानी बहुत लंबी जा सकती है, बट समय को मद्देनज़र रखते हुए आज की हमारी कहानी बस इतनी ही। और हमारे साथ चैट बॉक्स में धर्मेश त्रिपाठी जी, सोनिया तिवारी जी, कैलाश नाथ फ्रॉम मोतिहार बिहार से जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई है। हाँ, मानती हूँ मैंने बहुत छोटी कहानी सुनाई है, लेकिन कहानी में दर्द बहुत ज़्यादा था और इसीलिए कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हुए इस कहानी को छोटा रखा गया है। अगर आपने इंजॉय किया तो अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कल सुबह गुड मॉर्निंग गुंडा में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त और मेजबान आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने टीबी यानी तपेदिक की जांच और टेस्टिंग के बारे में विस्तार से बात की थी। पिछले एपिसोड में टीकन भाभी ने हमें टीबी की पहचान और जांच के बारे में बताया था, और आज की उसी श्रृंखला की इस अगली कड़ी में हम बात करेंगे टीबी के इलाज की, यानी सामान्य टीबी के इलाज की, दवा और उसके प्रतिरोध यानी एमडीआर टीबी के इलाज की, और बच्चों में टीबी के इलाज की, और इसके अलावा उन सरकारी योजनाओं की जो मरीजों की मदद के लिए बनाई गई है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाने वाले हमारे सेहतिया भैया। सेहतिया भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद आरजे जी, और रेडियो सुन रहे सभी साथियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरह से लोगों ने सवाल पूछा था, उससे पता चलता है कि अब लोग टीबी को लेकर खुलकर बात करना चाहते हैं। यही बदलाव सबसे ज़रूरी है, क्योंकि साथियों, टीबी की लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं की जाती है, ये लड़ाई घरों में, परिवारों में, गांव में और समाज के भीतर जीती जाती है। जितनी जल्दी लोग बीमारी को समझेंगे, उतनी जल्दी लोग जांच कराएंगे, और जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने भैया। लेकिन भैया, आज की शुरुआत में एक ऐसे सवाल से करना चाहती हूँ जो शायद हजारों लोगों के मन में होता है। अगर किसी व्यक्ति की जांच में टीबी निकल आती है तो सबसे पहले उसके मन में क्या चलता है? कई लोग घबरा जाते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि अब जिंदगी ही खत्म हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि टीबी का मतलब मौत है। क्या वाकई ऐसा सब होता है?
1: बिल्कुल नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आज के पूरे कार्यक्रम का सबसे पहला संदेश यही हो कि टीबी का इलाज संभव है, टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। आज भारत में लाखों लोग टीबी से पूरी तरह ठीक होकर सम्मान जीवन जी रहे हैं। समस्या बीमारी नहीं है, समस्या बीमारी को छिपाना है, समस्या जांच में देरी करना, समस्या दवा बीच में छोड़ देना, और अगर मरीज समय पर इलाज शुरू करे और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा कोर्स करे, तो वो अधिकांश मामलों में टीबी ठीक हो जाती है।
0: लेकिन भैया, कई बार लोग इलाज शुरू तो कर देते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि एक घटना में, जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत ही खास बन सकती है, क्यों भैया?
1: हाँ आरजे जी, मैं भी ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। कुछ साल पहले पास के एक कस्बे में राम बाबू नाम के व्यक्ति रहते थे। उम्र लगभग 50 साल, रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। मेहनती आदमी थे, लेकिन उन्हें शराब की लत थी। सुबह काम और शाम शराब। धीरे धीरे उन्हें खांसी रहने लगी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर वजन कम होने लगा, शाम को बुखार आने लगा, रात में पसीना आता है। लोग कहते हैं जांच करा लो, लेकिन वो हंसकर टाल देते हैं। कहते हैं अरे कुछ नहीं, 2 दिन आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। अब करीब 2 महीने के बाद हालत बिगड़ गई। जब अस्पताल पहुंचे तो जांच में टीबी निकली। डॉक्टर ने दवाइयां शुरू कराई। कुछ ही हफ्तों में उन्हें राहत महसूस होने लगी, खांसी कम हुई, बुखार कम हुआ, ताकत लौटने लगी। लेकिन यही उन्हें सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, दवा लेना बंद कर दिया। फिर कभी लेते कभी नहीं लेते, शराब भी नहीं छोड़ी, फॉलो अप जांच के लिए भी नहीं गए।
0: यानी बीमारी अंदर ही अंदर बनी रह गई।
1: बिल्कुल, और कुछ महीने के बाद बीमारी पहले से ज़्यादा गंभीर रूप में लौट आई। दोबारा जांच हुई, इस बार पता चला कि उन्हें दवा प्रतिरोधी टीबी यानी एमडीआर टीबी हो गई है। अब उन्हें इलाज ज़्यादा कठिन था, दवाइयाँ बदलनी पड़ी, अस्पताल के चक्कर बढ़ गए, कमाई रुक गई, परिवार परेशान हो गया, और दुर्भाग्य से, क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी और इलाज को गंभीरता से नहीं लिया, उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया।
0: ये तो बहुत ही दुखद कहानी है भैया, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि टीवी से मौत केवल बीमारी की वजह से नहीं होती, कई बार इलाज अधूरा छोड़ने की वजह से भी हो जाती है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए आज मैं हर श्रोता से कहना चाहता हूँ कि दवा शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दवा पूरी करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीबी का इलाज कोई दर्द की गोली नहीं है कि 2 दिन खाई और छोड़ दी, यह एक पूरा उपचार है। जितनी अवधि डॉक्टर ने बताई है उतनी अवधि तक हमें दवा लेना ही होगी, तभी बीमारी जड़ से ख़त्म होगी।
0: तो भैया अब जरा विस्तार से समझाइए, जब किसी व्यक्ति में टीवी की पुष्टि हो जाती है तो इलाज कैसे शुरू होता है? क्या मरीज को एक जैसी दवा मिलती है? क्या इलाज महंगा होता है और सरकार इसमें क्या मदद करती है?
1: बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले श्रोताओं को ये जान लेना चाहिए कि भारत सरकार की राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत टीबी की जांच और इलाज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से मरीजों को न सिर्फ दवाइयाँ दी जाती है बल्कि इलाज के दौरान लगातार निगरानी और सहायता भी दी जाती है। इलाज का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को सामान्य टीबी या दवा प्रतिरोधी टीबी, और आगे की चर्चा में हम इन्हीं दोनों प्रकार को विस्तार से समझेंगे।
0: खांसी रहे 2 हफ्ते से पार,
1: जांच कराना समझदार,
0: टीबी हारेगी हम जीतेंगे,
1: इलाज पूरा करके ही रुकेंगे।
0: स्वागत है साथियों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि टीबी का इलाज संभव है, लेकिन इलाज को बीच में छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है हमने रामबाबू की कहानी में भी सुनी, जिन्होंने लापरवाही की और बीमारी को गंभीर बना लिया। अब सवाल ये है कि जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो उसका इलाज आखिर कैसे होता है? सेहतिया भैया, सबसे पहले हमें सामान्य टीबी के इलाज के बारे में बताइए।
1: बिल्कुल आरजे जी, सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य टीबी या ड्रग ससेप्टेबल टीबी यानी दवा के प्रति संवेदनशील टीबी है तो उसका इलाज पूरी तरह संभव है और सरकार ये इलाज मुफ्त इलाज उपलब्ध कराती है। जांच में टीबी की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर मरीज के वजन और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार दवाइयां शुरू करते हैं। ये दवाइयां एक ही नहीं बल्कि कई दवाओं का मिश्रण होती है जिन्हें हम फिक्स डोज या कम्बिनेशन या निश्चित खुराक संयोजन कहा जाता है।
0: मतलब एक गोली में कई दवाओं का असर।
1: बिल्कुल, इससे मरीज के लिए दवा लेना आसान हो जाता है और इलाज अधिक प्रभावी बनता है। लेकिन ये एक बात समझना बहुत जरूरी है, कई मरीज दवा शुरू करने के कुछ ही हफ्तों के बाद बेहतर महसूस करने लगते हैं, खांसी कम हो जाती है और बुखार उतर जाता है, वजन बढ़ने लगता है और ताकत लौटने लगती है। यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है कि कई लोग सोचते हैं कि अब बीमारी खत्म हो गई है इसलिए दवा बंद कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि लक्षण कम होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर से सारे कीटाणु खत्म हो गए हैं। अगर दवा बीच में छोड़ दी गई तो कुछ कीटाणु बच सकते हैं, यही बचे हुए कीटाणु बाद में फिर सक्रिय होकर बीमारी को वापस ला सकते हैं।
0: यानी मरीज को अच्छा महसूस हो रहा है तब भी हमें मतलब दवाई जारी रखनी है।
1: बिल्कुल, टीबी का इलाज डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी अवधि तक लेना जरूरी है, कोई भी दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करना चाहिए। और साथियों, सिर्फ दवा लेना ही काफ़ी नहीं है, मरीज को समय समय पर फॉलो अप जांच के लिए भी जाना चाहिए। कई बार डॉक्टर बलगम की जांच या दूसरी जांचें करवाते हैं ताकि ये पता चल सके कि इलाज सही दिशा में जा रहा है या नहीं।
0: मतलब इलाज सिर्फ गोली खाने का नाम नहीं है बल्कि नियमित निगरानी भी उसका एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: भैया, पिछले कार्यक्रम में हमने बच्चों में टीबी की बात की थी, क्या बच्चों का इलाज अलग से होता है?
1: हाँ, बच्चों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बच्चों में भी टीबी के लक्षण कई बार बड़े लोगों जैसे स्पष्ट नहीं होते हैं। कभी सिर्फ वजन नहीं बढ़ता है तो कभी भूख कम लगती है, कभी लंबे समय तक बुखार रहता है। इसलिए यदि किसी बच्चे को लंबे समय से खांसी, बुखार, वजन घटना या घर में किसी टीबी मरीज के संपर्क का इतिहास हो तो उसकी जाँच जरूरी करानी चाहिए। बच्चों को इलाज में भी मुफ्त उपलब्ध है, लेकिन दवाओं की मात्रा या उनके वजन के अनुसार तय की जाती है। और मैं माता पिता से कहना चाहूँगा कि बच्चे थोड़ा ठीक दिखने लगे तो भी दवा बंद ना करें, पूरा कोर्स पूरा कराना उतना ही जरूरी जितना बड़ों में है।
0: तो साथियों, एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है कि इलाज को पूरा करना, लेकिन कई बार मरीज आर्थिक तंगी, कमजोरी या पोषण की कमी के कारण इलाज जारी नहीं रख पाते हैं। क्या सरकार इस दिशा में भी कोई मदद कर रही है सहतिया भैया?
1: जी हाँ, सरकार ये समझती है कि टीबी केवल दवा की बीमारी नहीं है, ये पोषण, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सहयोग से भी जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार ने निश्चय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत टीबी मरीजों को पोषण संबंधित सहायता के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है ताकि वो इलाज के दौरान बेहतर भोजन ले सकें, क्योंकि टीबी और कुपोषण का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो बीमारी से लड़ना और स्वस्थ होना दोनों मुश्किल हो जाएंगे।
0: और निक्षय मित्र क्या होता है भैया? इसका नाम भी लोग काफी सुन रखे हैं।
1: देखिए, निश्चय मित्र वास्तव में एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें समाज के लोग, संस्थाएं या स्वयंसेवी संगठन, स्कूल, कॉलेज, उद्योग या कोई भी इच्छुक व्यक्ति टीबी मरीज की सहायता कर सकता है। कोई पोषण किट दे सकता है, कोई राशन उपलब्ध करा सकता है, कोई भावनात्मक सहयोग दे सकता है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि टीबी मरीज अकेला नहीं है, पूरा समाज उसके साथ खड़ा है।
0: और निक्षय साथी ये क्या है?
1: निश्चय साथी आमतौर पर परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य या देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। वो मरीज को समय पर दवा लेने की याद दिलाता है, डॉक्टर के पास जाने में मदद करता है, किसी परेशानी या दुष्प्रभाव पर स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क कराता है और इलाज पूरा करवाने में सहयोग कराता है। कई बार एक जिम्मेदार निश्चय साथी मरीज को दवा छोड़ने से बचा सकता है।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आज के सबसे गंभीर विषय पर आना चाहती हूँ, MRD टीबी। लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बम है जो दग जाएगा। आखिर ये होता क्या है?
1: MDR टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, सरल शब्द में कहें तो ऐसी टीबी जिसमें सामान्य दवाएं प्रभावी नहीं रह जाती हैं। ये अक्सर तब होता है जब मरीज दवाएं बीच में छोड़ देता है या नियमित रूप से दवा नहीं लेता है या इलाज सही तरीके से पूरा नहीं करता है। राम बाबू की कहानी इसी का उदाहरण थी। जब टीबी के कीटाणु बार बार अधूरा इलाज झेलते थे तो वो कुछ दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते थे, फिर यह सामान्य इलाज काम नहीं करता था।
0: मतलब सुनकर ही डर लगता है। क्या MDR टीबी का इलाज संभव है भैया?
1: बिल्कुल संभव है, और यही संदेश है लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि पहले MDR टीबी का इलाज लंबा और कठिन माना जाता था, लेकिन अब भारत ने काफ़ी प्रगति की है। आज कई पात्र मरीजों के लिए BP LMP नामक आधुनिक उपचार पद्धति उपलब्ध है। इसमें बेडा क्यूलिन या प्रिटोमेनिड या लाइनोजोलिड, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और कई मामलों में अपेक्षाकृत छोटा उपचार विकल्प साबित हो रहा है, लेकिन ये निर्णय डॉक्टर जांच रिपोर्ट और दवा प्रतिरोध की स्थिति देकर लेते हैं।
0: मतलब मरीज खुद फैसला नहीं करेगा कि कौन सी दवा लेनी है?
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि MDR टीबी का इलाज जो है विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। इसके लिए विशेष जांचें की जाती है, जैसे मॉलिक्यूलर टेस्ट और दवा प्रतिरोध जांच। इन रिपोर्ट के आधार पर सही दवाओं का चयन किया जाता है।
0: भैया, क्या कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी टीबी के इलाज को प्रभावित करती हैं?
1: बहुत ज़्यादा, उदाहरण के लिए मधुमेह यानी डायबिटीज, या यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज और टीबी दोनों हैं तो दोनों का इलाज साथ करना जरूरी है। अनियंत्रित शुगर टीबी को भी गंभीर बना सकती है। इसी तरह HIV से प्रभावित लोगों को में टीबी का खतरा अधिक होता है, इसलिए दोनों सेवाओं को जोड़कर देखा जाता है कि तंबाकू और धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करते हैं और स्वस्थ होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, और शराब
0: शराब की तो बात ही मत करिए, राम बाबू की कहानियों में ये सामने आएगा।
1: बिल्कुल, ये शराब न केवल शरीर को कमजोर करती है बल्कि दवा नियमित लेने की आदत को भी प्रभावित करती है। कई मरीज नशे की वजह से दवा भूल जाते हैं या इलाज छोड़ देते हैं, इसलिए टीबी के इलाज के दौरान शराब और तंबाकू से दूरी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: और अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी हो जाए तो बाकी परिवार को क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए, दूसरी बात है कि परिवार के सभी सदस्य की स्कैनिंग करानी चाहिए, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों की, क्योंकि कई बार बीमारी की शुरुआती चरण में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। सरकार निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए टीबी प्रिकेटिव ट्रीटमेंट यानी रोकथाम संबंधित उपचार भी उपलब्ध कराती है ताकि बीमारी सक्रिय होने से पहले ही रोकी जा सके।
0: और घर में संक्रमण रोकने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
1: बहुत आसान बातें हैं, कमरे में हवा आने जाने दें, खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें, खांसते या छींकते समय रुमाल, कपड़ा या कोहनी का उपयोग करें, खुले में थूके से बचें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इन छोटे छोटे कदमों से परिवार की बाकी सदस्यों की सुरक्षा में मदद मिलती है।
0: सेहतिया भैया, आज की पूरी चर्चा को अगर कुछ महत्वपूर्ण संदेशों में समेटना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगा। पहली है कि टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। दूसरी है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जांच और इलाज मुक्त है, दवा कभी बीच में ना छोड़ें। चौथी है फॉलो अप जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। और पांचवी, पोषण, आराम और परिवार का सहयोग इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और छठवीं है MDR टीबी भी उपचार योग्य है, इसलिए निराश ना हो। सातवीं है कि परिवार के सदस्यों की स्कैनिंग करवाएं। और आठवीं है कि टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें।
0: बहुत ही सुंदर संदेश। साथियों याद रखिए, टीबी कोई अभिशाप नहीं, एक बीमारी है और बीमारी का इलाज होता है। समय पर जांच, नियमित दवा, अच्छा पोषण और परिवार का सहयोग, यही स्वस्थ होने का रास्ता है। आइए कार्यक्रम समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे हम अपने सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
3: तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है, तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं, तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। लेकिन अंशिका विदिन 10 मिनट के अंदर आपके समक्ष आ जाएगी, लेकिन तब तक के लिए मैं आ गई हूँ, यानी आपकी आज समता आ गई है इन प्यारे से मौसम को और अच्छा बनाने के लिए। यस, एग्जैक्टली आ गई हूँ। एंड साथ ही साथ में बता दूं कि आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली। और अभी अंशिका आएंगी तो जैसे औपचारिकता है हमारी साथ में बोलने की, हम आपको वो भी सुनाएंगे। एक विशेष कार्य हेतु बोलने की, हम आपको वो भी सुनाएंगे। एक विशेष कार्य हेतु वो उन्हें 10 मिनट लेट लग रहा है, लेकिन कोई नहीं। कहते हैं ना कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उन्हें किसी और का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेहमान आ रहे हैं तो तब तक हम थोड़ा बहुत काम अपना शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज दिन बड़ा अच्छा है भाई, आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन हम लेकर के आते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया सी नॉलेजेबल बातें, और साथ ही साथ में उनके लिए कुछ केयर की बातें, साथ ही साथ में उनके आजकल जैसा आप सभी को पता है कि स्कूल्स खुल गए हैं। परसों मार्केट गई थी, मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को लेकर के, मतलब काफ़ी रश था मार्केट में भी। कोई क्या कहते हैं बुक्स ले रहा है, कोई बैग ले रहा है, और कोई अपने बच्चों के लिए ड्रेसअप कर रहा है, मतलब ड्रेस ले रहा है, स्कूल की यूनिफॉर्म ले रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो मंथ

0: होता है ना जुलाई से लेकर के अगस्त तक मिड में, ये सब ना पेरेंट्स के लिए भी खर्चा होता है और बच्चों के लिए भी लगता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अच्छे से अच्छा टिफिन बॉक्स चाहिए, बॉटल चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, मतलब हर एक चीज़ ना नई नई होती है। बट सभी के पीछे का जो एक एक मुद्दा होता है, एक सिर्फ एक लाइन होती है, वो होती है एक प्यार, केयर। और हम जो अपने बच्चों के लिए करते हैं और बच्चे जो हम पेरेंट्स पर विश्वास करते हैं, कहते हैं ना कि घर में बच्चों का होना भी एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना आशीर्वाद और वरदान होता है। तो आज बच्चों का सेक्शन है, ट्यूसडे के दिन हम लेकर के आते हैं एंड इस प्यारे से मौसम में जो कि बारिश, तो अभी माय गॉड कितनी अच्छी वाली बारिश पड़ी है, मतलब मज़ा ही आ गया बारिश को देख करके। तो और बहुत ही फुल, जैसे कहते हैं ना फुल वॉल्यूम में गाना सुनो तो अच्छा लगता है, वैसे ही फुल वॉल्यूम में अभी बारिश हुई है। बट हम लोग तो अभी कॉलेज में ही हैं और आपके लिए डिज़ाइन कर रहे थे कि प्रोग्राम में हम क्या लेकर के आने वाले हैं, तो लेकर के आने वाले हैं बहुत कुछ। लेकिन उसके पहले आइए हम शुरू करते हैं प्रोग्राम की औपचारिकता जो होती है, उस सबसे पहले बच्चों के लिए प्यारी सी पोयम। एंड उसके पहले आप सभी को दिल से आर्य समता की तरफ से शुभ दोपहरिया। तो कविता की ओर चलते हैं क्योंकि अभी अंशिका आप यहीं नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आपको तब तक कविता हम सुनाएं। बच्चे हैं भगवान का अनुपम, बच्चे हैं भगवान का अनुपम सुंदर सा वरदान, इनसे ही महकता रहता, इनसे ही महकता रहता घर आंगन और जहान। इनकी हंसी में छिपी हुई है, इनकी हंसी में छिपी हुई है खुशियों की मधुर बहार, इनकी आंखों में बसता है सपनों का सुंदर संसार। मन के सच्चे निर्मल कोमल छल कपट से दूर, मन के सच्चे निर्मल कोमल छल कपट से दूर, प्रेम दया और अपनापन ही इनका सबसे बड़ा सुरूर। छोटी छोटी बातों में ये ढूंढ लें नई उमंग, छोटी छोटी बातों में ये ढूंढ लें नई उमंग, इनके संग खिल उठते हैं जीवन के सारे रंग। गिरकर फिर से उठना सीखें, गिरकर फिर से उठना सीखें, आगे बढ़ते जाएं, मेहनत साहस और लगन से अपनी मंजिल पाएं, मेहनत लगन और साहस से अपनी मंजिल पाएं। माता पिता का मान बढ़ाएं, गुरु का करें सम्मान, माता पिता का मान बढ़ाएं, गुरु का करें सम्मान, संस्कारों की राह चलें बने सभी की पहचान, संस्कारों की राह चलें बने सभी की पहचान। ज्ञान का दीप जलाए ऐसे मिट जाए हर अनजान, ज्ञान का दीप जलाए ऐसे मिट जाए हर अनजान और अज्ञान। सत्य अहिंसा और सद्भाव, सत्य अहिंसा और सद्भाव का रखे सदा सम्मान, देश का उज्जवल भविष्य है भारत की मुस्कान, देश का उज्जवल भविष्य है भारत की मुस्कान, इससे ही रोशन होगा हमारा प्यारा हिंदुस्तान। आओ मिलकर प्रण लें ये, आओ मिलकर प्रण लें ये, बच्चों का मान बढ़ाएं, अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार हर बच्चे तक पहुंचाएं, हर नन्हा सपना सच हो जाए, हर चेहरा मुस्कुराए, बच्चों से ही सुंदर दुनिया बच्चों से ही जगमगाए, बच्चों से ही सुंदर दुनिया बच्चों से ही जगमगाए। तो भाई ये थी प्यारी सी पोयम आप सभी के लिए एंड आई होप सो कि आप लिसनर्स को अच्छी लगी होगी। एंड अभी तक चैट बॉक्स में हमारे सभी लिसनर्स नहीं आए हैं, जल्दी से आ जाएं एंड जो हमें फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उनका भी सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। एंड आइए चलते हैं आप सीधे सीधे जो कि हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ होता है उसके लिए। लिसनर्स, आज मैं आपको रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो कि कहीं ना कहीं हद तक हम सभी लोग उसको सफर कर रहे हैं और ऐसा होता भी आ रहा है, मतलब कई घरों में मैंने देखा है। कहा जाता है कि हम हमारे लिए बच्चे जो होते हैं वो एक बुढ़ापे का सहारा होते हैं, हम उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उनकी सारी चीज़ों को हम अपने दिल में रखते हैं, उनकी हम अपने अरमान को गला करके उन्हें बड़ा करते हैं, सब चीजें। लेकिन बड़े होकर के क्या वो भी उतना अपने आप को गला के, अपने आप को सैक्रिफाइस करके उन पेरेंट्स को मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो उसमें हमारे ही संस्कार की कमी होती है, और अगर मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उन्हें वो संस्कार बचपन से ही दिए गए जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। छोटी सी बात, आप लोगों को लग रहा होगा तो क्या बचपन में हम लोग संस्कार बच्चों को खराब देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए घर में एक बेटा और एक बेटी है, और उस पेरेंट्स के उनके पिता की एक बहन भी है जो शादी करके घर पे आती है, और उनकी मम्मी ने, उनके पापा ने उनकी अपनी बहन के साथ उनका बिहेवियर अच्छा वाला नहीं है, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? उनके दादा दादी के साथ जो बिहेवियर है वो बच्चा संस्कार क्या लेगा? वो आपके सामने आपकी इज्जत तो करेगा, आपकी बातें मानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जहन में है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे दादा दादी के साथ, मेरी बुआ के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं है। वक्त बीतता है, आगे बढ़ता है, उसकी शादी होती है, सेम वो भी ये कहने के लिए तैयार हो सकता है अपनी बहन के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ। इसका अपोजिट अगर हम मान के चलें कि एक वही परिवार है जहां पर उनकी बहन की, उनके मम्मी पापा की, यानी कि दादा दादी की, बुआ की इज्जत की जा रही है, बहुत उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, माना जा रहा है, तो बच्चों पर भी वही संस्कार पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहला नींव जो होती है ना, वो संस्कार हमारे माँ बाप खुद की होती है। हम अगर खुद अपने घर के सभी मेंबर्स के साथ में अच्छे से बिहेव करेंगे, उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे, बच्चों को सिखाने के लिए कोई और संस्कार की किताब नहीं होती है। यही वो संस्कार हैं जो वो बचपन से सीखते हैं, और ता उम्र उन्हें ये लेना पड़ता है और वो ले लेते हैं। तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही है कि हमें जो करना है वो हमें ये सोच के करना है कि हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है, हम उन्हें ये किताबी ज्ञान नहीं, हम उन्हें संस्कार का ज्ञान दे रहे हैं। तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ यही है। आइए चलते हैं, अब हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे फिर से अपने नए टॉपिक की ओर। तब तक के लिए सुनते रहें 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है, या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा वाला आज का टॉपिक है। देखिए भाई, स्कूल्स खुल चुके हैं और जैसा कि मैंने अभी बताया था, हम ब्रेक में जाने से पहले मैंने बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम स्कूल जाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं बट बच्चे जो स्कूल जाते समय हो नहीं पाता है ये कि वो क्या सोच रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, वहाँ जाने के बाद उन्हें क्या फील होता है। तो जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल की दहलीज पर कदम रखता है, ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी ना किसी के घर में कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता ही है, तो वो केवल मतलब मेरे हिसाब से कि वो बुक्स ले करके जाते हैं और वो केवल उससे अपने आप को इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जबकि जीवन को जीने की एक वो कला सिखाता है अपने आप को, स्कूल एक वो जगह होती है जहाँ केवल अक्षरों का ज्ञान तो मिलता ही है लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी मिलती हैं और उनका धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि इंक्रीमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो कोई भी बच्चा जब पहली बार आता है तो भाई घर तो लगता ही है ना कि डे वन है कि हम स्कूल और कॉलेज की बात है, अगर कॉलेज आ रहे हैं तो क्या फील होगा, टीचर्स कैसी होंगी, स्टूडेंट्स कैसे होंगे, वहाँ के मेरे कैसे फ्रेंड्स बनेंगे। तो एक अच्छा स्कूल बच्चों को केवल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना नहीं सिखाता है बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाना सिखाता है। और यहाँ पर वो सारे फ्रेंड्स मिलते हैं और उनकी जो फ्रेंड्स का एक से कहते हैं ना इम्पोर्टेंस क्या होती है वो समझाते हैं, साथ ही साथ एक सहयोग करना सिखाते हैं, हार और जीत दोनों को स्वीकार करना सिखाते हैं, अपने सपनों को पहचानना शुरू करते हैं। और साथ ही साथ में जो टीचर्स होते हैं वो केवल आपको एक लेसन नहीं पढ़ाते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो आपको एक लेसन नहीं पढ़ाते बल्कि वो आपके पूरे पूरे पर्सनैलिटी को आपको डेवलप करते हैं। वो हर एक बच्चे के भीतर छिपी हुई एक क्वालिटी को बाहर निकालते हैं, उसे पहचान कर बाहर निकालते हैं। और सबसे पहले तो वो आपको पहचाना सिखाते हैं कि भाई आपके अंदर ये डांस की क्वालिटी है, आपके अंदर ये सिंगिंग की क्वालिटी है, आपके अंदर ये ड्राइंग की क्वालिटी है, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा खेल सकते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ों को बढ़ाने के लिए एक टीचर ही होता है जो उसे प्रेरणा देता है। एंड पेरेंट्स और टीचर्स का साथ मिल जाए तो बच्चे का जो एक फ्यूचर है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। और आज के समय में तो शिक्षा जो हम अपने बच्चों को देते हैं उसका मेन मोटिव केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है कि हमें ये डिग्री मिल गई चलो ठीक है, बल्कि ऐसे एक नागरिक तैयार करना है जो संवेदनशील, ईमानदार, आत्मनिर्भर और समाज के प्रति एक जिम्मेदार हो। समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसीलिए तो स्कूल का जो एटमॉस्फेयर होता है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा बिना डरे वहां बोल सके, बिना डरे वहां सीख सके और बिना डरे उसके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, वो उसको अपनी टीचर से बोल सके, पूछ सके और अपने क्वालिटीज़ को, अपने अंदर जो भी उसके अंदर क्वालिटी हैं, जो भी अंदर उसके कहते हैं ना कि एक प्रतिभा है, उसको आप दिखा सकें एंड अपनी एक सेल्फ कॉन्फिडेंट को आगे बढ़ा सकें। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब हमें एक नए माहौल को हम जब जाते हैं, हम मिलते हैं और साथ ही साथ में ये होता है भाई कि जब हम नए माहौल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो डर तो पेरेंट्स को भी लगता है, चाहे वो स्कूल वाला माहौल हो और चाहे वो कॉलेज वाला हो। देखिए आजकल क्या हो गया है कि कॉलेज में जब हम बच्चों को भेजते हैं तो कई बार होता है कि हम खुद सोचते हैं पेरेंट्स की वहाँ जाने कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा, मेरे बच्चे वहाँ एडजस्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो जब हम सुबह अपने अपने बच्चों को स्कूल घर मतलब भेजते हैं, घर से जब निकलते हैं, तो हमारे मन में कई प्रकार की मतलब फीलिंग्स होती है कि उन बच्चों के अंदर की फीलिंग्स बता रही हूँ कि क्या होती है, कि क्या मैं आज नया कुछ सीख पाऊंगा या सीख पाऊंगी, या अच्छा मैं कुछ कर पाऊंगा जिसको करने से हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का नाम रोशन हो। एक प्रश्न होता है दिल दिमाग में, और जिनको लगता है कि हम सिर्फ कॉलेज जा रहे हैं सिर्फ फन मस्ती के लिए जा रहे हैं, तो यार उनको तो कुछ नहीं है, फिर आ गए आराम से कैंटीन में बैठे, थोड़ी देर अपना मस्ती करी, मोबाइल चलाया, और उसके बाद अगर उन्होंने लेक्चर लेने का मन है तो लेक्चर ले लिया, अदरवाइज वो लोग घूम फिर के कॉलेज से अपने घर चले गए। और स्कूल या कॉलेज होता है वो केवल एक पढ़ने की जगह नहीं होती है, वहां पर आपको अच्छा एक अनुशासित रूप में रहना भी, जो कि आपकी पूरी जिंदगी में आपको एक सीख मिल जाती है। मैं छोटी सी एक कहानी आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी ये पहले टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं बताऊंगी जैसे अनुशासित वाली कहानी जो है वो बताऊंगी। और उसके बाद में सिर्फ ये नहीं है कि हम जब पूरा दिन घर में मतलब कॉलेज से स्कूल से घर लौटते समय हमारे दिल में बहुत सारे एक प्रश्न आ जाए कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने वहाँ पर क्या एब्जॉर्व किया, क्या हमने सोचा जो मुझे उसका परिणाम ये मिला, जो अगर मैंने इंटरेक्ट किया अपने पेरेंट्स को किस को लेकर के अपने टीचर्स के सामने, अपने बच्चों के सामने, और बहुत सारी पूरी क्लास भरी हो उसके सामने अगर हमने कुछ भी अगर सोचा है समझा है तो वो हम उन्हें बता पाए। अगर कॉलेज या स्कूल से लौटते समय आपने ये कर दिखाया, इट मीन्स आपका स्कूल और कॉलेज जाना 100% सफल गया। तो छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे याद आ गई अभी, वो ये कि अनुशासित वाली बात पे मुझे याद आ गया कि जब हम स्कूलिंग में थे, जब हम स्कूल जाते थे पढ़ते थे, तो वो तब से लेकर के आज तक का जो माहौल है वो ये है कि एक टाइम से उठना, एक टाइम से काम करना, एक टाइम से हर चीज़ को एक घड़ी की एक्यूरेट पर काम करना सोचने वाली बात है। हमें 8 बजे उठना है, हमें 7 बजे उठना है, हमें 6 बजे उठना है, वो आपके ऊपर है, हमें 6 बजे उठना है, लेकिन हमको 6 से 8 के बीच में हमको पूरा अपना काम कंप्लीट करना है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि हमको स्कूल या कॉलेज हमको अनुशासित करता है, हमको टाइम मैनेजमेंट भी साथ ही साथ सिखाता है। 10 बजे आपकी क्लास होनी है, कॉलेज जा रहे हैं 10 बजे क्लास होनी है, तो क्या हम 10:30 बजे आएंगे और हमें क्लास मिल जाएगी? नहीं ना। तो ये अगर हम अनुशासित रह रहे हैं हम तभी 10 बजे पहुंच पा रहे हैं। तो स्कूल जाने का मतलब, केवल कॉलेज जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें वहां पर किताबी ज्ञान मिले, हमें स्कूल और कॉलेज अनुशासित रहना सिखा रहा है, आत्मविश्वासी बनना सिखा रहा है, और साथ ही साथ में आपके अंदर एक पर्सनैलिटी जो है उसको डेवलप करना भी आपका कॉलेज आपका स्कूल सिखाता है। तो आइए यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे हम आपसे कुछ और अच्छी वाली बात करने के लिए, लेकिन तब तक के लिए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
8: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है
9: RJ अंशिका
8: जी भाई। और RJ अंशिका आ गई हैं। देखिए आ गई, मैंने कहा था ना कि 10 मिनट की देरी से ही सही, लेकिन वो आएंगी जरूर आज, तो आ गई हैं। और एक साथ जो हमारी औपचारिकता है भाई, अभी तक मैंने आपको विश भी नहीं किया है, तो एक साथ एक ही फ्रेम में आइए कह देते हैं
9: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और बिल्कुल हम आ गए हैं और आए हैं बिल्कुल नए टॉपिक के साथ में आपसे बातें करने के लिए। सबसे पहले तो देर के लिए माफी चाहती हूँ, थोड़ी सी मुझे देर हो गई थी।
8: देर ना हो जाए कहीं
9: नहीं, लेकिन देर आए और दुरुस्त आए, ये वाला
8: ये गाना थोड़ी नहीं है, गाना तो ऐसा है ना, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए कि ऐसा है, देर ना हो जाए तो दुरुस्त ना हो जाए, ये गाना थोड़ी नहीं है, गाना तो ये है ना। चलो कोई नहीं,
9: तो चलिए आपको टॉपिक बताते हैं कि क्या होता है ना, कि कई बार बच्चों की जो मेंटल कंडीशन होती है मैम, उसमें अचानक कुछ चेंजेस आते हैं। हम कैसे जानेंगे कि किसी बच्चे की मानसिक स्थिति खराब हो रही है?
8: ओके।
9: तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन हम हमेशा उन बातों को इग्नोर करते हैं। ये समझते हैं कि बच्चा जो है वो शरारती हो गया है या उसके बिहेवियर में मतलब वो काम नहीं करना चाहता है। जैसे हम कहते हैं ना, काम से मन मत चुराओ, तो हमें लगने लगता है कि बच्चा काम से मन चुरा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी मेंटल कंडीशन ही वो हो जाती है कि वो काम वो ठीक से नहीं कर पाता है। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ने में पहले बहुत अच्छा था, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, लेकिन सडनली वो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है। आप बार बार उसे बता रहे हैं, बार बार आप प्रॉपर एक एजुकेशन दे रहे हैं, आप ट्यूशन भी दे रहे हैं, आप स्कूल भी भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा काम नहीं करना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है या वो शरारती हो गया। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसकी मेंटल हेल्थ में कहीं ना कहीं चेंजिंग हुई है, कुछ खराब हुआ है, कोई हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो उसे बार बार परेशान कर रही है और वो उसको अपने गोल पे फोकस नहीं करने दे रही।
8: बिल्कुल,
9: वहाँ ध्यान देने की जरूरत होती है। ज्यादातर पेरेंट्स को लगता है नहीं, पहले बहुत ठीक थे, अब बिगड़ गए हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बिगड़ गए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो। बच्चे के बिहेवियर में अचानक चेंज आ जाने इससे ये भी होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे से, मान लीजिए बहुत खुश मिजाज होते हैं, हम कहते हैं ना अरे उनका बच्चा देखो दिन भर हंसता खेलता और मजे से रहता है, मान लीजिए वो बिल्कुल अपने बिहेवियर के अपोजिट कर।
8: अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी बात को रोकते हुए ये बताऊंगी कि आपको याद है कि आप बचपन में कौन सा बच्चा थी?
9: मैं
8: हंसता खेलता कि चिड़चिड़ापना?
9: नहीं, मैं चिड़चिड़ तो नहीं करती थी,
8: हंसता खेलता।
9: हंसता खेलता
8: तो सेम हम भी ऐसे ही थे,
9: मैं चिड़चिड़ नहीं करती थी। वो अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो अब हो गया है, पहले नहीं करती थी।
8: ओके।
9: पहले तो ठीक था। तो कहीं ना कहीं यही होता है कि की उस पे ध्यान देने की नीड होती है और बहुत केयरफुली हैंडल करने की नीड होती है। जैसे कई बार हम बच्चों को डांट देते हैं कि तुम्हारी तो आदत ही पड़ गई है ना, जैसे कुछ माँ बाप कहते हैं अरे तुम्हारी तो आदत पड़ गई है काम से जी चुराने की, तो वो डांटना नहीं है, वो बहुत केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेंटल हेल्थ उसकी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। क्यों होती है मेंटल हेल्थ हमारी? तब भी इफेक्ट होती है जब हम गलत लोगों की संगति में पड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान की संगति में हैं जो कुछ नेगेटिविटी कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, वैसे तो बच्चे क्राइम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है,
8: या क्राइम को ही हम क्यों लें यहाँ पर, जैसे गलत आदतें बहुत सारी होती हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सारा टाइम मोबाइल को का यूज करना, या फिर आजकल तो ना मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब ऐसे यहाँ पर कोई रिवील नहीं करना है, कोई स्कूल किसी बच्चे को रिवील नहीं करना है, बट मैंने देखा है कि आजकल ना स्कूल के बहाने बच्चे जाते हैं, खास करके बॉयज की आदत हो जाती है सिगरेट लेना, स्मोक करना और पान मसाला खाना। तो ये तो स्टार्टिंग तौर पे ना मुझे लगता है कि बहुत ही छोटी आदत है और बहुत ही अरे अरे ठीक है ना कोई नहीं, मतलब जैसे बड़े होंगे तो छूट जाएगी, जब उन्हें समझ आएगी। अगर उनके पेरेंट्स को भी जाके बोलो ना कि आपका बच्चा आज मुझे ये करते हुए मिला था, तो वो लोग उल्टा ये बोलते हैं कि अरे ठीक है ना जब उम्र बड़ी होगी तो उन्हें जब पता चलेगा कि ये गलत चीज़ है नहीं करना चाहिए तो वो छोड़ देंगे। लेकिन तब तक उन्हें पेरेंट्स को समझना चाहिए, उन बच्चों को समझना चाहिए कि तब तक वो उनकी आदत नहीं, वो उनकी लत बन जाती है।
9: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। और कहीं ना कहीं फिर वो लाइफ टाइम नहीं छूटती,
8: लाइफ टाइम फिर नहीं छूटती है फिर वो।
9: इसलिए जब भी कोई आपके बच्चे के बारे में कहे कि मैंने उन्हें यहाँ देखा या मैंने उसे ये करते हुए देखा, तो हम ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि या तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता ना, मुझे विश्वास है, अच्छी बात है आपको भरोसा है, लेकिन देखिए गलत भी इंसान ही होता है। हम क्यों कहते हैं कि गलतियां इंसान से होती हैं, भले वो बाद में उसे सुधार ले, लेकिन गलतियां होती हैं,
8: होती हैं।
9: तो अगर कोई कहता है नेगेटिविटी की तरफ तो आप मानिए कि
8: मतलब उस इंसान से लड़ने की बजाय मुझे लग रहा है जी का, या फिर बच्चे को डायरेक्टली आप उसको ट्रिगर भी ना करें, आप एक जैसे कहते हैं ना हिडन आप जाकर के मतलब देखें, चोरी चोरी छिप करके देखें कि क्या वो इंसान जो बोल के गया मुझे क्या वो ये सच्ची है बात की नहीं है, और फिर आपको सच्चाई का खुद ही पता चल जाएगा।
9: एक बात और होती है कि लगातार बच्चों का शिकायत करना, जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, या पेट के पास अगर वो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि मम्मी मुझे कई दिनों से पेन हो रहा है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज कोई भी हो, तो वहाँ पर आपको ये एक होना चाहिए कि चलो चेकअप कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें सावधानी की जरूरत है। कई बार हम उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब होनी होती है तो आपकी बॉडी सिम्टम्स देना शुरू कर देती है। जैसे घुटनों में सूजन अचानक हो जाना, मान लीजिए आपके पैर अच्छे थे, मतलब ठीक ठाक थे, आप आराम से चल रहे थे, आराम से कर रहे थे, आपको कोई चोट नहीं लगी, आप नाइट में सोए हो, सुबह अचानक आपके घुटनों में सूजन आ जाती है, या फिर अचानक आपको सर के किसी हिस्से में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, तो इट मींस कि वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। इसलिए तुरंत चेकअप कराएं, अगर मेंटल हेल्थ में कोई भी दिक्कत है तो आप उसकी मेडिसिन लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। देखिए जब हमारी हार्ट टूट जाता है मैम, या पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम बहुत नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे ये फिजिकल प्रॉब्लम है, आप मेरा इलाज कीजिए। लेकिन ठीक इसका अपोजिट तब हो जाता है जब हम मेंटल हेल्थ की किसी प्रॉब्लम से जूझते हैं, तब हम काउंसलर के पास जाने के लिए इजी नहीं होते हैं कि चलो काउंसलर को दिखाते हैं और अभी बच्चा ठीक हो जाएगा। तब हम क्या यूज करते हैं वर्ड कि मेरा बच्चा पागल थोड़ी ना है कि मैं उसको काउंसलर के पास ले जाऊं। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि मनोविज्ञान, हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मानव व्यवहार का विज्ञान है। वो आपके व्यवहार को देखकर ये बताते हैं कि इसमें ये कमी है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे को आप किसी काउंसलर ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं तो काउंसलर सबसे पहले क्या करता है कि बच्चे से बात करता है। जब वो उससे बात कर लेते हैं उसके बाद वो उसे एक ड्रॉइंग, एक ब्लैंक पेज देते हैं और कोई भी कलर दे देते हैं, कोई भी, रेड, ब्लू, ब्लैक, कोई भी, और वो उससे कहते हैं बेटा अब इससे आप कलर करो। वो बच्चे की कलर करने के तरीके से, उसके कलर चूज करने के तरीके से बता देते हैं कि बच्चे को कौन सी मेंटल प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि कोई बच्चा रेड कलर चूज करता है और वो उससे खूब तेज उस पर रफ कर रहा है पेज पे, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने कोई ना कुछ ऐसा देख लिया है जो कि कहीं ना कहीं क्राइम से जुड़ा हुआ है, या ऐसा कुछ उसने देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, वो अंदाजा लगाते हैं, या ब्लैक यूज कर लिया, ब्लैक कलर ले लिया है, तो ब्लैक कलर का मतलब ये है कि बच्चे ने कुछ हिंसक होते हुए देख लिया है। हिंसक इट मींस कि हो सकता है उसने किसी को मारते हुए देख लिया हो या कुछ भी ऐसा देख लिया हो। पॉजिटिव अगर है तो मान लीजिए कोई पॉजिटिविटी है और बच्चा नहीं बता पा रहा है उसने वाइट या।
8: लेकिन अंशिका मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि क्या ये ऐसे सिम्टम्स जो बता रही हूँ ये क्या मतलब एज वाइज है, टीनेजर्स हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, मतलब एज वाइज आपने नहीं बताया इसको।
9: जी मैम, ये मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ ये छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चे इन द सेंस कि 6 साल से लेकर के और 10 साल तक के बच्चों में ये तरीका होता है। और जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए वो आपको 6 साल के बच्चे से लेकर के 10 साल के बच्चे तक में दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बड़े बच्चों की तरफ जाएं, जैसे 10 साल से आप जाइए 20 साल 22 साल के बच्चों की तरफ, तो उनमें ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा और ब्रॉड होते हैं। जैसे कि अगर बड़े बच्चे की तरफ हम जाएंगे 20 साल 22 साल, उसकी मेंटल हेल्थ अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो वो अग्रेसिव हो जाता है। हम कहते हैं ना कि अरे एंगर इशू है, एंगर इशू तभी आता है जब आपकी मेंटल हेल्थ वो अपने प्रॉपर वे में नहीं है। अब आते हैं कि 10 साल के बच्चे से लेकर के 10 से 20 साल तक हम कैसे जानेंगे कि मेंटल हेल्थ वीक है। 10 साल से 20 साल के बच्चों में एक चीज़ होती है कि उनको ये होता है कि मुझे सब कुछ पा लेना है। उनको कहीं ना कहीं एक ये होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, वो खुश
8: जल्दी से उनको लगता है कि जल्दी से हमको हाँ, सब चीज़ गेन करनी है, मतलब जो इंतज़ार नहीं होता है।
9: बिल्कुल खुशी होती है, लेकिन यही खुशी बिल्कुल गायब हो जाती है उन बच्चों में जो मेंटली प्रॉपर वे में नहीं होते हैं, यानी कि उन्हें मेंटली कोई भी इलनेस होती है। तो मान लीजिए आपका बच्चा बहुत शांत रह रहा है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, समाज में मिलजुल नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि अपने बुआ से, अपनी चाची से, अपने घर के लोगों से बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं, अपने मम्मी पापा से नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उसे कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम जरूर है। वहां पे हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं, यार छोड़ दो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। छोड़ देने से धीरे धीरे ये मेंटल प्रॉब्लम जो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है वो डिप्रेशन से एंजाइटी और एंजाइटी से फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए 10 साल से 20 साल तक के आपके बच्चे अगर अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंधेरे कमरों में रह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी सिम्टम्स होती है कि बच्चे अंधेरा पसंद करने लगते हैं, वो मम्मी लाइट मत जलाओ, मुझे अंधेरे कमरे में रहने दो, इट मींस कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। इसलिए काउंसलर के पास जाएं, ट्रीटमेंट कराएं और जितना हो सके साथ रहें बच्चों के। अगर आप किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे ना, उससे जरूरी नहीं है हम काम की बात करें, बेमतलब की भी बातें करते रहेंगे तो उसकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा खराब नहीं होगी। ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
8: जी, तो चलिए अंशिका एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार आएंगे हम एक नया टॉपिक लेकर के, लेकिन तब तक के लिए सुनते रहें इस प्यार से गाने को।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
6: RJ अंशिका
5: जी। तो अभी बात हो रही थी स्वीट कॉर्न की।
6: हाँ।
5: कि मैं सिखा दूं तुम्हें खाना।
6: मुझे?
5: हाँ, आपको ही
6: सिखा दीजिए।
5: तो स्वीट कॉर्न बहुत ही अच्छा होता है। स्वीट वाकई में स्वीट होता है। और जब आप स्वीट कॉर्न बनाओगे ना, तो आप जैसे अभी आप मुंह बना रहे हो ना कि मुझे तो भुट्टा पसंद है, स्वीट कॉर्न नहीं पसंद है, लेकिन अगर आपने मेरे हाथ का स्वीट कॉर्न खा लिया ना, तो आप भुट्टा भूल जाओगे।
6: अरे वाह,
5: समझ में आया,
6: फिर तो जरूर खाना चाहिए।
5: बिल्कुल, चलो।
6: तो लिसनर्स, पता है आपको दोपहर में क्या होता है? दोपहर में दो चीजें बहुत तेज होती हैं,
5: भूख एंड नींद।
6: यस,
5: नींद नहीं आ रही है मुझे। मुझे तो एक्साइटमेंट है, बट और किस चीज की एक्साइटमेंट है, यू नो दैट?
6: यस यस, आई नो।
5: यस, तो और मुझे लेकिन भूख लग रही है, जो एग्जैक्टली इस समय लगती है, सभी को लगती है। और जब स्वीट कॉर्न, भुट्टा, दुनिया भर की चीजें और पकौड़े, मिठाई, चाय, पानी, पता नहीं क्या क्या अभी ये गिना रही थी मुझे, तो मुझे बड़ा वो लग जाता है कि यार हम लोग के पास भी आ जाता थोड़ा, तो हम लोग भी खा लेते।
6: बट ऐसा हुआ नहीं,
5: चख लेते मुँह।
6: चलिए कोई बात नहीं, ये तो अपना पेन है। मैं बात कर रही थी नींद को लेकर। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं ना मैम कि बच्चों में प्रॉब्लम नहीं, जैसे कहते हैं ना कि बड़ों की जब बढ़ती उम्र हो जाती है तो उन्हें नींद नहीं आती है, कहीं ना कहीं ये एक बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम है। लेकिन अब कहते हैं ना कि जैसे वेदर बदल गया है, तो ऐसा हो गया है कि सभी में होने लगी है, कहीं ना कहीं बच्चों में भी।
5: बच्चों में होती है?
6: यस मैम, बच्चों में भी होती है।
5: बच्चों के साथ साथ में मुझे लग रहा है कि बड़ों में होता है।
6: हाँ।
5: और ये जो है ना क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशन का मतलब होता है लंबे समय तक या हफ्तों या महीनों तक बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से पर्याप्त नींद ना मिल पाना।
6: बिल्कुल,
5: आई थिंक सो।
6: यस,
5: ऐसा ही है ना?
6: ऐसा ही है।
5: तो अगर कहा जाता है कि डिप्रेशन, हालांकि नींद की या लगातार कमी आगे चलकर बच्चे को मानसिक डिप्रेशन, अवसाद की ओर ढकेल सकती है, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर गहरी नींद बेहद जरूरी है, जब उन्हें पर्याप्त गहरी नींद नहीं मिलेगी तो आपके मस्तिष्क को आराम नहीं मिलेगा। ठीक है,
6: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम ने कि अच्छा। आपकी मेंटल स्टेट को कहीं ना कहीं आराम नहीं मिलता। अब मैं आपको बीती हुई रात की बात बताती हूँ, परसों रात की बताती हूँ कि क्या हुआ ना कि सैटरडे था। तो सैटरडे नाइट को कुछ ऐसे हुआ कि बहुत देर तक मैं जागी हूँ देर रात तक, और फिर संडे को मैं दिन में सो गई, मतलब प्रॉपर मैंने नींद ली। उसके बाद क्या हुआ कि संडे की नाइट को मुझे रात को नींद आ ही नहीं रही थी।
5: अच्छा।
6: क्योंकि मैंने मतलब दिन में सो लिया।
5: हाँ।
6: तो वो रात को नींद नहीं आ रही।
5: अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि जब हम दिन में आराम कर लेते हैं 102 घंटे तो हमें रात में नींद नहीं आती है?
6: यस मैम, ये उनके साथ होता है जिनकी हैबिट नहीं होती है। मतलब दिन में सोने की, आराम करने की, तो अगर वो एक दिन अपने रूटीन से हट जाते हैं तो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी।
5: अच्छा, कुछ लोगों को ये भी होता है कि जिनकी आदत होती है ना दिन में आराम करने की, और अगर वो अगर दिन में आराम नहीं होता है तो वो तो एक शेड्यूल चलता ही चलता है, साथ ही साथ में क्या होता है कि रात में भी बहुत ज्यादा थकावट के कारण भी नींद नहीं आती है।
6: जी मैम,
5: कभी कभी ऐसा भी होता है।
6: बिल्कुल, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा देर तक नहीं आई, तो बहुत मैंने टीवी देखा, बुक्स पढ़े, मतलब मैं चाह रही थी कुछ ऐसा हो कि मैं थक जाऊं और मैं सो जाऊं, लेकिन काफी देर तक नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और फिर मैं सो गई। तो कहने का सेंस ये है कि बच्चों में ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आजकल सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है, मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा यूज करना। हम कहते हैं कि मोबाइल फोन की जो रेडियंस निकलती है वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन वो आपकी शरीर की, आपकी जो दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी डैमेज कर देती है, और जब वो डैमेज होती हैं तो हमें नींद नहीं आती। आपने सुना होगा, छोटे बच्चों में सुना होगा कि अरे मैं तो रात में 3-3 बजे तक जागता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। और एक बात आपको और बताती हूँ, अगर आपको रेगुलर मतलब एक हफ्ते तक आप इस चीज को करके देखिएगा कि अगर आपको 1 बजे के बाद ये नहीं लगता है कि मुझे सोना चाहिए, नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं आपको स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है।
5: ओके।
6: मैं रात को जब जैसे 10 बजे मान लीजिए, मतलब अमूमन घरों में 10 बजे तक खाना लोग खाते हैं, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो 11 बजे जब मैं, ये होता है कि मुझे लेटना है, सोना है, तो जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो मैक्स टू मैक्स 20-25 मिनट, या बहुत ज्यादा अगर मैं थकी हूँ, मुझे मान लीजिए कहीं पेन हो रहा है, तो आधे घंटे के अंदर मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ। और मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ बिजनेस, तो मैं तो ऐसे सोती हूँ कि मेरी सीधा सुबह होती है।
5: वाह, सबसे अच्छी नींद,
6: सबसे अच्छी नींद होती है मेरी, रात को बिल्कुल आँख नहीं खुलती है। सब लोग कहते हैं कि इनके बगल में आप ड्रम भी बजाएंगे तो ये रात को नहीं उठेंगे।
5: और सबसे अच्छी गहरी नींद होती है, यही वाली सबसे अच्छी नींद होती है,
6: और जो कि रियलिटी है। आप मेरे बगल में बैठ के आप टीवी देखो, आप फुल वॉल्यूम में टीवी देखो, मेरी आँख नहीं खुलेगी।
5: ओ माय गॉड। और मेरे साथ कुछ ऐसा है कि अगर एक पिन भी गिरती है ना तो मेरी नींद खुल जाती है।
6: ये होता है, मतलब ये अपने अपना तरीका है सोने का। अब ये दो तरीकों से होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों में क्या होता है कि बच्चे भी दिन भर के थके हुए होते हैं, ट्यूशन है, वो खेल रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको नींद आसानी से आ जाती है। लेकिन आप उन बच्चों को देखिए जो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सबसे ज्यादा स्लीप डिसऑर्डर उन्हीं में पाया जाता है जो जरा सी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सारा दिन रूम में पड़े रहते हैं, सारा दिन फोन चलाते हैं, अगर स्कूल भी जाते हैं मैम तो वहां पे खाली बैठ के पढ़ाई करते हैं, उससे थकान नहीं होती है। हम क्यों कहते हैं कि मुझे मेंटली मतलब थकान होती है, मुझे फिजिकली नहीं होती है, लेकिन उन्हें मेंटली भी नहीं होती है। उसकी वजह क्या है, टीचर पढ़ा रही है, ध्यान उधर है, इसका मतलब आपने दिमाग भी तो नहीं
5: दिमाग नहीं किया।
6: तो
5: इंसान दो चीजों से वाकई में थकता है, एक मेंटली और एक फिजिकली। तो मुझे लगता है कि अंशिका, फिजिकली थकना और नींद का जो एक कनेक्शन है ना, वो ज्यादा अच्छा है।
6: यस मैम,
5: क्योंकि मैंने आजमाई है बात। अगर मैं फिजिकली अगर मैं ज्यादा वर्क कर लेती हूँ ना किसी दिन, इधर दौड़ धूप इधर उधर, तो मुझे उस दिन बहुत अच्छी नींद,
6: बहुत अच्छी नींद आती है,
5: गजब की नींद आती है। हालांकि मेंटली भी ऐसा नहीं है कि जब मेंटली बहुत ज्यादा काम हो जाता है तो एक लगता है कि अगर आपने 1 घंटा सोए ना तो वो जो दिमाग है वो फिर से रिकवर हो जाता है 1 घंटे के अंदर। लेकिन फिजिकल अगर आपने कोई काम कर लिया और उसके लिए आप अगर आप सो रहे हैं तो लगभग आपको 2 से 2.5 घंटे, जैसे कल की मैं बात बताऊं
6: जी,
5: कि कल हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, तो मैं अमूमन मुझे लगता है कि दिन में 1/2 घंटा 1 घंटा मैं बस आराम करती हूँ, बट कल मैं जो सोई हूँ ना, मैं कंटिन्यूअसली 2 घंटे और ऐसे जैसे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या है क्या नहीं, और ठीक 2 घंटे के बाद मुझे नींद खुली, मतलब 6 बजे मैं उठी कल। तो मुझे एक हिसाब से अच्छा भी लगा कि हाँ चलो भाई, अगर क्या कहते हैं रात में देर से नींद अगर आती है तो ये उसमें फिर वो कवर हो जाता है।
6: बिल्कुल,
5: रात में लगता है कि हाँ 12 बजे, तो 12 तो सबके ही, मतलब 11:30-12 आजकल तो नॉर्मल है, मतलब 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कहता है ना कि 6 घंटे की नींद आपको करनी है पूरे दिन में 24 घंटे में। तो फिर मैं एक एक्यूरेट कर रही थी कि 6 घंटे उधर, मतलब अगर मैं 12 बजे सो रही हूँ 6 बजे तक, तो 6 घंटे उधर हो गए और 2 घंटे मैंने दिन में सोए तो 8 घंटे हो गए। हाँ, तो 8 घंटे की नींद प्रॉपर अच्छी मानी जाती है। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो मेरा 6-8 घंटे का प्रॉपर डोज में ले रही हूँ।
6: बिल्कुल, और बच्चों में भी सेम यही कंडीशन होती है कि उन्हें मतलब 8 घंटे की नींद तो उन्हें तो प्रॉपर चाहिए। उल्टा हम लोग कहते नहीं कि अरे बच्चे तो दिन भर सोते रहते हैं, तो वो एक होना चाहिए। अगर इस एज में बच्चे में स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है ना मेंटल एक्टिविटी कर रहा है। वहां आपको देखने की जरूरत है वो दोनों ही एक्टिविटी करे, और आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा थके।
5: बिल्कुल,
6: अगर वो थकेगा तो खुद ब खुद नींद आएगी। हम क्या कहते हैं,
5: नींद आएगी,
6: नींद आएगी। हम क्या कहते हैं कि स्लीपिंग पिल्स लो, मतलब हाँ। बड़े जो जब बढ़ती उम्र में नींद नहीं आती तो हम कहते हैं स्लीपिंग पिल्स लीजिएगा, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको स्लीप डिसऑर्डर के लिए पिल्स देते हैं तो उससे पहले वो कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप ये पिल्स लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि थक कर सोइएगा। तो यही आप बच्चे में भी कोशिश करें
5: बिल्कुल,
6: और धीरे धीरे जब उसको आदत पड़ जाएगी तो जब हम प्रॉपर अपनी नींद को लेने लगते हैं तो ये स्लीप डिसऑर्डर खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है
5: बिल्कुल। और मैं तो यही कहूँगी चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों या जो भी हो, अगर डॉक्टर के मतलब जैसे कहते हैं ना कि प्रिकॉशन से आप अगर नींद की दवा ले रहे हैं तो वो सिर्फ नींद की दवा नहीं होती है, उसमें मिला होता है नसों को आराम करने का भी कि वो बिल्कुल आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। तो अगर डॉक्टर के प्रिकॉशन पे हैं तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करिए कि अपने आप को फिजिकली और मेंटली थका करके अगर आप सो रहे हैं तो वो नींद जो होती है ना वो प्रॉपर तरीके से अच्छी नींद मानी जाती है। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक, गर्मी बहुत ज़्यादा वाली है और बस हम यूँ गए यूँ आए, तब तक थोड़ा सा हम भी पानी पी लें और आप भी पानी पी लें।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो फटाफट शुरू करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पर आ गए हैं हम लोग। और आज की मॉरल स्टोरी क्या है वो आपको बताएंगी हमारी आरजे अंशिका।
6: आज की मॉरल स्टोरी ये है कि भाई आज हम उनके बारे में बात करेंगे और उनकी लाइफ से जुड़ी बताएंगे, जिनकी मुरली की धुन पे नाचते हैं सब। ऐसे हैं हमारे राष्ट्र रचैया यानी कि श्री कृष्ण कन्हैया
5: जी।
6: तो आज उनकी लाइफ से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है श्रद्धा और भक्ति
5: जी।
6: एक दिन गोकुल में एक गरीब महिला फल बेचने आई। उसने बाल कृष्ण को देखा, वो अपने घर के आंगन में घूम रहे थे। उसने उन्हें देखा और देखा तो देखती ही रह गई।
5: अच्छा?
6: क्योंकि भगवान कृष्ण का बाल रूप कितना खूबसूरत, तो वो देखती रह गई। कुछ देर तक वो देखती रही
5: जी।
6: उन्हें देखने के बाद उसके मन में एक इच्छा आई कि क्यों ना भगवान कृष्ण मेरे फल खाएं। उसे ये नहीं पता था कि वो भगवान है, लेकिन वो इतने सुंदर और तेजस्वी थे कि उन्हें जो भी देखता था वो उनकी तरफ मोहित हो जाता था, उनके साथ समय बिताना चाहता था। ये सोचता था कि मैं उन्हें क्या दे दूं, तो वो सोचती रही। और लेकिन उसने सोचा कि अब मैं घर के अंदर कैसे जाऊं, क्योंकि जो यशोदा जी का घर था वहाँ पे मतलब द्वार पे ही और सब कुछ सब लोग खड़े हुए थे। तो उसने सोचा कि मैं कैसे जाऊं। तो जब वो वहाँ गई और उसने वहाँ बुलाना शुरू किया कि फल लेना हो तो आ जाइए, फल लेना हो तो आ जाइए, ऐसे उनके वहाँ पे दरवाजे के सामने वो कहने लगी। तो कुछ देर तक तो कोई नहीं निकला, लेकिन कुछ देर बाद माता यशोदा खुद निकली और उन्होंने बोला कि मुझे ये फल चाहिए और आप मुझे फल दे दीजिए। अच्छा, उसका मन फल देने में बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका मन तो श्री कृष्ण में था कि वो आए, फलों को लें और फिर फल खाएं। तो वो मतलब कुछ समय ज़्यादा लगाने लगी, वो धीरे धीरे फल देती रही, धीरे धीरे फल देती रही, कि मेरा जो टाइम है वो ज़्यादा लगे। कुछ देर बीत गई, यशोदा माता ने उनसे कहा कि क्या बात है, आप फल जो है वो इतने धीरे धीरे क्यों दे रही हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी दीजिए। तो उसने फिर जल्दी जल्दी दिया और जब वो चलने लगी, ठीक उसी वक्त भगवान कृष्ण खेलते खेलते वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा, कहाँ जा रही हो दादी माँ, रुक जाओ।
5: अच्छा।
6: तो वो रुक गई और जैसे ही उनका जो मतलब जो उन्होंने लिया हुआ था जिसमें सारे फल थे टोकरी, उसमें उन्होंने कहा इसे नीचे रख दीजिए, बड़े प्यार से उन्होंने कहा। तो माता यशोदा ने कहा, नहीं लल्ला, मैंने सारे फल जो भी थे मैंने ले लिए हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए, अब इन्हें जाने दो। लेकिन उन्होंने उनकी आंचल जो है उनका पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना दादी, आप नीचे रखो, मुझे कुछ और लेना है। तो बहुत जिद करने पर उनके उन्होंने नीचे रख दिया और जैसे ही उन्होंने उनकी टोकरी में से बस कुछ नहीं किया, सिर्फ एक आम निकाला और वो आम को तुरंत ही खाने लगे। तो वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, उनको ये लगा कि हाँ ठीक है, मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई, इस बालक ने मेरे टोकरी के फल खा लिए। माता यशोदा ने उन्हें पैसे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चली गई। लेकिन कुछ दूर जाने पर आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ दूर जाने के बाद जब दूसरे इंसान ने उनसे कहा कि मुझे अपनी टोकरी के फल दीजिए और उन्होंने वो फल देने के लिए हाथ डाले, तो उस टोकरी में फल की जगह सारे सारे पैसे थे। वो टोकरी पूरी की पूरी उन पैसों से भरी हुई थी जो माता यशोदा ने उसे दिए थे। लेकिन उसने ये देखा कि माता यशोदा ने तो उसे चंद सिक्के ही दिए थे, लेकिन उसकी पूरी टोकरी सिक्कों से भरी हुई थी। वो बहुत खुश हुई और उनके मन में ये आ गया कि ये पक्का भगवान ही है और इन्होंने मेरी सारे कष्ट, मेरे दुख, मेरी तकलीफें दूर कर दी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जब आप मन में ये श्रद्धा रखते हैं ना कि मेरे ऊपर वाले जो भी हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जब आप श्रद्धा रखते हैं ना कि मेरा भगवान है ना, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, मुझे जितनी भी तकलीफें हैं वो सारी दूर कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई निमित्त बन जाता है और आपकी तकलीफें दूर हो जाती
5: है। Exactly,
6: इसलिए yes. कहते हैं कि श्रद्धा में शक्ति होती है,
5: श्रद्धा में शक्ति होती है और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं चाहती हूँ कि अंशिका को दे दूं अभी दो मिनट के लिए इजाजत, क्योंकि वो आएंगी अभी आपके साथ कॉलर ट्यून में। कॉलर ट्यून की हमारी होस्ट बन चुकी हैं आज अंशिका, तो आप कॉल करिएगा 6393316429 पे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि कल है वेनसडे, कल बहुत ही ब्यूटीफुल वाला डे होता है, यानी कि कल के दिन हम लेते हैं स्पेशली वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम, तो हमें भी दे इजाजत, हम मिलेंगे कल सेम डे सेम प्लेस पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72-34-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

है, बिल्कुल पहली पहली बार मोहब्बत की है, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपके अपने पसंदीदा शो जिसका नाम है कॉलर ट्यून गोना, यानी कॉलिंग प्रोग्राम, जहां पे आप कॉल करते हैं, अपनी फरमाइशें देते हैं और हम आपकी फरमाइशों को प्ले करते हैं। तो चलिए आइए सीधे चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि आज पहली जो फरमाइश है वो किसकी है और हमें कौन सा सॉन्ग सुनने को मिलने वाला है। तो आज सबसे पहली फरमाइश जो की है वो मेहताब जी ने की है। तो आइए चलिए सीधे चलते हैं मेहताब जी के सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। और एक बात और कि अगर आप भी ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के या फिर अपने किसी

फ्रेंड को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आपको फोन उठाना है, कॉल करना है 6393316429 पे। फटाफट से कॉल करिए और अपने फरमाइश को हम तक पहुंचाइए और हम उसे ज़रूर प्ले करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं मेहताब जी के सॉन्ग की तरफ। आप बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका।

अभी अभी आपने सुना मेहताब जी के सॉन्ग को, और मेहताब जी के सॉन्ग के बाद में अब बारी आती है सुरेंद्र यादव जी के सॉन्ग की। सुरेंद्र यादव जी के सॉन्ग के बाद हम सुनेंगे निशा जी के सॉन्ग को, और निशा जी के सॉन्ग के बाद में आप सुनेंगे धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग को। तो बने रहिए आपके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम कॉलर ट्यून गुंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आइए चलिए सीधे चलते हैं और सुनते हैं इन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को।

वापस आया। बिल्कुल सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि फरमाइश की है राकेश वर्मा जी ने। तो आइए चलिए सुनते हैं इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को, और इसके बाद हम सुनेंगे उस्मान खान जी के सॉन्ग को, और उस्मान खान जी के सॉन्ग के बाद सुनेंगे मुमताज अंसारी जी के सॉन्ग को। तो आइए सीधे चलते हैं और इंजॉय करते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग को। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसकी फरमाइश की थी मुमताज अंसारी जी ने। और अगर आप भी फरमाइश करना चाहते हैं, अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फोन उठाना है, कॉल करना है 6393-316-429 पे, और फटाफट से अपने सॉन्ग को बता देना है और हम इसे ज़रूर प्ले करेंगे। तो आइए चलते हैं अब सीधे अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है आन्या जी की। और आन्या जी को जो गाना सुनना है वो बहुत ही प्यारा सा है, जो कि है ओ नीले अंबर वाले तेरा भी खेल निराला। तो आइए सीधे चलते हैं आन्या जी के सॉन्ग को सुनते हैं, और आन्या जी के सॉन्ग के बाद हम सुनेंगे इरशाद जी के सॉन्ग को। तो फिलहाल सीधे चलते हैं आन्या जी के सॉन्ग की तरफ।

0: मेरे दिल को करार आ जाए, तू जो हंस दे तो बहार आ जाए, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी इरशाद जी ने। और इरशाद जी के सॉन्ग के बाद अब चाहिए सीधे चलते हैं श्रेयस कुमार जी के सॉन्ग की तरफ और सुनते हैं उनके सॉन्ग को, एंजॉय करते हैं। और आप बने रहिए आपके अपने प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए चलते हैं इस नेक्स्ट वाले सॉन्ग की तरफ।
1: शिमारू फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।

0: बिल्कुल, जब दिल से दिल टकराता है तो मत ही पूछें कि क्या हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ हो जाता है जब दिल से दिल टकराता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, जिसकी की फरमाइश की थी श्रेयस कुमार जी ने। आइए अब सीधे चलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट तो नहीं कहेंगे, अभी हमारे पास टाइम है, नेक्स्ट वाले सॉन्ग की तरफ, जो कि है बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग बोल राधा बोल मूवी से, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। तो आइए चलिए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, और आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।
1: शगुन स्वीकार कर लीजिए।

0: आशिकी। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो आज के लिए बस इतना ही लिसनर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और साथ ही साथ में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कॉलर ट्यून गोना प्रोग्राम मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मौसम बहुत ही अच्छा है, सो उसे इंजॉय करते रहिए और मिलेंगे आपसे कल आपके अपने पसंदीदा वाले प्रोग्राम में जिसका नाम है सुन सहेली। तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर, बाय दोस्तों।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है विज्ञान शाला में, और मैं हूँ आपके अपने आज बिना लाइव आपके फेवरेट शो, और जहाँ बातें होती हैं विज्ञान की, ज्ञान की, और आप सीखते हैं आपके जिज्ञासा से, यानी कि लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी। आज आपसे बात करने के लिए तो मैं बैठी हूँ, लेकिन आपको बहुत कुछ बताना है किसी खास दिन के बारे में। आप सोच रहे होंगे आज कौन सा खास दिन है, तो मैं आपको बिना देर के बताना चाहती हूँ एक खास दिन के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें जागरूक करने के लिए होती है, अवेयरनेस। यानी कि बहुत सारी चीजें हम लोग को आसपास लोग बताते हैं, हम लोग सुनते हैं, कभी सुनते हैं तो कभी इग्नोर कर देते हैं। पर अगर कुछ खास और कुछ बेहतरीन की बात करें, तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सीखना, ये जानना कि अवेयरनेस किस चीज़ की ज़रूरी है। अभी हाल ही में हमने जंक फूड डे मनाया, तो जंक फूड की अच्छी चीज़ें भी हमने डिस्कस की, और जंक फूड की बुरी चीज़ें भी, कि मतलब जंक फूड अगर खा रहे हैं तो कैसे खाएं, फ्रिक्वेंसी क्या हो, कौन सा जंक फूड सही है, कौन सा जंक फूड सही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस हर चीज को लेके होनी चाहिए, चाहे वो आप हाथ में यूज कर रहे हैं मोबाइल हो, या कोई भी चीज जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, जो हमारी लाइफ में डेली हम यूज कर रहे हैं, या हमारे कह सकते हैं कि हमारी लाइफ को हैप्पीली जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं बात करना चाहूंगी आप सभी के साथ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन सा डे है, अब इसके बारे में क्या पता चलने वाला है। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये दिन पहले तो क्यों मनाया जा रहा है, और इसके लिए मैं जागरूकता की बात क्यों कर रही हूँ। तो हर साल 28 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस या वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसका उद्देश्य है वायरल, यानी कि एक ऐसी डिजीज की बात करना जो कि लीवर में सूजन का कारण बन सकती है, और ये बीमारी वैश्विक रूप में फैली बीमारी है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीजों की बात आज हम लोग करेंगे। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये दिन मनाया क्यों जा रहा है, 28 जुलाई को क्यों मनाया जा रहा है। अक्सर आपके दिमाग में जब भी कोई स्पेशल डे मनाते हैं तो ये जरूर आता है कि इसी तारीख को क्यों, और कोई तारीख क्यों नहीं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये दिन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलबर्ग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और इसके निदान यानी कि इसके टेस्ट और टीके का विकास किया। यानी कि सबसे पहले तो टेस्ट से हमें पता चलना चाहिए ना कि हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी का या ए का या जो भी हेपेटाइटिस है उसका वायरस है या नहीं है, तो टेस्ट के माध्यम से ही पता चलता है। हेपेटाइटिस के जो प्रकार हैं उनके बारे में भी बात करने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि क्या आपने बचपन में वैक्सीनेशन कराया है या नहीं कराया है। अगर कराया है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कौन कौन सा वैक्सीनेशन आपने कराया है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मुख्य रूप से हेपेटाइटिस जो वायरस है वो 5 प्रकार का है, ए बी सी डी और ई। हेपेटाइटिस बी और सी मिलकर सबसे आम संक्रमण करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष की अगर मैं बात करूँ तो 1.3 मिलियन मौतें होती हैं और 2.2 मिलियन नए संक्रमण होते हैं। तो बहुत ही खतरनाक है, और निदान उपचार की अगर बात करें तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें परीक्षण करना है, उपचार करने के बाद इसको समझना है किस हद तक फैला हुआ है ये वायरस, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी भी त्वरित कार्रवाई की अगर बात करें तो 2030 तक WHO ने उन्मूलन लक्ष्य तक पहुंचाने की संभावना बताई है। तो सबसे पहले तो हेपेटाइटिस डे का जो इतिहास है उसकी थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलबर्ग ने हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की, इसके बाद इस वायरस से जो जुड़े जो कहते हैं टेस्ट है उनकी खोज की और वैक्सीन का विकास भी किया। डॉक्टर बलबर्ग की इस खोज के सम्मान में हर साल उनके जन्म दिवस को 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाते हैं एज अ विश्व मतलब सेलिब्रेशन के तौर पे, वर्ल्ड सेलिब्रेशन के तौर पे। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2008 से की गई। अब इसके महत्व को भी समझते हैं। हेपेटाइटिस एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके प्रति लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। लोगों को इस बीमारी के प्रति सचेत करने के लिए इस खास दिन का महत्व लोगों तक पहुंचाने के लिए आज मैं बात कर रही हूँ। जागरूकता के अभाव में दुनिया भर में लोग हेपेटाइटिस की चपेट में आ जाते हैं। लीवर से जुड़ी इस बीमारी के कारण जान का खतरा बन जाता है। दुनिया भर में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए खास जो कहते हैं ना कि प्रोग्राम या जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब को भी इस चीज से जुड़ी मतलब जितनी भी जानकारी है वो इकट्ठा करनी चाहिए और इकट्ठा करने के साथ साथ आपको समझना होगा कि ये बीमारी किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो ना सिर्फ हम अवेयर हों बल्कि हर वो छोटी बड़ी चीज की जानकारी अपने तक रखें कि कैसे ये बीमारी कहां से आती है, कैसा संक्रमण होता है। और मैं आप लोग को सच्ची बताऊं तो मैं आज इस पूरी डिजीज के बारे में विश्लेषण करना चाहती हूं। और आप लोग अगर मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोग को अच्छे से इस जानकारी, इस बीमारी से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान से एकदम सुनिए कि कैसे क्या ये बीमारी है और इससे आपके शरीर में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और अगर प्रभाव दिख भी रहे हैं तो आप कैसे खुद को बचा सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बस सबसे पहले तो समझिए कि हेपेटाइटिस क्या है। ये एक तरह से आपके लिवर का सूजन है, लिवर में आने वाली सूजन है जो कि वायरस की वजह से आती है जो आपके लिवर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसका महत्वपूर्ण जो कार्य है जैसे कि आपके लिवर का जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको रोक देती है। हेपेटाइटिस अक्सर हेपेटाइटिस वायरस के कारण होती है। वायरल हेपेटाइटिस अमेरिका में सबसे आम हेपेटाइटिस ए सी बी में से एक है। ठीक है, लोगों में लिवर के अतिरिक्त जो वसा है यानी कि फैट है इसके अलावा आपके वायरस के अलावा किससे हो सकता है, तो बहुत ज्यादा शराब के सेवन से भी आपका लिवर डैमेज हो सकता है मतलब लिवर में सूजन आ सकती है। नशीली दवाइयों का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो भी आपके मतलब लिवर में सूजन आ सकती है और कोई विषैली चीज आपके शरीर में जा रही है उससे भी आपके हेपेटाइटिस हो सकता है। मतलब सिर्फ वायरस से ही नहीं इन चीजों से भी आपको जो ये संक्रमण है वो हो सकता है। अब अन्य वायरल संक्रमण की बात करूँ तो एप्स्टीन बार वायरस जिसे ईबीवी भी बोलते हैं, इसके अलावा सीएमवी भी बोलते हैं जिसको साइटोमेगालो वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ दवाइयों से सही हो सकता है। कुछ चिकित्सीय स्थिति है जैसे मधुमेह, मोटापा, इन सब चीजों की वजह से भी आपका लीवर में सूजन आ सकता है। अब हेपेटाइटिस से पीड़ित कई लोगों में लक्षण जो है वो अलग अलग दिखते हैं, इनमें पता नहीं चलता है कि संक्रमण कैसा है। तीव्र हेपेटाइटिस की अगर बात करूं तो हल्का बुखार रहेगा, थकान, भूख नहीं लगेगी, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, गहरे रंग का पेशाब, हल्के रंग का या भूरे रंग का मल होगा और मांसपेशियों में बहुत दर्द होगा, खुजली होगी त्वचा में, पीलिया हो सकता है और आप बहुत अस्वस्थ महसूस करेंगे। अगर क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस की बात करूं तो 2 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक या फिर दशकों तक समय लग सकता है इसका इलाज करने में। अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में वायरल हेपेटाइटिस एक गंभीर और जानलेवा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। जीवन रक्षक उपचार प्राप्त करने का पहला कदम जांच करना है और सभी वयस्कों को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो जांच है वो हमेशा करानी होती है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार जो कि मैंने पहले भी बताए ए बी सी डी और ई, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं यानी कि ये दुनिया भर में फैलने वाले सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस के कई अन्य प्रकार भी हैं, इनमें शामिल हेपेटाइटिस एफ जो कि एचएफ के नाम से फेमस है, हेपेटाइटिस जी भी है इसमें, टी भी है इसमें और ये काफी सारे मतलब इसके प्रकार है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, लोगों में ये बीमारी कम कॉज होती है ये। ठीक है, तो हम मेन जो है उनके में बात कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई में अंतर क्या क्या है। हेपेटाइटिस ए बी और हेपेटाइटिस सी ये 3 अलग अलग वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। इनके जो प्रत्येक लक्षण है वो समान होते हैं, इनमें फैलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ये लीवर को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। आगे मैं बात करूँ हेपेटाइटिस ए को आमतौर पर अल्पकालिक भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये अल्पकालिक के साथ शुरू होते हैं लेकिन आगे आपके शरीर में लंबा संक्रमण पहुंचा सकते हैं। कुछ ही देर में हम लोग फिर बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, तब तक के लिए छोटे से म्यूजिकल ब्रेक को एंजॉय करिए और वापस से आरजेबीना लाइव होंगी आपके लिए एक अवेयरनेस वाली जानकारी के साथ। तो बिल्कुल जागरूक होंगे आरजेबीना के साथ। लेकिन अगर आप लाइव हैं, सुन रहे हैं आरजेबीना के साथ शो आपका वाला विज्ञान शाला, तो डेफिनेटली आपका फेवरेट फ्रिक्वेंसी 99.6 FM आपके लिए तैयार है।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: वापस से आरजे बीना आपके साथ लाइव है आपके वाले शो विज्ञान शाला में, जहां लर्निंग होती है बियॉन्ड क्यूरियोसिटी। तो जिज्ञासा तो आपकी बरकरार होगी कि और कौन कौन से हाइपेटाइटिस के बारे में आरजे बीना बताने वाली हैं। तो बिल्कुल अपनी जो क्यूरियोसिटी है, अपनी जिज्ञासा, उसको बरकरार रखिए और जानिए कि और कौन कौन से टाइप के हाइपेटाइटिस हैं। तो ए बी सी के बारे में तो बात हो ही गई थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपेटाइटिस बी और सी ये जो हैं, शुरुआत तो इनकी अल्पकालिक होती है, थोड़े टाइम के लिए दिखते हैं, लेकिन वायरस शरीर में जो है वो बना रहता है, यानी कि लंबे समय तक आपके शरीर में रहेगा और धीरे धीरे संक्रमण करेगा और लीवर को डैमेज करेगा। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ए और बी को रोकने के तरीके की। तो इनके टीके अब उपलब्ध हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी का कोई भी टीका भी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी की। HDV वायरस के कारण ये बीमारी कॉज करता है, और साथ ही साथ हेपेटाइटिस ई की बात करें तो HEV वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं, जो कि अमेरिका में आम नहीं है लेकिन लोगों में होती हैं और देशों में फैली हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस एफ के बारे में, जो एक मतलब काल्पनिक वायरस है जिस पर शोध किया जा रहा है, और इसका संबंध जो है वो वायरल हेपेटाइटिस से ही है। मतलब लोग कह रहे हैं हेपेटाइटिस एफ ही है, लेकिन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे लोगों को लग रहा है। अब जी की बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस जी जो है वो HGV वायरस से होने वाली बीमारी है, जो कि यकृत यानी कि आपके लिवर में सूजन की नई खोज पाई गई है। मतलब पहली बार ऐसा देखा गया कि एक ऐसा वायरस है जो सीधे तौर पे सूजन कॉज कर रहा है, ठीक है, और इसके लिए अभी तक कोई टीका वगैरह नहीं ढूंढा गया है। अब आपसे बात करते हैं हेपेटाइटिस टीटी के बारे में, जो कि ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड वायरस है, जिसे टॉर्क टेनो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एक प्रकार का वायरस है, ये खास तौर पे धीरे धीरे फैलता है, रक्त के माध्यम से फैलता है और फिर आपके जो लिवर है उसको क्षति पहुंचाना शुरू करता है। वर्तमान तौर पे अभी इसका अध्ययन चल रहा है, इसके बारे में और रिसर्च की जा रही है। तो आप सोचिए कि ये बीमारियां कॉज करने वाले जो वायरसेस हैं, ये धीरे धीरे हमारे शरीर में अपनी जगह बना रहे हैं और हम अपनी जिंदगी में मस्त घूम रहे हैं, बिल्कुल भी परवाह नहीं अपनी कर रहे हैं। तो आगे मैं बात करूंगी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की। ये तब होता है जब आपके शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली जो प्रतिरक्षा जो क्षमता है, यानी कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, तभी हमारे शरीर में जो हमारी लिवर की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उन पे हमला करता है। अगला है नवजात हेपेटाइटिस। ये जो है लिवर में सूजन कॉज करता है, ये केवल प्रारंभिक यानी कि जो जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं 1-2 महीने के, उनमें कॉमन होता है, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती है। अब बात करते हैं कैसे फैलता है, एक इंसान से दूसरे में कैसे जाएगा। तो वायरल हेपेटाइटिस का जो संक्रमण है वो आमतौर पे जो हम आसपास लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उससे भी होता है। सभी वायरस का संक्रमण जो है अलग अलग लेवल पे अलग अलग तौर पे होता है। अब मैं बात करूंगी जो ए बी सी डी ई की है, तो इनके तरीके की। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से होता है। हेपेटाइटिस बी सी डी जो है वो संक्रमण जो है व्यक्ति के रक्त के संपर्क में होता है, यानी कि अगर किसी को संक्रमण है वो अपना रक्त किसी दूसरे को, ब्लड किसी और को दे दे तो ये फैल जाएगा, ठीक है। और ये नसों में ड्रग्स के तौर पे भी, सुइयों के माध्यम से भी जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और डी यौन संपर्क से भी फैलता है, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाने से भी ये फैलता है, और प्रसव के दौरान माँ से बच्चे में भी जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। तो हेपेटाइटिस से पीड़ित कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उन्हें हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हर 2 में से 1 व्यक्ति हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है, और ये जो संख्या वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश में भी हेपेटाइटिस से जुड़े मामले सामने आते हैं, पर उतने नहीं जितने अमेरिका में है। अब मैं बात करूंगी कुछ खास चीजों की जिनके बारे में बात होनी चाहिए। और अभी 15 मई को हेपेटाइटिस पैनिक हाइपेटाइटिस जागरूकता दिवस मनाया गया था और आज यानी कि 28 जुलाई को हाइपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। हाइपेटाइटिस ए एक अत्यधिक संक्रमण करने वाला आम तौर पर अल्पकालिक यकृत संक्रमण की बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूषित भोजन और पानी की वजह से फैलती है दूसरे में, और भाई टीकाकरण ही एक तरीका है जो इसको रोक सकता है। ठीक है, तो हमें जो है खास तौर पे उन व्यक्तियों की सुरक्षा करनी है जो हाइपेटाइटिस ए की दर जो है 30 से 39 साल के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो इनको हमें कहीं ना कहीं बचाना है। और इनके शरीर में जो वैक्सीन है वो भी इजीली काम नहीं करती, इनकी बॉडी एंटीबॉडी ऑलरेडी बना चुकी होती है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की, जो कि दुनिया में सबसे आम और गंभीर बीमारी मानी जाती है और ब्लड से इसका संक्रमण होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये एक प्रकार से लीवर संक्रमण की एक खास तरह की बीमारी है। ये अल्पकालिक होने के साथ साथ भी दीर्घकालिक है क्योंकि इसके वायरस आपके बॉडी में हमेशा रहते हैं। ये आपकी बॉडी में आपके ब्लड, आपके बॉडी के शुक्राणु और आपकी बॉडी में मतलब जितने भी तरल चीजें उन सब में मौजूद हो सकता है इसका वायरस। तो ये संक्रमण सबसे पहले तो हमें अपनी जांच कराना रेगुलर तौर पे बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी रेगुलर जांच नहीं कराएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें ये बीमारी है। हेपेटाइटिस बी जो है बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो बच्चे में माँ से फैलता है, और हालांकि जन्म के तुरंत बाद दिए जाने वाले जो टीके होते हैं वो कुछ ही हफ्तों में इसका जो संक्रमण है वो रोक देते हैं और 100% सुरक्षा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जागरूकता आप लोग के लिए जरूरी है कि बच्चे के जन्म के बाद जो भी इंजेक्शंस लगने होते हैं जो कार्ड बना के सरकार देती है उसको बिल्कुल अपने साथ मतलब आप एक समझ लीजिए कि आप अपने आप को भूल जाइए। 5 साल तक जितने भी इंजेक्शंस लगने हैं, जितनी भी वैक्सीन्स लगनी है, वो कार्ड आपके साथ हमेशा होना चाहिए। आप एक बार अपना आधार कार्ड भूल जाइए कहीं आते जाते समय, लेकिन वो वैक्सीन कार्ड आपको 2-3 साल तक तो नहीं भूलना होता क्योंकि उसमें 2-4 महीने पे ही वैक्सीन लगनी होती है और उसमें हेपेटाइटिस के कई सारी वैक्सीन हैं। तो मेरे तरफ से तो ये जो था मतलब आप लोग को जानकारी वो एक अवेयरनेस के तौर पे थी, और मैं बहुत सारी चीजें इसमें बताना चाहती हूँ जो आपको समझनी है। वो है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो बच्चों में आम है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा। बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। ये एक अगेन लीवर संक्रमण की बीमारी है जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस यानी कि HCV से होती है, और ये रक्त के संपर्क से ही फैलती है इंजेक्शंस या इंजेक्टेबल के माध्यम से। और कहते हैं कि ये बीमारी जो है वो उपकरणों के साझा करने से भी फैल जाती है। कुछ लोगों के लिए हेपेटाइटिस सी एक अल्पकालिक बीमारी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यानी कि 80% लोगों के लिए दीर्घकालिक बीमारी है क्योंकि उनकी बॉडी में ये वायरस हमेशा रहता है। इलाज की बात करें तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी के परिणाम स्वरूप साइरोसिस, लीवर कैंसर और मृत्यु भी हो सकती है। तो इतना हल्के में मत लीजिएगा कि हेपेटाइटिस बीमारी आ रही है ऐसे ही है, नहीं। अगर आपने इसको हल्के में लिया तो आपके शरीर में ये अपना घर बना लेगी और आने वाले समय में आपका शरीर जो है इसका मतलब कह सकते हैं शिकार हो सकता है। ठीक है, तो ये तो कुछ खास जानकारी हुई जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़े से आंकड़े आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ जिनकी बात काफी देर से सोच रही थी बताऊंगी। आंकड़े सुन के आपको थोड़ा सा और गंभीरता महसूस होगी इस बीमारी को लेके, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आंकड़ों के बारे में डिस्कशन करूंगी। लेकिन तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
5: वापस से आप सभी का स्वागत है विज्ञान शाला में। और आपको बता दूं कि मैंने आंकड़े बताने की आपको बात कही थी, और देखिए चलते चलते कुछ ऐसी चीजें भी जान लेनी चाहिए जिनके बारे में हमें ना पता हो। तो अगर HCV हेपेटाइटिस है आपको, तो ये ना तो भोजन, ना पानी या मच्छरों के माध्यम से नहीं फैलता, बल्कि ये आपके जो कहते हैं ना पीड़ित लोग होते हैं जिनको ये बीमारी होती है, वो खास तौर पे अपने जो कहते हैं ना संक्रमण को रोक सकते हैं, वो भी एंटी स्टेज जो डिसीज से जुड़ी जो वैक्सीन होती है उनको लेकर। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और जो लक्षण की बात करें, तो 2 से 12 दिन के अंदर हेपेटाइटिस के लक्षण आपको दिख जाते हैं। ज्यादातर लक्षण यही है कि आपको भूख नहीं लगती, हल्का बुखार रहता है, और ये त्वचा में पीलापन आ जाता है आपके, क्योंकि ये लीवर की डिजीज है तो पीलापन जरूर आएगा। पीलिया भी आपका इसी लीवर से होने वाली बीमारी है, लेकिन हेपेटाइटिस नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ आंकड़े जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2022 के दौरान लगभग HCV के जो आंकड़े थे 93,805 आए थे, और अगर 2022 की बात करें तो 67,400 तीव्र HCV के संक्रमण थे, जिनमें 4,848 मामले नए थे। पुराने जो थे वो थे 67,400। अब मैं बात करना चाहूंगी, पुरानी HCV संक्रमण 2 आयु समूहों में सबसे अधिक होता है, एक तो 25 से 45 वर्ष और दूसरा है 55 से 70 वर्ष। और अगर मैं बात करूँ 30 से 39 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों की, तो इसकी दर इसमें सबसे अधिक होती है, यानी कि तीव्र HCV फैलता है, यानी कि जो हेपेटाइटिस HCV है वो तेज फैलता है। ठीक है, 2013 से 2020 के बीच की बात करें तो तीव्र HCV संक्रमणों की संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है। फिर 2022 में लगातार एक दशक से अधिक समय तक वार्षिक वृद्धि के बाद पहली बार एक HCV संक्रमण की अनुमानित संख्या में गिरावट आई, लेकिन फिर भी 67,400 मामले अपनी उच्च स्थिति पर बने रहे। हालांकि 2022 में तीव्र HCV से जो मामलों की संख्या है 2015 की तुलना में दोगुनी ही थी अभी। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगी क्रोनिक HCV की, जो कि 65% जो है पुरुषों में पाई जाती है, और गैर हेपेटाइटिस या गैर हैप्पी नेक जो अमेरिकी भारतीय या जिनको बोलते हैं अलास्का मूल निवासी, इन व्यक्तियों में जो क्रोनिक HCV मामले हैं वो उनका दर जो है 2022 में काफी अधिक था। अब एक्यूट HCV की बात करें पुरुषों में, तो 30 से 39 वर्ष की आयु में होता है, ये जो है AN व्यक्तियों में ज्यादा, NRI व्यक्तियों में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये बाहरी देश से आते हैं। तो सबसे पहले तो 2022 के हेपेटाइटिस की जो संख्या है उसमें 12,717 मौतें भी हुई थी। 2022 में HCV से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई पहले की तुलना में, लेकिन मौतें इतनी हुई थी। तो ये डराने वाले आंकड़े हैं, इन सबसे हमें कहीं ना कहीं समझना है कि ये बीमारी किस हद तक हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपसे यही कहूंगी कि आप लोग को जो चाहे आपका TT वायरस हो, चाहे G वायरस हो, चाहे F वायरस हो, ये भले कॉमन नहीं है, दिखते नहीं है, इनके लिए भी आपको बचाव कार्य करने हैं, और हमें अपने शरीर को बचाने के लिए जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा दी जाती है उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून की बात हम लोग फिर कभी करेंगे, लेकिन हाँ मैं आपसे ये बताना चाहूंगी, शराब से प्रेरित जो हेपेटाइटिस है उससे तो हम बच सकते हैं। तो कम से कम आप लोग आसपास जो भी इंसान शराब का सेवन कर रहा है उसे जरूर बताएं कि आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, आपका लीवर फेल हो सकता है। लीवर फेल होने का मतलब ही यही है कि आपको हेपेटाइटिस हो गया। तो आप बस अपना ध्यान रखिए, जो भी निर्देश है उनका फॉलो करिए, और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना ध्यान रखिए और जागरूकता अपने तक मत रखिए, लोगों को भी बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना रेडियो स्टेशन गैंसली 89.6 FM सुनते रहिए। आप सुन रहे थे विज्ञानशाला आरजे बिना के साथ।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84। 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88408123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिले आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
9: डिलीशियस
10: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
9: और क्या क्या है खास?
10: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
9: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
11: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
12: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
12: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
12: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
13: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
14: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ओआरएस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

भरत से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है और गोंडा मैसेज मचा रहा, लेकिन आज बीना वाला नहीं, आज मैं हूँ आप सभी के साथ। आपसे ढेर सारी बातें करते हैं, मुलाकात करते हैं इस प्यारे से नगमे के बाद। सुनते रहिए और रेडियो गाना 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल इस नगमे को आप करिए एंजॉय।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। और जी धर्मेश त्रिपाठी जी, माजरत चाहूँगा मैं भाई, स्वागत है आज जी बीना जी की जगह अब आपको लिखना पड़ेगा स्वागत है मनु का। आपकी आवाज़ का इंतज़ार था, महफिल तो कब से सज चुकी थी, बस आपकी आवाज़ के आने का इंतज़ार था। जी हाँ, लेकिन अफसोस कि आज आपको हमारी आवाज़ से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, बाहर एक गज़ल में आपकी बीना जी आपको ज़रूर मिलेंगी। और न दुनिया के लिए लिखते, न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, क्या बात है। आज प्रेम कथा का प्रसंग है, मतलब लव स्टोरी सुनाई जाती है आपको, और आपने शुरुआत बहुत प्यारी सी कर दी कि अगर गालिब जिंदा होते तो आपके लिए लिखते। जी हाँ बिल्कुल, और गालिब की जगह कोई नया शायर आएगा और आपके कुछ कर्म ऐसे होंगे जो आप छोड़ जाएंगे, आपके पदचिन्ह छोड़ जाएंगे। तो ज़रूर हम सभी में से बहुत कम लोगों को पता है कि कौन से लोग इतिहास बनाने वाले हैं। हम सभी ये जानते हैं कि हमको 10th class तक इतिहास पढ़ना है, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इतिहास बना कर जाएंगे। कहा जाता है कि कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। और हिंदी कविता तो कहती है कि लीक लीक तीन ही चलें, कायर कूत कपूत, बिना लीक तीन ही चलें, शायर सिंह सपूत। दूसरों के बनाए गए रास्ते पर तीन लोग चलते हैं, कायर अर्थात डरपोक, कूत अर्थात कुत्ता, कपूत अर्थात बुरा बेटा। और जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं वे तीन लोग होते हैं, वो होते हैं शायर, सिंह शेर कभी दूसरों के बनाए गए रास्ते पर नहीं चलता, वो सपूत अच्छे बेटे। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते एक पोम हमको पढ़ने को मिली, द रोड नॉट टेकन, और एक अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, उनके द्वारा लिखी गई एक कविता। चूंकि आज लव स्टोरी का दिन है तो जरा हम अपने ही जीवन से प्यार करने वाली कुछ बातें करेंगे और उसके बाद स्टोरी पर आएंगे। तो जो कवि है वो एक रास्ते पर जा रहा है और एक रास्ता आगे जाकर वो डाइवर्स हो जाता है दो जगह पर, एक बाएं और एक दाएं। उन दो रास्तों को कवियों, उन दोनों रास्तों को पोएट देखता है और ये सोचता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू वॉक ऑन द बोथ रोड्स, ये मेरे लिए असंभव है कि मैं इन दोनों रास्तों पर चलूं। इट इज माई कंपल्सन टू चूज वन, किसी एक को चुनना मेरी मजबूरी है, विवशता है, चुनना ही पड़ेगा। अब वो दोनों रास्तों को जब देखते हैं तो रास्तों को देखने के बाद देखते हैं कि एक रास्ता ऐसा है जिस पर पत्ते ज्यादा हैं। पत्ते ज्यादा हैं इसका मतलब इस पर कम लोग गए, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा कठिन है। और दूसरा रास्ता वो देखते हैं जिस पर पत्ते कम है, अर्थात तो उस पर ज्यादा लोग गए क्योंकि वो रास्ता आसान था। कवि कुछ देर के लिए ठिठकता है और फिर बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट के बाद, उहापोह के बाद ये तय कर लेते हैं वो कि मुझको उस रास्ते पर चलना है जिस पर पत्ते ज्यादा हैं, अर्थात जिस पर कम लोग गए उस रास्ते पर चलना है।
तो कभी उस रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वो ठिठकते हैं, रुकते हैं और सोचते हैं कहीं कहीं ऐसा तो नहीं मैंने आत्मविश्वास में आकर के कठिन रास्ते का चुनाव कर लिया हो और शायद मैं इस मंजिल को मुकम्मल न कर पाऊँ, पहुँच न पाऊँ वहाँ तक। लेकिन फिर वो सोचते हैं लेकिन अब इस बारे में सोचना बेकार है कि हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि जिस रास्ते को हमने चुन लिया है, उसका चयन किया है, उस रास्ते पर बढ़ते रहना ही बुद्धिमानी है। बिकॉज चेंजिंग ऑफ पाथ कैन नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। रास्ता बदल देना कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि मुश्किलें तो हर रास्ते पर आपका इंतजार करती हैं और वो चल पड़ते हैं। उनको पता है कि रास्ता कठिन है, लेकिन उनको पता है कि कठिन रास्तों पर चलने का अपना एक अलग मज़ा है। संघर्ष कभी अपना एक जुनून है। कुछ लोग बहुत एडवेंचरस लाइफ जीते हैं, बहुत साहसिक कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी लाइफ जीना कोई जीना नहीं है। वसीम रिजवी साहब लिखते हैं, सांस का मतलब जान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं है। तो सिंपली ब्रीथिंग इज नॉट लाइफ। साधारण रूप से सांस लेते रहना ही जिंदगी नहीं है, जिंदगी कुछ और भी है। चूँकि आज आरजे बीना जी आपको सुनाती हैं प्रेम कहानी, तो हम भी आपको सुनाएंगे कुछ प्रेम कहानी ही। हो सकता है हमारी प्रेम कहानी थोड़ी सी अध्यात्म से जुड़ी हुई हो, लेकिन रहेगी वो प्रेम कहानी ही। और प्यार की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा तब होती है जब हम सामने वाले में ईश्वर को देख लेते हैं। आप सभी ने गीत सुना होगा, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। और अगर हम बात करें कुछ ऐसे जोड़ों की जो अपनी मोहब्बत के नाम से ही अमर हो गए, तो कैश का नाम आता है, जिनको हम मजनू के नाम से जानते हैं। किसी शायर ने कहा था कि कमाले इश्क हर शख्स को हासिल नहीं होता, लाखों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। कोई लाख में से एक कोई होता है जो मजनू जैसा निकलता है, नहीं तो नहीं निकलते लोग। तो प्रसंग आता है कि एक बार वो अपने लैला के प्यार में जा रहे थे रेगिस्तान से गुजरते हुए, और एक सज्जन मुसल्ला बिछाकर, मुसल्ला कहते हैं जिस पर हमारे मुस्लिम भाई बैठ करके नमाज पढ़ते हैं उसको मुसल्ला बोलते हैं, तो मुसल्ला बिछाकर वो नमाज पढ़ रहे थे। और कैश अर्थात मजनू ये उनके सामने से गुजर गए। उनकी नमाज खत्म हुई तो उन्होंने मजनू को बुलाते हुए कहा कि अरे काफिर, तुझे पता नहीं है क्या, जब कोई नमाज पढ़ता है तो उसके आगे से नहीं गुजरते। मजनू ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था कि मैं अपने लैला के इश्क में इतना पागल था कि मुझे आप दिखाई नहीं पड़े, वो मेरा जुनून था, और आप अल्लाह की इबादत कर रहे थे और मैं आपको दिख गया। पंक्ति है, सर हो सजदे में मगर दिल में हो दुनिया का ख्याल, अगर ये इबादत है तो फिर अपनी मोहब्बत ही भली। अगर आपका सर मंदिर के सामने झुका हुआ है, सजदा कर रहा है, या आप चर्च में हैं लेकिन ख्यालात दुनिया के चल रहे हैं दिमाग में, तो ऐसी इबादत से मोहब्बत लाख गुना अच्छी होती है। जी हाँ, हम मोहब्बत की और भी बात करेंगे। आपको सुनाते हैं एक ऐसा गीत जिसमें इंसान को अपनी मोहब्बत को लेकर भगवान तक का भरोसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ हो सकता है, लेकिन कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गीत गाया और उस गीत में ये बता दिया कि मोहब्बत करने वाले
वो भगवान पर भी अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ते। मेरी बात का विश्वास आपको तब आएगा जब आप ये गीत सुनेंगे और इस गीत की एक पंक्ति आपके कानों में आएगी जो शायद आखिरी पंक्ति होगी इस स्टैंजे की, और इसके पश्चात आप कहेंगे हाँ ये है मोहब्बत। जी हाँ, हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं, मनु सर जी शुभ संध्या, गुड इवनिंग, आपको भी शुभ संध्या। सोनिया तिवारी जी हैं, हेलो रिवन जी, हाँ आपको भी हेलो। और आइए अब आपको ले चलते हैं मोहब्बत की दुनिया में, आइए और अब देखते हैं कि मोहब्बत की पराकाष्ठा क्या होती है, क्या होता है उसका पैरामाउंट, उसका मोहब्बत का उच्चतम बिंदु क्या है, आइए जानते हैं इस प्यारे से गीत के माध्यम से। सुनते रहिए और रेडियो गणस के 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल रफ़ी साहब का ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए, मोहब्बत के नाम।

अपना ये प्यार मोहब्बत रहने दो कश्ती को।

जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, मंदन नमन और स्वागत। मेरे साथ कैलाश नाथ जी जुड़ चुके हैं मोतिहारी बिहार से। गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या आपको भी। और क्या बात है भाई, गीत पसंद आया आपको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी धर्मेश तिवारी जी, क्या बात कही आपने। और ताबिश खान भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आदाब आपको, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। सीमा कुशवाहा जी हैं, हेलो जी, हेलो आपको जी। और भाई आप बता दीजिए इनको कि कैसे हैं आप लोग। और आशु मिश्रा जी हैं, प्रणाम चरण स्पर्श आपको, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और ऐसा नहीं कि दिन नहीं निकलता या रात नहीं होती, मगर सब अधूरा सा लगता है जब तुमसे दिल की बात नहीं होती। क्या बात है, और इसी दिल की बात को मुकम्मल करने के लिए तो हम आपके साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जी। और जी जब सब भाग गए, जी नहीं, कोई नहीं भागा, सब लोग अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं और भागने की आवश्यकता भी नहीं है। तो बात हम कर रहे हैं कि भाई आज लव स्टोरी का दिन है, आज प्रेम कहानी का दिन है। करवट बदल बदल कर हर एक रात काटती, इंसान जो उसके अपने होते हैं उनसे उम्मीदें उसको ज्यादा हो जाती हैं। किसी शायर का शेर है कि किसी से कोई भी उम्मीद रखना छोड़कर देखो, ये रिश्ते निभाना किस कदर आसान हो जाए। तो रिश्तों की जो आधारशिला है, जो उसकी फाउंडेशन है, जो नींव है, वो अगर ज़रूरत नहीं है और आप हृदय से प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। लेकिन जब रिश्तों की बुनियाद स्वार्थ पर टिकी हो जाती है तो वो रिश्ते थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। करवट बदल बदल कर हर एक रात काट दी, करवट बदल बदल कर हर एक रात काट दी, कच्चे मकान में अब के भी बरसात काट दी, वो सिर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल, वो सिर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल, अफसोस ये है उसने मेरी बात काट दी। हालांकि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, हालांकि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी। देखिए यहाँ पर अगर हम दो मित्र हैं और हमारा एक मित्र बहुत कामयाब हो जाए और मैं अपनी बाइक से रहूँ और उसके साथ, ईश्वर करे सभी लोग कामयाब हों और दो गाड़ियां आगे दो गाड़ियां पीछे, बीच में उसकी गाड़ी, तो ऐसी स्थिति में अगर वो हमको देखेंगे तो 99% संभावना है कि आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका कद धन के मामले में मुझसे बहुत ऊंचा हो गया है। 1% कृष्ण और सुदामा की मित्रता वाली बात नहीं करता मैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हालांकि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी, जब भी हमें चराग मयस्सर ना आ सका, जब भी हमें चराग मयस्सर ना आ सका, सूरज का जिक्र करते हुए रात काट दी। दिल भी लहू लुहान है, आंखें भी हैं उदास, दिल भी लहू लुहान है, आंखें भी हैं उदास, शायद अना ने, अना कहते हैं घमंड को, ईगो को, शायद अना ने लोगों की जज्बात काट दी। वास्तव में जो ईगो होता है, इसे एक शब्द है सिन, SIN, तो आई स्टैंड्स फॉर ईगो, सिन मतलब पाप। जब हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ है या अहम की भावना आती है तो फिर पाप हो जाता है। और एक शब्द है अंग्रेजी का सन, SUN, यू माने आप। जो हम सोचते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले ने किया है, आपने किया है, तो वहां पर ज्ञान का प्रकाश होता है, बादल छटते हैं और इंसान
असलियत को पहचान पाता है। सिन और सन में आई और यू का फर्क है, और इस दुनिया में शायद यही तो एक फर्क है, मैं और तुम। शायद अना ने लोगों की जज्बात काट दी। तो जी हाँ, मैंने मोहब्बत की बात की और आपको एक प्यारा सा गीत सुनाया। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, और कवि ने यहाँ तक कह दिया कि भगवान की नीयत ठीक नहीं। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा नगमा और, क्योंकि आज लव स्टोरी है। एक प्यारा सा गीत सुनने के बाद आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणसलेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

जी मोहब्बत, जिसकी शुरुआत होती है खूबसूरती से, और खूबसूरती जो होती है देखने वालों की आंखों में। कहा जाता है कि अगर इस दुनिया की कोई एक चीज़ खूबसूरत होती तो लोग उसी चीज़ के पीछे पागल होते, लेकिन लोगों का दीवानापन भिन्न भिन्न वस्तुओं के पीछे है, लक्ष्यों के पीछे है, क्योंकि उनकी निगाह में खूबसूरती अलग अलग स्थानों पर है। और जिसे हम अच्छा मानते हैं उसे खूबसूरत मानते हैं। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, मुझे तुम खुदारा, खुदारा मतलब खुदा के वास्ते, मुझे तुम खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी, जो काटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी, नज़र से ज़माने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा, गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब हैं तुम्हारे कि खिलता चमन है, बिखेरो जो जुल्फें तो शर्माए बादल, ये जाहिद भी देखे तो हो जाए पागल, वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, पाकीज़ा मतलब पवित्र, वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। जो बनकर कली मुस्कुराती है अक्सर, जो बनकर कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर, जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गजल के, छुपाया जो चाहे छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए, वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। जी हाँ, इंसान अपनी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत, और मेरा मानना यह है कि पहली मोहब्बत ही इंसान की आखिरी मोहब्बत होती है। किसी ने कहा था कि अगर हमको इस दुनिया का कोई काम दोबारा करना पड़े तो शायद हम पहली मोहब्बत को दोबारा करना चाहेंगे। छुपाया जो चाहे छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए, वो पहली मोहब्बत हो तुम। और इंसान को अपना पहला प्यार और पहला तमाचा हमेशा याद रहता है। और जब मोहब्बत जवान होती है, और ये तब होती है जब दिल से दिल टकराता है। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में एक प्यार भरा नगमा, और जब दिल से दिल टकराता है, बहुत ही प्यारा सा नगमा, ये आप सभी के लिए, आप सभी की मोहब्बत के नाम।

जी हाँ, सबका अपना अपना प्रेम को देखने का नजरिया होता है। कोई मुझसे पूछता है कि आपको किससे प्रेम है, तो मेरा दो उत्तर होता है। पहला उत्तर होता है बचपन और दूसरा उत्तर होता है गांव। मतलब हम लोग शहरों की ओर बढ़कर चले आए और हम सभी ने, जिन लोगों ने गांव का जीवन जिया है, शायद इस आपाधापी में, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास अपने ही लिए वक्त नहीं मिल पाता। हम स्वयं से स्वयं के लिए ही दूर हो चुके हैं। गांव का अगर हम वर्णन करें कि गांव से प्रेम कैसा है, तो मनु वैशाली, एक बहुत ही बाकमाल कवियत्री हैं, उन्होंने लिखा कि होती थी शाम मम्मी कहती थी या बना दूं, बाबा की प्यारी बिट्टी अम्मा का राजा बाबू, आंखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका। ये बचपन आप सभी ने जिया होगा, शाम को मम्मी आओ बाल झाड़ दे बेटियों का, आंखों में मोटा सा काजल माथे पे एक टीका जिस पर बिंदी, आंखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका, कहती थी खेलाओ देकर के एक सिक्का, तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, जाएं जहां भी अम्मा अम्मा न छोड़ते थे, लड़ती थी प्यार में एक बछिया वो नीम नीचे, पूछो न नीम की उन छावों में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो वैसे गांवों में क्या रखा है। लोग पूछते हैं गांव जाना है, क्यों जाना है, यहाँ छोड़कर, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर गांव की तरफ। देखिए गांव का वर्णन है। अब देखिए शाम का वर्णन किया और कहा कि दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया। शाम के समय में सूरज डूबा, दरवाजे पर, द्वार पर एक खटिया बिछी। दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया, बारह खड़ी पहाड़े, बारह खड़ी पहाड़े आप सबको याद होंगे, कक्का किक्की कुकू के कोको कंका याद होगा, बारह खड़ी पहाड़े भर पेज लेक हिंदी, सुनती सुनते थे पहले सीधी फिर सौ से उल्टी गिनती। एक से सौ तक सुनाओ, अच्छा आप सौ से एक तक सुनाओ। सुनते थे पहले सीधी फिर सौ से उल्टी गिनती, तब कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, कुछ अंग्रेजी के शब्द जब तक उसका मतलब क्या होता है, और कुछ पहेलियां। कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, बताओ क्या ऐसे प्रश्न होते थे। अब तो वो परंपराएं समाप्त होने के कगार पर हैं कि लोग गांव, जब गर्मी की छुट्टियां होती थी लोग अपने मामा के नाना के घर जाते थे। अब साहब आज के दौर में कहाँ छुट्टी हुई है, समर का तो समर का वेकेशन है, तो उसके साथ हॉलीडे होमवर्क भी मिला हुआ है जो बच्चों को करना है। तब कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, फिर अपने नींद के या फिर भूख के बहाने, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम। याद कीजिएगा छोटे बच्चे बड़ों की चप्पल पहन लेते हैं, आपने भी पहनी होगी, हमने भी पहनी है। चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पांवों में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो ऐसे
गांवों में क्या रखा है, मोहब्बत गांव से। प्रेम कहानियां तो हम सुनते रहेंगे, लेकिन जरा अपनी भी तो कहानी सुन लें। वो दोपहर की नींदें, वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी, अम्मा के चोर डाकू, भगवान राजा रानी। कहानियां सुनाई जाती थी बच्चों को ताकि संस्कार विकसित हो सके। आजकल के यहाँ

खाना खिलाना है, कुछ भी, तो लो मोबाइल ले लो। वो चुप हो गई बेटा या बेटी, माँ अपना काम कर रही है। ये यहाँ की परंपरा है। गांवों में क्या होता था, वो दोपहर की नींद है, वो रात की कहानी, अम्मा के चोर डाकू, भगवान राजा रानी, भगवान की कहानी, चोर की, डाकू की कहानी। चलता था आना जाना टोले में घर किसी भी, हर घर में आना जाना। चलता था आना जाना टोले में घर किसी भी, होते न थे पड़ोसी, होती थी चाची भाभी। अब देखिए, महानगरों में तो आपके बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है, शायद आप उसका नाम नहीं जानते होंगे। गाँव में अभी भी निकल जाइए तो दो गाँव के पहले पूछ लीजिए कि भैया वो राम खिलावन का घर कहाँ है, आज शादी है, तो लोग बताएंगे अच्छा अच्छा भैया इधर से उधर, बस 10 कदम की दूरी पर है। हमसे कोई पूछ ले कि आवास विकास कॉलोनी में ये मकान नंबर कहाँ है, तुमको सोचना पड़ेगा ये कहाँ है। मतलब वहाँ अपनापन है, पड़ोसी नहीं होते थे, चाची भाभी होती थी। होते न थे पड़ोसी, होती थी चाची भाभी, जाते थे देखने जब बोरिंग से बहता पानी। ये खेत मेड़ कुइया, ये बाजरा वो धानी, कंधे पे जो पिता पिता के, कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा। क्या क्या बताएं ऐसे गांवों में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गांवों में क्या रखा है, गांव में क्या रखा है ये गांव वाले ही जानते हैं, या जिन्होंने गांव का अनुभव किया है। जी हाँ, कैलाशनाथ जी कहते हैं सुपर सांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई। कैलाशनाथ जी हमको सुनते हैं मोतिहारी विहार से, और उनका पसंदीदा गीत ये है। नागेश्वर धाकर जी हैं, गुड इवनिंग सर जी, शुभ संध्या नागेश्वर जी आपको। आज आज मनु सर जी ड्यूटी कैसे लग गई क्या बताएं साहब। और अब जी हाँ, अजीब सियूप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, अजीब सियूप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में। महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर। अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं। मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है। तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, अब फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ। और आज हमारे पास भाई पहली फरमाइश जो हमारे पास है गीत आपके नाम से, फरमाइश है हमारे पास श्री कैलाशनाथ जी, जो हमको सुनते हैं मोतिहारी विहार से। देखते हैं क्या प्यारी सी फरमाइश की है हमारे श्री कैलाशनाथ जी ने। जी हाँ, और ये फरमाइश है जुगनी जुगनी, क्या बात है भाई, फिल्म बादल का ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ, आप चलते हैं, बढ़ते हैं आपकी अगली फरमाइश की ओर। और ये फरमाइश है भाई सोनिया जी की, और उनको सुनना है ये गिला है आपकी निगाहों का। जी हाँ, आइए फरमाइश पूरी करते हैं सोनिया तिवारी जी की।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

यहाँ बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया भाई, सोनिया जी की फरमाइश पर चलते हैं। अनन्या मिश्रा जी की फरमाइश हमारे पास आ चुकी है, नजर नजर में हाले दिल का पता चलता है। जी हाँ, ये तो फरमाइश करते हैं अपनी बहुत ही प्यारी श्रोता अनन्या मिश्रा जी की, ये प्यारी सी फरमाइश आप सभी के लिए।

जी हाँ, जो इंसान की बातें नहीं कह पाती वो उसकी निगाहें बोल जाती हैं। बहुत ही प्यारा गीत हमने एंजॉय किया अनन्या जी की फरमाइश पर। अब बढ़ते हैं भाई, हमारी आज की अगली फरमाइश धर्मेश त्रिपाठी जी की है और ये है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। कुछ कुछ मेरे ऊपर चलता हुआ ये गीत है। कहीं कहीं इंसान वास्तव में नहीं देर करता, हो जाती है।

जी हाँ, इंसान कहाँ देर करना चाहता है, देर हो जाती है। बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया भाई। और अब चलते हैं भाई हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता मुमताज़, मतलब ही होता है खूबसूरत, और उनका उनके द्वारा भेजा गया जो गीत है वो भी बहुत खूबसूरत है। और गीत के बोल हैं, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, क्या बात है, दिल रोया के अकबर आई। बहुत ही प्यारा सा गीत, बहुत ही प्यारे से श्रोता की फरमाइश पर।

रंगीन हो और साथ आपका हो तो क्या बात है। और आपके साथ मौजूद है आरजे बीना आपकी फरमाइश प्ले करने के लिए। तो बिल्कुल कहीं मत हिलिएगा, कहीं मत जाइएगा, लगातार अपनी फरमाइश सुनने के लिए तैयार रहिएगा। और अभी हम सुनने जा रहे हैं के जी की फरमाइश का गाना, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही कप चाय पिलाता रहूं। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी लाइन बैठती। तो चलिए हम चाय पीते हैं इस गाने के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन स्टेडियम।

बहुत ही बेहतरीन सी फरमाइश सुनने के बाद अब बारी है राजेश कुमार की फरमाइश सुनने की। तालों में नैनी ताल, बाकी सब तलैया। मतलब हमारे यहाँ तो ताल को भी तलैया ही बोला जाता है, ताल को भी ताली बोला जाता है। मतलब ये सब क्या बात होती है, आप लोग इस नए नए नाम बता के, मतलब ये कभी का अभिप्राय मुझे नहीं आजकल समझ में आता है। तो चलिए हम सुनते हैं राजेश की फरमाइश का गाना, ताल तलैया वाला। और फिलहाल हमारे यहाँ तो ताल ही होता है, इसको तलैया बोलना चाहे तो तलैया बोलिए या ताल बोलिए, देयर इज कॉमन ताल इन गोंडा। तो आज की बारिश ने तो मन खुश कर दिया, और चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आज से बिना डिस्कस।

अच्छे से गाने के बाद मुझे लगता है एक और बेहतरीन गाना हो ही जाना चाहिए, और वो मतलब क्या क्या लिखते रहते हैं, हमें को तो भाषा ही समझ में आती, क्योंकि मेरे को भोजपुरी और अवधी भाषा सिर्फ एक दिन समझ में आती है, वो है आपका थर्सडे, जिस दिन मैं और आप थर्स्टी होते हैं अपनी अवधी भाषा के लिए। और चलिए अगली भाषा से अगला गाना सुनते हैं। आशु जी की फरमाइश का गाना है ये, दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। वाह क्या फरमाइश है।

भाई मोहब्बत पसंद आनी चाहिए। बात समझ आ गई कवि की, और अगली कवि की बात सुनने के लिए हम सुनेंगे महेंद्र दिपेन, राजस्थान से हैं, इनकी फरमाइश का गाना। तो महेंद्र जी चलिए सुनते हैं कौन सा गाना आपको सुनना है। तेरे होठों में तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ, ओ मुझे लगा क्या मतलब सावन का महीना चल रहा है, चूड़ियाँ तो पहनने का टाइम ही है, चलिए पहनते हैं आप लोग के साथ हरी हरी चूड़ियाँ। मैं भी हरी चूड़ियों की बहुत शौकीन हूँ तो मैं भी पहनूंगी, आप भी पहनिएगा, सावन की शुरुआत होने को है।

0: बड़ा ही प्यारा सा गाना सुन लिया हम लोगों ने, और अब सुनने के बाद अगले गाने की बारी है। मैं देर करता नहीं देर हो जाती है।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें।
0: बड़ा प्यारा सा गाना है।

शेयर करने का तो एक ही मौसम है, वो है बारिश का मौसम, क्योंकि बारिश में फीलिंग्स जो है ना वो बह के निकल पड़ती है। तो चलिए सुनते हैं फीलिंग वाला गाना। अभिराज पांडे NCR दिल्ली से फरमाइश करते हैं, कभी जो बादल बरसे। लेट्स एंजॉय द ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: चलिए रुक करते हैं अगली फरमाइश का, मुस्तफ़ा की फरमाइश से। मुस्तफ़ा सुन रहे हैं हमें सऊदी से। गाना है ओ हरे दुपट्टे वाले। क्या बात है, सीधी
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।
2: सीधी सादी,
0: ये नहीं पता है कि हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोली वाली होती है, मुझे ये पता है कि
2: आज ओ हरे दुपट्टे वाली।
0: आपकी किस्मत ज्यादा डिसाइड करेगी कि आपकी वाली सीधी सादी भोली वाली है या नहीं।

0: सो बहुत ही बेहतरीन सा गाना सुनने के बाद फन हम लोग इस जो फनकारी का जो शाम चल रही है, मतलब एक से एक फनकारों की आवाज़ सुन रहे हैं हम लोग, एक से एक सिंगर को फील कर पा रहे हैं, नए पुराने सभी को। तो अभी सुनते हैं गाना हम लोग उदालक की फरमाइश का, आखिर तुम्हें आना है, पर ज़रा देर लगेगी क्योंकि बारिश हो रही थी, रास्ते में जाम था, इसलिए देर लगेगी।
1: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
2: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तू भी ना आती।

बारिश का महीना है, ज़रा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी, तो कोई बात नहीं, इसको बार बार बताने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग अगले गाने की ओर रुख करते हैं, और अगला गाना है हमारी लिसनर जिनका नाम है हमारी प्रीति जी, तो चलिए सुनते हैं इनकी फरमाइश का गाना। गाना बड़ा ही प्यारा है, आना जाना लगा रहेगा, एंड आपको पता है कि सुख दुख दोनों ज़िंदगी में आने जाने वाले मतलब मेहमान है, तो दोनों का आना जाना लगा रहे तो ही सही है, कोई चीज़ स्थिर ना रहे जिससे परेशान ना हो ज़्यादा बाद में, थोड़ा सुख थोड़ा सुख, थोड़ा दुख ऐसे मतलब चलता रहे, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना, इस बात से आप लोग भी एग्री करते हैं। तो चलिए आगे इस फरमाइश को कंटिन्यू रखते हैं, बारिश के मौसम को इन्जॉय करते हैं।

0: सो ये फरमाइश हम लोग कुछ ही देर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए चलिए सुनते हैं प्रसार भारती से आपके पसंदीदा न्यूज
1: मालिका, जिसके अंतर्गत आपने ये खूबसूरत से फिल्मी गीतों का आज आनंद लिया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का।

0: तो फरमाइश कंटिन्यू होगी, लेकिन उससे पहले समाचार।
1: श्रोताओं, आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और

0: पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। FIR वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

0: हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
1: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के द्वारा युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम्पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की पहली तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी।

तो अधूरी फरमाइश पूरी करते हुए चलिए अगली फरमाइश की ओर रुख करते हैं। एंड यस, हम लोगों ने सुन लिया है प्रीति जी की फरमाइश का गाना, आना जाना लगा रहेगा और सुख आएगा दुख जाएगा। एंड चलिए अगला गाना सुनते हैं। धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पे, चाहा है तुझे चाहेंगे। ओह क्या बात है, बड़ा प्यारा सा गाना है। चलिए इंजॉय करते हैं इस प्यारे से गाने को।

के यहाँ तो कोई इतने आराम से ये नहीं कहता कि तू झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है, लेकिन हम लोग के यहाँ मतलब जब कोई झूठ बोलने की बात होती है तो लड़ झगड़ के तुम झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो, पर इतना सुरीले अंदाज में कोई कह सकता है, ये तो आज मुझे पता चला। तो चलिए सुनते हैं तबिश की फरमाइश पे गाना एक निगाह दिल चुरा ले गया कोई। क्या बात है, कैसे कोई दिल चुरा लेता निगाहों से, मुझे नहीं पता, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों के मालिक हो चुके होते हम लोग दिल चुरा चुरा के, क्योंकि दिल का बड़ा बिजनेस है दुनिया में। तो फिलहाल आंखों से दिल चुराना अगर संभव होता तो सबके पास एक एक एक्स्ट्रा दिल तो कतई होता। तो चलिए सुनते हैं।

AI जनरेटेड गानों का भी क्या कहना, और ये गाना AI जनरेटेड है और आवाज़ सुन के मतलब आप भी थोड़ा सा चौंक सकते हैं, लेकिन क्या बात है, बड़े अच्छे गाने चुन चुन के और ऊपर से लिंक भी आप लोग भेजते हैं, क्या बात है। तो चलिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनते हैं आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, शशि सिंह की फरमाइश।

कोई चंचल हसीना बन जाए या कोई अपने रूप में चार चांद लगाए, लेकिन हर किसी के लिए उसकी वाली उसकी हसीना होती है। तो चलिए सुनते अगली फरमाइश हमारे प्यारे से लिसनर जिनका नाम है सुरेंद्र, सुनना चाहते हैं। इश्क में एक पल भी जुदाई लगती है एक साल की, क्या बात।

0: तो इस शो
1: इस
0: की
1: चैनल
0: आखिरी फरमाइश है अनिल जी की, और अनिल जी सुनना चाहते हैं गाना इस रंग बदलती दुनिया में, और ऑलमोस्ट फरमाइशें प्ले हो चुकी हैं, जिनकी बची है उनकी गाने मैं आगे ले लूँगी। फ़िलहाल ये गाने सुन लीजिए आप लोग, और इस रंग बदलती दुनिया में क्या बात है।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों की। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

जिसको जिसको आंसू बहाना याद है उन सभी के साथ आज बहारे गजल में आरजे बीना का इस्तकबाल है। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है इस प्यारी सी शाम में। और मुझे पता है कि इस खूबसूरत सी शाम में हम एक दूसरे का साथ ऐसे ही देते रहेंगे और कहीं नहीं जाने वाले। सो संध्या तो ढल चुकी है पर शाम का आगाज़ है। तूने बुलाया उन तारों को जिसे चांदनी का इंतज़ार है। कोई रात को आए कोई दिन को आए पर चांद को चांदनी का इंतज़ार है। चांद को चांदनी का इंतज़ार है। कोई कह गया कि तेरे बिन अधूरी हैं रातें। कोई कह गया तेरे बिन अधूरी हैं रातें। मैंने कहा यादों का बसेरा है तो कहाँ गुमनाम है। वो शाम फिर से आगाज़ है। बारी गज़ल में आज कई दिनों बाद आरजे बीना को सुन के आपके मन में एक सवाल होगा कि आरजे बीना शाम को कहते हैं ना कि बदलाव, एक लिबास पहन के कब तक चलेगा मुसाफिर, एक लिबास पहन के कब तक चलेगा मुसाफिर, कभी तो तबीयत से खुद को निहारा कर। जाने कब से चलता आ रहा है, सदियों से मन के भाव नहीं बदले तूने। चल कुछ देर बैठ, खुद को निहार, अपनी रंगत बदल, मुसाफिर फिर चल। तराजू झूठ का लेकर के उसमें सच को तौलना, बात वाजिब तो नहीं मुसलसल झूठ बोलना। क्या यही लिबास बना लिया है मुसाफिर तूने, क्यों ना बैठ जा एक जगह और बदल ले अपना लिबास। जिक्र खुद का कैसे करें जिन्हें ये शौक है ही नहीं, छुपा कर राज अपने सभी, दूसरे के अल्फाज बोलने, छोड़ सबके अल्फाज, अपना अपना अंदाज, बदल अपना लिबास, बदल अपना लिबास। जैसे जैसे ये दिन गुजरने लगे, बीते हुए दिन भी अच्छे लगने लगे। जैसे जैसे ये दिन गुजरने लगे कि ये बीते हुए दिन भी अच्छे लगने लगे। राहों में पत्थरों ने ये क्या कर दिया, खा के ठोकर भी सभी संभलने लगे। दुआएं दोस्तों की हैं लग रही शायद, दुआएं दोस्तों की हैं लग रही शायद, दिल अपने भी अब बदलने लगे।

मानिंद तिनकों के हम बस बिखरने लगे, जैसे जैसे ये दिन गुजरने लगे, हाय बीते हुए दिन भी बेहतरीन लगने लगे, बीते हुए दिन भी बेहतरीन लगने लगे।

सुकून दौलत से नहीं, शायद किस्मत से मिलता है। सुकून दौलत से नहीं, शायद किस्मत से मिलता है। तभी तो महलों में बैठे लोग मुझे बेचैन दिखते हैं। महलों में बैठे लोग मुझे बेचैन दिखते हैं। कल देखा था स्टेशन पे एक मासूम सी बच्ची को बेफिक्र गुनगुनाते हुए। कल देखा था स्टेशन पर एक मासूम सी बच्ची को बेफिक्र गुनगुनाते हुए। क्या चैन के बसेरे ऐसे भीड़ों में मिलते हैं? क्या चैन के बसेरे ऐसे भीड़ों में मिलते हैं? जिंदगी की किताब का भाई हर पन्ना खास है। जिंदगी की किताब का भाई हर पन्ना खास है। कहीं खुशी की धूप तो कहीं यादों की बरसात है। कहीं खुशियों की धूप तो कहीं यादों की बरसात है। जो मिला उसे मुस्कुरा कर अपना लीजिए। जो मिला उसे मुस्कुरा कर अपना लीजिए ना, क्योंकि हर लम्हा अपने आप में एक खास गज़ल का ही तो आगाज़ है। हाँ, गज़ल का आगाज़। गज़ल सुनते परेशान मत हो, ऐसी भी गज़लें हैं जिनको सुन के सुकून मिलता है। हाँ, शायद शाम के उन गानों में नहीं, शायद सुबह की उन अजानों में नहीं। हाँ, सुकून मिलता है उन गज़लों को सुन के जो दिल के घाव भरती हैं। हाँ, भरती नहीं है, सिलती हैं, फिर सिल के उन्हें सहलाती हैं। जी हाँ, वो गज़लें जो हमें बार बार उनकी याद दिलाती हैं। जी, उन्हीं की याद दिलाती हैं जिनकी यादों में घंटों हमने चाय की टपरी पे कई बरसातें बिता दी। बरसातें ही नहीं बिताई, कई धूप के मौसम बिता दिए। कई चेहरे देख के भुला दिए। पर सच कहूँ तो सच तो यही है कि गज़लें घाव भरती हैं। गज़लें घाव भरती हैं। आज रेडियो की आवाज़ को थोड़ा और बढ़ाइए। आज रेडियो की आवाज़ को थोड़ा और बढ़ाइए। आरजे बिना शाम को नहीं आइए, रात में आइए, ज़रा सुनते जाइए। दिल को शांत करने के लिए थोड़ा दिल को समझाइए। दिल को शांत करने के लिए ज़रा दिल को समझाइए और बताइए कि आरजे मनु की जगह आज आरजे बीना से काम चलाइए। हाँ, आज आरजे मनु की जगह आरजे बीना से काम चलाइए। काम चलाने से याद आया कि आरजे बीना की तो आदत है, आते ही अपनी पसंद के कुछ गाने आपको सुना के आपको अपने जैसा बनाना और फिर धीरे धीरे आपका नाम पुकारना। फिलहाल आज थोड़ा सा तारीख को याद करते जाइए, क्योंकि आज आरजे मनु की जगह आरजे बीना आई हैं, ये बात दिल को समझाते जाइए।

0: मेरी गजलों की प्लेलिस्ट जरा अलग है, थोड़ी नई और थोड़ी पुरानी, पर आपके दिल को भाने वाली है। अगर पसंद आए तो दिल के इशारे चैट रूम में दिखाइए, अपनी जो कलम है थोड़ा उसे भी चलाइए। शाम होने का मतलब सुनते जाना नहीं है, शाम होते ही थोड़ा मन को भी समझाइए। चुपचाप देखता हूँ,
1: रिश्तों के सारे मंजर
0: चुपचाप देखता हूँ, हाथों में सबके खंजर, हाथों में सबके खंजर, चुपचाप देखता हूँ
1: रिश्तों के सारे मंजर।

खून पसीने की चमक है, किस्मत की बाजियों पर इख्तियार नहीं है। सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। कोई था जिसको यार करके गा रहे हैं हम, आँखों में किसी का अब इंतजार नहीं है।

इसमें किसी के नाम की हिचकियाँ भी बहुत थीं। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे छल पड़े, कुछ देर के लिए माथे

चल पड़े तो चलते ही रहें। आज की शाम ना सिर्फ आगोशी की शाम है, बल्कि उन एहसासों को फिर से जमा करने की शाम है जिनको मैंने कई दिनों पहले शायद किताबों में दबा दिया था। शुभ संध्या, धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं, गज़ल की दुनिया में स्वागत है। छोड़ने और बिछड़ने लगा रहता है, छोड़ना और बिछड़ना लगा रहता है। हम तो मुसाफिर हैं इस धरती पर, किस्मत हम भी आजमाने आए हैं। देखते हैं किसको क्या मिला, मुकद्दर की बात। यहाँ दोस्ती मिलती है कि नफरत, ये तो कदर करने की बात है। रहा गर्दिशों में मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में मेरे इश्क का सितारा। शुभ संध्या मुशीब, शुभ संध्या सविता जी, सभी का स्वागत। अनोखी शर्मा, शुभ संध्या। जो कह के गया कि मैं आऊंगा कल, वो आता नहीं। जो कह के गया कि आऊंगा कल, वो आता नहीं। वादे करने वाला वादे निभाता नहीं। साथ बैठ के जीने मरने के बड़े सपने देखे थे, साथ बैठ के जीने मरने के बड़े सपने देखे थे, पर खुली आंखों का कोई सपना सुहाता नहीं। पर खुली आंखों का कोई सपना सुहाता नहीं। चलते चलते शाम हो गई पर वो नहीं आया। चलते चलते शाम हो गई पर वो नहीं आया। अब दूर तलक कुछ नजर आता नहीं। अब दूर तलक कुछ नजर आता नहीं। सोचा पूछ लें किसी से अपना मुकाम। सोचा पूछ लें किसी से अपना मुकाम। पर बताने भी कोई आता नहीं। पर बताने भी कोई आता नहीं। हाँ, दूर तलक कोई नजर आता नहीं।

जब भी कोई आईना देखा करे, हम भला कौन हैं जरा ये भी सोचा करे। जब भी कोई आईना देखा करे, हम भला कौन हैं जरा ये सोचा करे। खुद से कोई भूल गर हो जाए तो फिर किसी को यूं ही ना कोसा करे। जब भी कोई आईना देखा करे, हम भला कौन है जरा ये सोचा करे। खुद से कोई भूल अगर हो जाए तो फिर किसी को यूं ही ना कोसा करे। बेवजह ही दिल अगर बेचैन हो, बेवजह ही दिल अगर बेचैन हो, अपने ही मन में कुछ खोजा करे। दर्द जब कोई सहा ना जाए तो, हाँ कि दर्द जब कोई सहा ना जाए तो, बहने दे अश्कों को रोका ना करे। लाजमी है कुछ उसूल जिंदगी में, लाजमी है कुछ उसूल जिंदगी में, कुछ भी हो ईमान का ना सौदा करे। लाजमी है कुछ उसूल जिंदगी में, पर अपने ईमान का ना सौदा करें।

अब आप सबकी पसंदीदा कलाम पढ़ती हूँ जो कभी कभी मैं सुनाया करती थी आप लोग को बाहर गजल में। तो सोच रही हूँ आज आप लोग के नाम कर दूँ। वैसे तो सुनते आप कई बार हैं इसको, पर मैं अपनी शाम में ज़रूर चार पंक्तियाँ लेती हूँ इसकी।

0: झुके हैं पलके, दिलों में उल्फत नई नई है।
1: ये तो संजय जी का प्यार है।
2: एक गज़ल जो शायद आपने सुनी हो, पर सुन के बताइए कैसी।

अब इस गज़ल के बाद एक और गज़ल जो मैं सुनाने के लिए बहुत दिनों से सोच रही थी आप लोग को, लेकिन आज ज़रूर सुनाऊंगी क्योंकि शाम भी वही कह रही है कि मतलब मेरा भी मन है यही जो मैं इस गाने के माध्यम से कहना चाहती हूँ, पर आप भी महसूस वही करेंगे।

और इसी के साथ ये जो शाम है वो मुझे कह रही है कि अब इजाज़त इजाज़त इजाज़त। तो बेहतरीन शाम में बहुत सारे गाने, बहुत सारी गज़लों का ज़िक्र करते हुए अब आरजे बीना को आपसे इजाज़त लेना होगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी गज़लें मैंने आप लोग को सुनाई नहीं, जो कि आपकी प्लेलिस्ट का इंतज़ार कर रही थी। तो उन गज़लों के साथ इस ब्रेक को एंजॉय करिए और कल फिर मिलेंगे आपके साथ आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, यूं ही गज़लें बजाते रहिए, एक दूसरे का जो कहते हैं ना एहसास महसूस करके उन्हें अपने पास बुलाते रहिए।

0: कैसे हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी सांझ की दुल्हन। रोज की तरह सुबह अंतरा जल्दी उठ गई और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। वो सोच रही थी अब तो मौसी भी घर में है, उनका पहला दिन है, नाश्ता भी ढंग का होना चाहिए। खटर पटर सुनकर मौसी उठकर किचन में आ गई और बोली, क्या कर रही हो बहू? आपके लिए चाय बना रही हूँ, आप नाश्ते में क्या लेंगी? अंतरा ने हंसकर पूछा। जो सब खाते हैं वही खा लूंगी, मौसी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अब मौसी, आपकी तरह तो हर आदमी समझदार नहीं होता ना, अंतरा ने थोड़ा मुंह बनाकर मौसी को चाय पकड़ाते हुए कहा। अब हमारे पिताजी को ही ले लो, बड़े तुनक मिजाज हैं, कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ, ये भी नहीं देखते कि मुझे दफ्तर जाने में देर हो रही है, कभी कभी तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। अंतरा बोली, अब बुजुर्ग हैं, मौसी ने समझाते हुए कहा, पत्नी के जाने के बाद उनका तुम लोग ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? अंतरा को हंसी आ गई, मौसी के सारे नखरे रानी ने पहले ही बता दिए थे। आपका कहना सच है मौसी, हमारी तरफ से तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते, अंतरा बोली, बस कभी कभी सहना मुश्किल हो जाता है, तनाव भरा जीवन है ना। सो तो है, मैं क्या नहीं जानती, मौसी ने कहा, अब मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बता देना, दिन भर बैठी बैठी करूंगी भी क्या। जरूर बता दूंगी मौसी, अभी तो जाकर आप आराम करिए, अंतरा ने कहा। मौसी को सुनकर अच्छा लगा। नाश्ते के समय मौसी की मौजूदगी का ख्याल करके अंतरा के ससुर निहाल चंद ने खुद पर काबू रखा और जो कुछ सामने रखा था चुपचाप खा लिया। अंतरा तो डर रही थी कि पिताजी कुछ कहकर माहौल ना खराब कर दें, मौसी क्या सोचेंगी। ऑफिस जाते समय अंतरा ने रोज की तरह कहा, पिताजी आपका और मौसी का खाना बनाकर हॉटकेस में रख दिया है, आज मैंने सूजी का हलवा भी बना दिया है, फ्रिज में रखा है, हाँ दही भी है, जाऊं? अंतरा के ससुर निहाल चंद आदत के अनुसार ताना देते देते रुक गए, कहना चाहते थे जैसे रोज हलवा बनाकर खिलाती है, क्या दिखावा कर रही है, पर मौसी को देखकर चुप हो गए। अंतरा ने गहरी सांस ली

सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सांझ की दुल्हन। अब तक आपने सुना अंतरा के घर मौसी जी रहने आई थी। वैसे तो अंतरा उनके स्वभाव से वाकिफ थी, लेकिन आज पहला ही दिन था और वो बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रही थी। उन्हीं की वजह से अंतरा के ससुर भी आज शांत थे। अब आगे, जब 11 बजे तो निहाल चंद को चाय की तलब लगी। ये उनकी रोज की आदत थी। थोड़ा झिझके पर कुछ सोचकर उठे और चाय बनाने लगे। किचन में आवाज सुनकर मौसी आ गईं। अरे हटिए, मैं चाय बना देती हूँ, मौसी ने अधिकार से कहा। नहीं नहीं मौसी, निहाल चंद के मुंह से निकला, मैं तो रोज ही बनाता हूँ और अच्छी भी। देखिए भाई साहब, मौसी ने मुंह सिकोड़ कर कहा, मैं आपकी मौसी नहीं हूँ। ये तो सच है, 100% सच है, निहाल चंद ने चढ़कर कहा, लेकिन मैं भी आपका भाई साहब नहीं हूँ। मौसी को हंसी आ गई। चलिए, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अगर मैं बच्चों की मौसी हूँ तो आप इस रिश्ते से मेरे जीजा हो गए और आप मेरी साली। निहाल चंद खुल कर हंस पड़े। लीजिए, इसी बात पर मेरे हाथ की स्वादिष्ट चाय हाजिर है। दार्जिलिंग की शुद्ध पत्ती मंगवाता हूँ। दार्जिलिंग तो बहुत दूर है, मैं तो अपने आंगन की तुलसी की चाय बनाती हूँ, खुशबूदार और गुण संपन्न, मौसी ने चाय का घूंट लेकर कहा। क्या कहूँ, इस घर में ना तो इस समय बहू चाय बनाती है और ना ही बनाने देती है, मन मार कर रह जाती हूँ। मौसी बोली, अब जब तक आप यहाँ पर हमारी मेहमान हैं, रोज मैं आपको चाय पिलाऊंगा, मन मार कर नहीं, मन भर कर पीजिए। हंसते हुए निहाल चंद उठे और जूठे प्याले उठाने लगे। अरे अरे, मौसी ने प्याला पकड़ते हुए कहा, अब कुछ मेरे लिए भी तो छोड़ दीजिए। निहाल चंद मुस्कुरा कर रह गए। दरअसल वे जूठे बर्तन रोजाना ऐसे ही छोड़ देते थे। जब अंतरा आती थी तो उठाती थी और उसे उनकी इस आदत से बेहद चिढ़ होती थी। दो दिनों बाद मौसी ने कहा, बहू तुम्हें सुबह बहुत काम रहते हैं, तुम अपना नाश्ता पानी कर लिया करो, मैं खाली बैठी रहती हूँ, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी, ऐसे मेहमानों की तरह कब तक बैठी रहूंगी। नहीं मौसी, अंतरा ने विरोध किया, ऐसा कैसे हो सकता है, आप थोड़े दिनों के लिए तो आई हैं, आप चिंता मत करिए, मुझे काम करने की आदत है। बहू मुझे अच्छा नहीं लगता, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, मौसी ने लगभग डांटते हुए कहा। अंतरा को मालूम था कि अपने घर में अगर उनसे कोई काम करने को कह दे तो मौसी अपनी बहू रानी की मुसीबत कर देती थी, यहाँ तक कि माँ भी दुखी हो जाती थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सांझ की दुल्हन। अब तक आपने सुना, अंतरा के घर मौसी रहने आई थीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपना काम करके ऑफिस चली जाया करे, बाकी काम वो कर लेंगी। उनमें और पिताजी में भी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, पर अंतरा को उनके स्वभाव के बारे में उनकी बहू से पता चल चुका था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो उनसे कुछ भी काम कराए। अब आगे। ओह नहीं ना मौसी, आपको कुछ नहीं करना है, रानी मुझसे झगड़ा करेगी, अंतरा ने हट किया। कौन होती है रानी? मौसी ने गुस्से से कहा। मैं जानती हूं उसने मेरी बड़ी बुराई की होगी, दरअसल वो मेरी लाचारी का फायदा उठाती है। कभी कभी तो सोचती हूँ मेरे सोनू मोनू की बहुएं ही क्या बुरी थीं। अरे क्या आपकी अपनी बहुएं आपकी सेवा नहीं करती? अंतरा ने ऊपरी सहानुभूति जताते हुए कहा। सच, कितने अरमानों से लोग बहू घर लाते हैं। मौसी की अपनी बहुओं से बिल्कुल नहीं बनती थी, ये सब जानते थे, लेकिन दूसरे के मुंह से उनकी बुराई सुनना मौसी को अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं बहू, आजकल की हवा ही खराब है, वो इतनी बुरी भी नहीं है। तुम भी तो काम करती हो, इस बुढ़ापे में ससुर की पूरी सेवा करती हो, देखकर अच्छा लगता है, अगले जन्म में अच्छा ही फल मिलेगा। मौसी अगला जन्म किसने देखा है, मैं तो पूरी स्वार्थी हूँ, सारे फल इसी जन्म में चाहती हूँ। अंतरा ने मुस्कुरा कर कहा। मौसी को भी हंसी आ गई, तो कितनी अच्छी बातें करती है। खैर असल मुद्दा ये है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तू घर की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, तेरे दफ्तर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतरा को डर लगा कि कहीं उसके ज्यादा मना करने से मौसी बुरा ना मान जाए। जल्दी से उनकी बात मान ली, संतोष की गहरी और ठंडी सांस ली। रसोई का काम हाथ में आते ही मौसी के ढीले शरीर में चुस्ती आ गई। अब वो बेरोक टोक मन पसंद खाना बना सकती थी और निहाल चंद के मुंह से अपनी तारीफ भी सुन सकती थी। वो कभी कभी निहाल चंद की पसंद के नए नए व्यंजन बनाती, निहाल चंद भी बस उन पर निहाल ही हो गए थे, उनका चिड़चिड़ापन छू मंतर हो गया था, खुश मिजाजी लौट आई थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका साथ देने वाला कोई मिल गया था, जो उनकी बातें पूरी सहानुभूति से सुनता भी था। अक्सर वो दोनों अपने सुख दुख की बातें कर लेते थे, उन्हें बहुत शांति मिलती थी। नजदीकी बढ़ने से एक दूसरे को जीजा साली कहकर

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सांझ की दुल्हन। अब तक आपने सुना, मौसी अंतरा के घर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। अंतरा के ऑफिस जाने के बाद के घर के कामों का जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अंतरा के ससुर निहाल चंद और मौसी को एक दूसरे का साथ मिल गया था। दोनों का बुढ़ापे का वक्त अच्छा गुजरने लगा था। अब मौसी के जाने का समय आ गया। अब आगे, दरअसल मौसी किसी की भी सगी मौसी नहीं थी, बस सबके लिए मुसीबत बनी हुई थी। अंतरा और मनु के घर रहने आने के पीछे एक लंबी कहानी थी। ये एक निष्कपट प्रयोग था। सपन अंतरा के पति मनु का सहयोगी, सहकर्मी और मित्र सब कुछ था। एक दिन सपन को बहुत दुखी देखकर मनु ने पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। यार, मेरी दूर के रिश्ते की एक मौसी है, मौसा जी की मृत्यु के बाद उसे कुछ ऐसा लगने लगा कि उसके दोनों बेटे और बहुएं उसकी अपेक्षा करते हैं। एक दिन रो धो कर माँ के पास अपनी कहानी सुनाने आ गई। तरस खाकर माँ ने उसे कुछ समय अपने पास आने और रहने का निमंत्रण दे दिया। वो तो मानो आने को तैयार बैठी थी, सो कुछ दिनों के बाद ही अपनी गठरी लेकर आ गई। सपन ने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। तो इसमें बुरा क्या हुआ, मनु ने पूछा। अरे, अब वो जाने का नाम ही नहीं लेती। माँ ने कहा भी कि जाओ बेटों के पास, तो कहती है मुझे जहर लाकर दे दो, किसी घर में नौकरानी की तरह रह लूंगी पर वहां नहीं जाऊंगी। सपन ने दुखी होकर कहा, यार तू कुछ नहीं समझा, इतनी सी बात होती तो दुखड़ा क्यों रोता।

सपन ने कहा। दरअसल मौसी बड़े टेढ़े स्वभाव की है, माँ से तो कुछ नहीं कहती, रानी से झगड़ती रहती है कि ये ऐसे क्यों कर दिया, तुझे सलीका नहीं आता, तुझे ढंग का खाना बनाने नहीं आता और ना जाने क्या क्या। अब हम समझ गए हैं कि क्यों मौसी की अपनी बहुओं से नहीं बनती थी, अब रानी झेल रही है। है तो ये विकट समस्या, मनु ने स्वीकारा। पर यार हम भी कम नहीं झेल रहे हैं, मेरी समस्या कुछ हटकर है लेकिन है कुछ तेरी ही जैसी, तो भी अपनी कहानी कह डाल, सपन ने मुस्कुरा कर कहा। वो कहते हैं ना कि बांटने से दुख कम होता है और सुख बढ़ता है। मनु के पिता निहाल चंद अच्छे इंसान थे, अंतरा से कभी कोई शिकायत नहीं थी, उसके नौकरी करने पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। अपनी पत्नी के देहांत के बाद अकेलापन हलने लगा था, उदास भी रहते थे। धीरे धीरे उनकी आदतें बदलने लगीं। जो कुछ घर के कामों में हाथ बटाते थे अब हाथ खींच लिया। खाली दिमाग तो होता ही है शैतान का घर। अंतरा के काम पर जाने से उन्हें बुरा लगने लगा, सुना सुना कर कहते थे घर में अकेले रहते हैं, कोई उनका ख्याल नहीं रखता, अगर सुबह का नाश्ता जल्दी बना दिया तो शिकायत, नहीं बना पाई तो वो भी मुसीबत, चाय बनाकर सामने रख दी तो अखबार पढ़ने लगे, और फिर चाय ठंडी हो गई तो डांट लगा दी। एक दिन तो हद कर दी पिताजी ने, अंतरा ने अंडा टोस्ट बनाकर और गरम दूध सामने रखते हुए कहा था, पिताजी नाश्ता रखा है, मैं दफ्तर के लिए तैयार होने जा रही हूँ। काफी देर बाद ऊंची आवाज में बोले, बहू ये ठंडा नाश्ता क्या मेरे लिए था? पर पिताजी मैंने तो गरम बनाकर रखा था और आपको बोलकर भी आई थी, अंतरा ने शालीनता से कहा था। तभी मनु सामने आकर बोला, मैंने खुद सुना था अंतरा ने आपको बताकर गरम नाश्ता रखा था, अब आप देर तक नहीं खाएंगे तो इसमें उसका क्या कसूर है? तू चुप कर, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अंतरा से ना रहा गया, वो बोली, आप क्यों झूठ बोलेंगे, हम ही झूठ कह रहे हैं। कुछ कहा तुमने? निहाल चंद ने अखबार नीचे फेंकते हुए कहा। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, अंतरा दूध का गिलास उठाती हुई बोली, अभी टोस्ट भी और बना देती हूं। रहने दो बहू, तुम्हें दफ्तर के लिए देर हो जाएगी, देर होगी तो तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटेगा, तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटेगा तो तुम रोते रोते मेरी बुराई करोगी, निहाल चंद ने कटुता से कहा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? मनु ने अंतरा का हाथ खींचते हुए कहा, हम जा रहे हैं पिताजी, देर हो रही है, जब काम वाली आए तो उसी से गर्म करवा लेना, वैसे आप भी इतना तो कर ही सकते हैं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सांझ की दुल्हन। अब तक आपने सुना, अंतरा और मनु अपने पिताजी से काफी परेशान थे। वो बुजुर्ग और अकेले थे और इसीलिए चिड़चिड़ करते रहते थे और बेवजह उन दोनों को गुस्सा करते रहते थे। उधर सपन और रानी भी अपनी मौसी से परेशान थे, जो अपना घर बार छोड़कर इन्हीं के घर आकर टिक गई थी और हर बात पे रानी को टोकती थी। अब आगे दुखी होकर मनु अंतरा से कह रहा था, क्या करूं, समझ नहीं आता, अचानक पिताजी को क्या हो जाता है, सारी झुंझलाहट तुम्हारे ऊपर ही उतारते हैं। चिंता मत करो, अंतरा ने मुस्कुरा कर कहा, झेलने के मामले में मैं भी इतनी कमजोर नहीं हूं, ऐसा क्यों नहीं करती, मनु ने सुझाव दिया, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर पिताजी की सेवा करो, शायद खुश हो जाएं। ना बाबा, अंतरा ने सिहर कर कहा, ये तो मेरे लिए बड़ी सजा होगी। मनु और सपन बहुत देर तक अपनी अपनी समस्याओं का विश्लेषण करते रहे और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी दिखाते रहे। बहुत दूर तक कोई हल नहीं सूझ रहा था। तो पिताजी की समस्या है अकेलापन, सपन ने बहुत सोचकर कहा, अगर कोई साथी उन्हें मिल जाए तो शायद बात बन जाए। पर साथी कहां से लाऊं, क्या सौतेली मां ले आऊं? अरे नहीं, इतनी दूर सोचने की जरूरत नहीं है, सपन ने कुटल मुस्कान से कहा, मुझे एक एक्सपेरिमेंट सूझ रहा है, एक तीर से दो निशाने, बस तीर निशाने पर बैठना चाहिए। अब कुछ बग भी, मनु ने झुंझला कर कहा, ध्यान से सुन, तू हमारी मौसी को एक महीने के लिए अपने घर में रख ले, मौसी की आबो हवा बदल जाएगी और तेरे पिताजी को संग साथ मिल जाएगा। सपन ने कहा, हाँ अगर तू भी परेशान हो जाए तो मेरा सिक्का पहले भी वापस कर सकता है। मनु बहुत देर तक सोचता रहा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, बात में दम तो है पर अंतरा से पूछना पड़ेगा। ठीक है, हम चारों मिलकर एक मीटिंग करते हैं। चारों ने मिलकर ये प्रयोग करने का निर्णय लिया। मौसी को बस इतना बताना था कि सपन रानी और माँ को लेकर एक महीने की छुट्टी के लिए बाहर जा रहा है। तब तक मौसी को अपने एक मित्र के यहाँ रहने का बंदोबस्त कर दिया है। ये सुनकर पहले तो मौसी बहुत उखड़ी, पर उनके पास और कोई चारा नहीं था। अकेले घर में रह नहीं सकती थी और बेटों के पास जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। योजना के अनुसार एक महीना पूरा हो गया था। मनु और सपन सोच सोच कर घबरा रहे थे कि मौसी और पिताजी की क्या प्रतिक्रिया होगी। रानी डर रही थी कि कहीं मौसी पुराने डर्रे पर ना आ जाए, अब की तो वो उनका पूरा विरोध करेगी। अंतरा सोच रही थी कि मौसी के जाने के बाद अगर पिताजी फिर से नखरे दिखाने लगे तो वो क्या करेगी। चलो मौसी, सपन ने कहा, हम आपको लेने आए हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, सोनू मोनू भी आपको याद कर रहे थे, वो आपको ले जाना चाहते हैं। सच? मौसी की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, नहीं तू झूठ कह रहा है, मैं बहुओं को जानती हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सपन ने हंसकर कहा, वो तो शिकायत कर रहे थे कि मैंने आपको अगवा कर लिया है। नियाल चंद हंस पड़े, दरअसल तुम्हारी मौसी को तो मैं अगवा करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी है, बड़ा मन लग गया इनसे। ये सुनते ही सब हंस पड़े, निहाल चंद और मौसी झेप गए। क्या बात है पिताजी, चलाएं कुछ चक्कर, मनु ने छेड़ा। तुम लोग बड़े शरारती हो, मौसी के गाल सुर्ख हो गए। मौसी, आप चली जाएंगी तो पिताजी आपको बहुत याद करेंगे, अंतरा बोली। आपके बनाए कढ़ी, बैगन का भरता, लौकी के कोफ्ते, मूंग की दाल का हलवा और सभी चीजों की इतनी तारीफ करते हैं कि बस पूछो ही मत। काश मैं भी आपसे सीख पाती।
अपनी तारीफ सुनकर मौसी का चेहरा खिल गया। अरे बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, वैसे तुम नौकरी पर जाती हो, इतनी फुर्सत कहाँ। रानी ने मौसी के कमरे में झांकते हुए कहा, अरे मौसी आपका सामान सब वैसा का वैसा ही पड़ा है, क्या अभी चलने का इरादा नहीं है। चलना तो है पर सोच रही हूँ चलूं या नहीं, मौसी ने हिचकते हुए कहा। क्यों? रानी और सपन चौंक पड़े। बात यह है बहू कि अंतरा के पैर भारी हैं, अब उसकी देखभाल करने वाला भी तो कोई घर में होना चाहिए ना, मौसी ने गंभीरता से कहा। अरे और हमें पता भी नहीं, सब एक साथ बोल पड़े। रानी ने अंतरा का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़ी आत्मीयता से कहा, तुम तो बड़ी छुपी रस्तम निकले, मुबारक हो, और मनु भैया आपको भी। तो मनु मुस्कुरा कर रह गया। रात को जब मनु और अंतरा अपने कमरे में सो रहे थे तो बाहर किसी बात पर मौसी और निहाल चंद खिलखिला कर हंस रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। शायद ये एक नए जीवन की शुरुआत थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी सांझ की दुल्हन। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
2: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोहर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है, एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज़, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज की सफ़र में, हम इसी खूबसूरत सफ़र को लेकर के साथ में उनकी कई चीज़ों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफ़र होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए पहला गाना सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं की फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था। बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगल-ए-आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोकगीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थीं। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो ज़रा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, ज़रा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थीं, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी, ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूज़िक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार SD वर्मन से जिद की कि गाने की शुरुआत किसी वाग यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज़ से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया की जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबा गाने पर थिरकती थी और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से। आप सही बोला फिल्म।

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी। रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था, हर नज़र में प्यार था। मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्यौहार था। दर्द छुपाकर भी उन्होंने हंसना सीखा। हर किरदार में जीवन का रंग सजाया। वक्त ने बहुत कुछ छीना, फिर भी वो मुस्कुराती रहीं। अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रही।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई। हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई। कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई। पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफ़र को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम संग मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी। जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूं आपकी आरजे ख्वाहिश।
0: और मैं हूं आरजे गुमसुम।
1: भूले बिसरे गीतों की ये शाम यहीं थम जाए, फिर मिलेंगे अगली महफिल में। तब तक आप सभी को शुभरात्रि।
0: शुभरात्रि।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतुराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888100।

9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।